सुप्रभात। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। आज है शनिवार, शक संवत 1948 आषाढ़ मास की छठी तिथि, तदनुसार 27 जून 2026। 5:58 हो चुके हैं। हमारी आज की सभा अब यहीं से आरंभ होती है। इस मंगलमयी बेला में आप सभी का स्वागत है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: कार आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से सोमवार तक सेशल्स की यात्रा पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा बल की टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्बिनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।

0: प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे। वो वहां भारतवंशियों से भी मिलेंगे। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच दीर्घकालिक मैत्री और सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंध बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता और मजबूत होगी। गृहमंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी दृष्टि पत्र जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। श्री शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया है।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृहमंत्री अमित शाह आज देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ गुजरात में करेंगे। कार्यक्रम में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधि और भारत टैक्सी से जुड़े 4,000 से अधिक सारथी शामिल होंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा को साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देशभर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमरीकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान पर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए और उसके तटवर्ती राडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं को संकेत दिया था कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिण लेबनान से हटने के निर्देश शामिल हैं। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए, जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। FIH पुरुष प्रो लीग हॉकी में कल रात भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। फीफा विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से पराजित किया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi will embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. PM last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with two Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Union Home Minister Amit Shah will launch the country

सर्वप्रथम पूजनीय रिद्धि सिद्धि दाता श्री गणेश जी हमारे सब कार्य पूर्ण करें इसी कामना के साथ आइए अब आरती करते हैं श्री हनुमान लल्ला की।

हिमांजलि कार्यक्रम आप सुन रहे हैं FM शिमला से। भक्ति संगीत का आनंद आप ले रहे हैं इस कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं अनूप जलोटा का गाया ये भजन।

बड़ा सुंदर प्रसंग है। भगवान राम, जानकी जी और लक्ष्मण वनवास के लिए गए। रास्ते में नदी पार करनी थी। केवट पहले से ही अपनी नाव लिए खड़ा था। उसे मालूम था आज प्रभु आ रहे हैं, आज सेवा का अवसर मिलेगा और मेरे जन्म जन्म के पाप धुल जाएंगे। प्रभु पहुंचे, केवट ने स्वागत किया। प्रभु ने कहा, केवट हम लोगों को उस पार उतार दो। केवट ने कहा, प्रभु आपका सेवक हूं, जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा, लेकिन एक छोटी सी शर्त है मेरी। प्रभु ने कहा, क्या शर्त है? केवट बोला, प्रभु पहले अनुमति दें कि मैं आपके चरण पखार लूं। मैंने सुना है आपके चरण किसी पत्थर को लग गए थे तो पत्थर ने नारी का रूप ले लिया था। प्रभु मैं बड़ा गरीब आदमी हूं, मेरे पास एक ही नाव है बस, और वो भी मेरी जीविका का सहारा है। इसको कुछ हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। प्रभु मन ही मन मुस्कुराए, समझ गए केवट क्या चाहता है, अनुमति दी। केवट ने प्रभु के चरण पखारे, चरणामृत पिया और ले चला उस पार।

उतार दिया उस पार। प्रभु ने सोचा केवट का तो यही काम है, यह व्यवसाय है, इसको मजदूरी देनी चाहिए। लेकिन बनवासी राम देते क्या, कुछ था ही नहीं। सीता जी की ओर इशारा किया। सीता जी ने अपनी एक मुद्रिका उतार के केवट को देनी चाहिए। केवट ने मना कर दिया। प्रभु ने कहा ले लो केवट, ये तो तुम्हारा व्यवसाय है, तुम्हारी मजदूरी है।

एक विशेष कारण है, मैं आपसे कुछ नहीं ले सकता। प्रभु ने कहा, क्या कारण है? केवट बोला, प्रभु एक ही व्यवसाय करने वाले दो व्यक्ति आपस में लेन देन नहीं करते। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरा और केवट का व्यवसाय एक कैसे हो गया। केवट ने कहा, प्रभु है। और बोला,

एक ही व्यवसाय है, एक ही काम है। मैं भी नाविक हूँ, आप भी नाविक हैं, थोड़ा ही सा फर्क है। मैं इस छोटी सी नदी का मल्लाह हूँ और आप इस भवसागर के मल्लाह हैं।

इस मायावी संसार में भवसागर से पार होने का सबसे सरल उपाय है राम नाम भजना। जी हाँ, श्री राम जी के चरणों में जब हमारा मन लग जाए तो असीम सुख की प्राप्ति होती है। श्री राम जी दयालु कृपालु हैं और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। अगला भजन आपको सुनाने जा रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ में।

इसी के साथ हिमांजलि कार्यक्रम में आज बस इतना ही। FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप, आइए सुनते हैं एक और भक्तिमय प्रस्तुति, मानस गान।

विधाता जो ललाट पर लिख देता है उसे देवता, दानव, मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। देवर्षि नारद ने पार्वती के भाग्य के बारे में भविष्यवाणी करते हुए हिमाचल से कह दिया, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला ऐसा पति इसे मिलेगा। यदि तुम्हारी कन्या कठोर तप करे तो त्रिपुरारी महादेव होनहार को मिटा सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेकों वर हैं, किंतु इसके लिए शिवजी को छोड़कर दूसरा कोई वर नहीं। पार्वती को देख मैना की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने प्यार से पुत्री को गोद में बिठा लिया। तब पार्वती ने माता को अपना स्वप्न सुनाया और योग्य वर प्राप्ति के लिए तपस्या करने का अपना निश्चय प्रकट किया।

0: अभी आप सुन रहे थे देशगान 103.7 MHz पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला। 6:57 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं FM न्यूज़ हेडलाइंस।
1: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज।

0: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया से शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लंबित व कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर विकसित भारत जी राम जी योजना को लेकर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में सरकार की जवाबदेही, रोजगार का अधिकार व पारदर्शिता, काम का भुगतान और रोजगार के दिनों में बढ़ोतरी के प्रावधान है। प्रदेश में कल अंतर्राष्ट्रीय नशा निषेध और अवैध तस्करी निवारण दिवस को एंटी चिट्टा दिवस के रूप में मनाया गया। इस अवसर पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा में बताया कि सरकार ने एंटी चिट्टा जागरूकता अभियान को जन आंदोलन का स्वरूप दिया है। इस बीच नशा मुक्त भारत अभियान के तहत शिमला में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशा तस्करी में संलिप्त कर्मचारियों पर भी कड़ी कार्रवाई अमल में लाई गई है। एक अन्य कार्यक्रम में कार्यकारी मुख्य सचिव के केम्पद ने बताया कि प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम कर रही है और इस अभियान में उपायुक्तों की परफॉर्मेंस भी आंकी जाएगी। सोलन का राष्ट्रीय स्तरीय शूलिनी मेला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने मेले का शुभारंभ किया। उन्होंने परंपरा के अनुसार मां शूलिनी की पालकी का विधिवत स्वागत किया और सभी के सुख समृद्धि की कामना की। शिमला जिला में रामपुर क्षेत्र के उरमण में कल एक पिकअप के गहरी खाई में गिर जाने से 6 लोगों की मृत्यु हो गई। मृतक आनी तहसील के कवाणु, रामपुर तहसील के छलटा पाठ और शरनाल गांव से संबंधित बताए जा रहे हैं। कांगड़ा एयरपोर्ट परियोजना की भूमि अधिग्रहण का करीब 85% कार्य पूरा कर लिया गया है और सभी भूमि अधिग्रहण अवार्ड घोषित किए जा चुके हैं। कांगड़ा पर्यटन विभाग के उपनिदेशक विनय धीमान ने बताया कि प्रभावित परिवारों के राहत व पुनरावास की प्रक्रिया भी जारी है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एफएम शिमला हिंदी समाचार। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया कि स्वर्ण जयंती समारोह में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श होगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी बद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह

0: आज गुजरात में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत टैक्सी सहकारिता के सिद्धांतों पर आधारित डिजिटल मोबिलिटी मंच है और सारथी ही मालिक की अवधारणा साकार करता है। इस मॉडल के अंतर्गत टैक्सी चालक केवल सेवा प्रदाता नहीं बल्कि भागीदार और मालिक भी होंगे। इससे चालकों का आर्थिक सशक्तिकरण होगा और उन्हें सामाजिक सुरक्षा मिलेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपातकाल घोषित कर दिया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्तार शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि उसकी ईरान पर उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ओमान के निकट समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाया गया। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा घोषित की है। इस प्रस्तावित संघर्ष समझौते में हिजबुल्ला को हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। FIH पुरुष प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराकर करारी शिकस्त दी। मैच के पहले क्वार्टर में लंदन में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई। दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह के गोल ने मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। 7वां गोल चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने किया। कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। आयरलैंड के बेलफास्ट में T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। आइए सुनते हैं चिंतन।

एक साधु था। चलते चलते वो एक शहर के पास पहुंचा तो शहर का दरवाजा बंद हो गया। रात हो गई थी, वो साधु दरवाजे के बाहर ही सो गया। दैव योग से उस दिन उस शहर के राजा का शरीर शांत हो गया था। उसका कोई बेटा नहीं था। राज्य पाने के लिए कुटुंबी लड़ने लगे। एक कहता कि मेरा हक लगता है, दूसरा कहता कि मेरा हक लगता है। अंत में सबने मिलकर यह निर्णय किया कि कल सुबह दरवाजा खोलने पर जो सबसे पहले भीतर आए उसी को राज्य दे दिया जाए। ऐसा निर्णय होने से विवाद मिट गया। सुबह होते ही शहर का दरवाजा खुला तो सबसे पहले वो साधु भीतर गए। भीतर जाते ही हथनी ने सूंड से उठाकर बाबा जी को अपने ऊपर चढ़ा लिया। लोग जय जयकार करते हुए बाबा जी को दरबार में ले गए। बाबा जी ने पूछा कि ये क्या तमाशा है भाई। उन्होंने बाबा जी से कहा, महाराज हमने विचार कर लिया है कि शहर में जो सबसे पहले आ जाए उसको राज्य दे दे।

सबसे पहले आप आए हैं, इसीलिए हमने आपको यहां का राजा बनाया है। बाबा जी ने कहा कि अच्छी बात है। बाबा जी ने नहा धोकर राजा की पोशाक पहन ली और आज्ञा दी कि एक बक्सा लाओ। जब बक्सा आया तो बाबा जी ने अपने पहले के कपड़े, तुम्बी, खड़ाऊं आदि रखकर ताला लगा दिया और चाबी अपने पास में रख ली। अब बाबा जी बढ़िया रीति से राज्य करने लगे। बाबा जी में ना तो कोई अपनी कामना थी, ना कोई चिंता, और ना उनको कोई भोग ही भोगना था। उन्होंने भगवान का काम समझकर खूब बढ़िया रीति से राज्य किया। फलस्वरूप राज्य की बहुत उन्नति हो गई, आमदनी बहुत ज्यादा हो गई, राज्य का खजाना भर गया, प्रजा सुखी हो गई। राज्य की समृद्धि को देखकर पड़ोस के एक राजा ने विचार किया कि बाबा जी राज्य तो करना जानते हैं पर लड़ाई करना नहीं जानते। उसने बाबा जी के राज्य पर चढ़ाई कर दी। सैनिकों ने बाबा जी को समाचार दिया कि अमुक राजा ने चढ़ाई कर दी है। बाबा जी बोले, करने दो, आपने लड़ाई नहीं करनी है। थोड़ी देर में समाचार आया कि शत्रु की सेना नजदीक आ रही है। बाबा जी बोले, आने दो। फिर समाचार आया कि शत्रु की सेना पास में आ गई है। तो बाबा जी ने आदमी को भेजा कि आप यहां क्यों आए हैं। पड़ोसी राजा ने समाचार भेजा कि हम यहां राज्य लेने आए हैं। बाबा जी ने कहा, राज्य पाने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। बाबा जी ने आज्ञा दी कि मेरा बक्सा लाओ। बक्सा लाया गया। बाबा जी ने उसको खोला और अपने पहले के कपड़े पहनकर हाथ में तुम्बी ले ली। बाबा जी ने पड़ोसी राजा से कहा, इतने दिन मैंने रोटी खाई, अब आप खाओ। मैं तो इसलिए बैठा था कि राज्य संभालने वाला कोई नहीं था, अब आप आ गए हैं तो इसको संभालो। व्यर्थ में लड़ाई करके मनुष्यों को क्यों माने। इस कहानी का तात्पर्य ये नहीं है कि शत्रु की सेना आए तो उसको राज्य दे दो, प्रत्युत ये तात्पर्य है कि बाबा जी की तरह जो काम सामने आए उसको भगवान का काम समझकर निष्काम भाव से बढ़िया रीति से करो। अपना कोई आग्रह मत रखो।

चिंतन अभी आपने सुना, प्रस्तुत करता थे डॉक्टर हुकुम शर्मा। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप ट्यून इन है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। 7:10 हो रहे हैं और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम रूपरेखा, यानी कि किस समय कौन कौन से कार्यक्रमों का लुत्फ आप उठा पाएंगे एफएम शिमला से, ये जान लेते हैं। गुड मॉर्निंग शिमला, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे अब से थोड़ी ही देर बाद, यानी कि 7:15 पर, और एफएम न्यूज़ हेडलाइंस का समय रहेगा 7:57, 8:30 और 9:57। 8 सुनेगा समाचार प्रभात, इसके अलावा 12, 1, दोपहर 2:15 पर और 8:45 पर, और रात 11 हिंदी समाचार आप सुन सकते हैं। 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़ और 9 न्यूज़ एट 9 रात को आप सुनेंगे। उसके अलावा 12:05 पर, 1:05 पर, 7:05 पर और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेज़ी में समाचार। प्रादेशिक समाचार आप सुनेगा 9:20 पर, दोपहर 3, सायं 6 और शाम 7:45 पर। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा 8:32 पर और 9:30 पर आपके लिए हाजिर रहेंगे कुदरत के रंग कार्यक्रम लेकर। 10 सुनना ना भूलिएगा आपकी फरमाइश प्रोग्राम, जो कि रहेगा लाइव फोन इन प्रोग्राम। 11:05 पर पुराने फिल्मों से कार्यक्रम में आप

आनंद लेंगे पुराने फिल्मी गीतों का, और पहाड़ी संगीत का आनंद आप ले पाएंगे 11:30 पर और शिखरों के स्वर कार्यक्रम में 2:30 पर। 12:20 का समय रहेगा महिला सम्मेलन कार्यक्रम का। म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय कीजिएगा 1:10 पर और 2 आप सुनेंगे कार्यक्रम सब रंग। 3:10 पर आप सुनेगा ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत और 3:30 का समय रहेगा युववाणी कार्यक्रम का। 4 आप सुन सकते हैं फिल्म संगीत स्थानीय सूचनाओं के साथ। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में 4:20 पर आप सुन पाएंगे चंबियाली कार्यक्रम। 4:50 पर लीजिएगा आनंद मंडियाली कार्यक्रम का। पंगवाली कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 5:20 पर और 6:06 पर सुनेगा कांगड़ी कार्यक्रम। 6:35 का समय रहेगा महासुई कार्यक्रम का। हमेशा की तरह 7:10 पर आप सुनेंगे कृषि जगत कार्यक्रम। 8 आप सुन सकते हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम और 1 कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 9:15 पर। ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज भी सुन जरूर सुनेगा रात 9:30 पर। रात 10 आप लेंगे आनंद गजलों का, जी हाँ, और रात 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। तो ये थी रूपरेखा आज प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की, जिनका आनंद आप ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ FM शिमला पर।

बैसाखियों के सहारे चला जा सकता है, दौड़ नहीं सकते। अपने हुनर को इतना मजबूत बनाओ कि किसी पर निर्भर ना रहना पड़े। गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम सुनने वालों का स्वागत करते हैं। जीवन में यदि आप सफलता चाहते हैं तो किसी और की तरफ देखने से बेहतर है अपने हुनर को समझते हुए उसे निखारना और मजबूत बनाना। आज की इस सुहानी रूहानी प्यारी सी सुबह को और भी सुहाना बनाएंगे गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम के साथ। इन्फॉर्मेशंस और एंटरटेनमेंट से भरपूर इस प्रोग्राम की शुरुआत आइए करते हैं इस सॉन्ग से।

सॉन्ग तो आपने एंजॉय कर ही लिया है और हम सभी जानते हैं कि नया दिन नई उम्मीदें हर उगते सूरज के साथ हमारा इंतज़ार करते हैं और हर दिन खास होता है कुछ खास करने के लिए। तो रहिए तैयार रोज़ कुछ नया करने के लिए नए जोश और नई उमंगों के साथ। आज है 27 जून और हर दिन का एक इतिहास होता है। जी हाँ, कुछ ना कुछ ऐसा खास घटता है जो कि इतिहास रच जाता है। आज का दिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 27 जून को छोटे व्यवसायों के योगदान और महत्व को पहचानने के लिए नामित किया गया है। अब ये भी जान लेते हैं कि इतिहास में आज के दिन का क्या महत्व है। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भारत और विश्व में 27 जून का दिन महत्वपूर्ण है। जी हाँ, 27 जून 1839 में सिख साम्राज्य के शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक महाराजा रणजीत सिंह का निधन हुआ था और आज ही के दिन वर्ष 1908 में भारत के प्रथम स्वतंत्रता सेनानी, लेखक और वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म भी हुआ था। और बात करते हैं कि 1967 में उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और देश की पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी का जन्म भी 27 जून को ही हुआ था। वैश्विक स्तर पर आज के दिन की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में भी ज़रूर जानेंगे। फिलहाल एंजॉय करते हैं ये सॉन्ग।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: गुड मॉर्निंग शिमला, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से, और हम बात कर रहे हैं 27 जून के इतिहास की। इतिहास में 27 जून का विशेष महत्व है। 1964 में आज ही के दिन ये निर्णय लिया गया था कि दिल्ली में स्थित तीन मूर्ति भवन में भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का संग्रहालय बनाया जाएगा। उनके निधन के बाद उनकी स्मृति में इसे संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया और सीढ़ीनुमा गुलाब उद्यान और एक दूरबीन यहाँ के प्रमुख आकर्षण हैं। इसी गुलाब उद्यान से नेहरू जी ने अपनी शेरवानी पर लगाने के लिए गुलाब का फूल चुना करते थे। और देश और दुनिया के इतिहास में 27 जून की तारीख पर दर्ज महत्वपूर्ण घटनाओं का ब्यौरा इस तरह से है। अगर हम बात करें 1693 की, तो लंदन में महिलाओं की पहली पत्रिका लेडीज़ मर्करी का प्रकाशन आज से शुरू।

किया गया था, यानी 27 जून से शुरू किया गया था और 1940 में 27 जून के दिन ही सोवियत संघ की सेना ने रोमानिया पर हमला किया था। वर्ष 1957 में ब्रिटेन के मेडिकल रिसर्च काउंसलिंग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि धूम्रपान की वजह से फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। और लंदन के एनफील्ड में विश्व का पहला एटीएम स्थापित किया गया था 27 जून 1967 को। 1967 में ही आज ही के दिन भारत में निर्मित पहली यात्री विमान HS-748 को इंडियन एयरलाइंस को सौंपा गया था। और वर्ष 1991 में यूगोस्लाविया की सेना ने स्लोवेनिया के स्वतंत्र होने के 48 घंटों के भीतर ही इस छोटे से देश पर हमला कर दिया था। वर्ष 2002 में G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए थे आज ही के दिन। और 27 जून 2003 में अमेरिका में सम

स्लोवेनिया के स्वतंत्र होने के 48 घंटों के भीतर ही इस छोटे से देश पर हमला कर दिया था। वर्ष 2002 में G8 देश परमाणु हथियार नष्ट करने की रूसी योजना पर सहमत हुए थे आज ही के दिन, और 27 जून 2003 में अमेरिका में समलैंगिकता पर प्रतिबंध रद्द किया गया था। और बात करते हैं 2005 की। वर्ष 2005 में 27 जून के दिन ब्रिटेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की वीटो रहित स्थायी सदस्यता का समर्थन किया था। और 2008 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के चेयरमैन बिल गेट्स ने अपने पद से इस्तीफा दिया था आज ही के दिन। चलिए सुनते हैं एक और गीत।

27 जून के इतिहास की हम बात कर रहे हैं वैश्विक स्तर पर, तो 27 जून 1950 को कोरिया युद्ध में सेना भेजने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका ने आधिकारिक तौर पर निर्णय लिया था, और वर्ष 1954 में सोवियत संघ ने मास्को के निकट ओब्नेंस्क में दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र भी शुरू किया था। और देखिए ना, आप में से भी बहुत सारे लिसनर्स ऐसे होंगे जिनके लिए आज का ये दिन खास रहा होगा। कुछ अपना बर्थडे सेलिब्रेशन कर रहे होंगे और किसी की एनिवर्सरी भी होगी, या जिस भी कारण से 27 जून का दिन आपके लिए स्पेशल है, आप फुल इन्जॉय कीजिएगा। और आपके स्पेशल डे पर आपके लिए अनंत शुभकामनाएं हमारी ओर से। और जिसके लिए आज का दिन खास नहीं है तो खास बनाइए, कुछ नया कीजिए और इन्जॉय कीजिए आज का ये दिन। सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

गुड मॉर्निंग शिमला, प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप FM शिमला से। और अब बात करते हैं मौसम की। वैसे तो दिन की शुरुआत हल्की खिली धूप के साथ हुई, लेकिन मौसम विभाग के अनुसार आगामी कुछ घंटों तक मौसम का मिजाज गड़बड़ रहने वाला है। जी हाँ, और पहाड़ी राज्यों में अक्सर मौसम बिगड़ने लग जाता है आजकल। तो अगर आप कहीं ट्रिप पर जा रहे हैं तो मौसम अपडेट ज़रूर पढ़ लीजिएगा और एहतियात बरतिएगा कि कैसे मौसम में आपको कौन से कपड़े, किस तरह के जो वस्त्र हैं साथ ले जाने हैं और किन जगहों पर आपको नहीं जाना है। चलिए सुनते हैं प्रोग्राम का नेक्स्ट सॉन्ग।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

एफएम शिमला से गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप, और आइए अब सुनते हैं प्रोग्राम का लास्ट सॉन्ग।

0: गुड मॉर्निंग शिमला प्रोग्राम में आज बस इतना ही। बने रहिए एफएम शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:55 हुए हैं और ये समय है एफएम हाइलाइट्स का। जान लेते हैं आज के प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। 9:30 पर आप सुनिएगा कुदरत के रंग कार्यक्रम। 10 बजे लेकर हाजिर रहेंगे लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी फरमाइश। और 11:05 पर आप सुनेंगे पुराने फिल्मों से कार्यक्रम। पहाड़ी संगीत का आनंद आप लेंगे 11:30 पर और दोपहर 2:30 पर। 12:20 पर सुनेगा महिला सम्मेलन कार्यक्रम। और म्यूजिक मस्ती प्रोग्राम एंजॉय आप कर सकते हैं 1:10 पर। 2 बजे का समय रहेगा सब रंग कार्यक्रम का। ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत आप एंजॉय कीजिएगा 3:10 पर। युववाणी कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 3:30 पर। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में 4:20 पर चंब्याली कार्यक्रम, 4:50 पर मंड्याली कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और पंगवाली कार्यक्रम आप सुनेगा 5:20 पर। कांगड़ी कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 6:06 पर। और महासुई कार्यक्रम 6:35 पर। कृषि जगत कार्यक्रम हमेशा की तरह 7:10 पर आप सुन सकते हैं। और भूले बिसरे गीत कार्यक्रम सुनिएगा 8 बजे। 9:30 पर ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन जरूर सुनेगा। और 10 बजे का समय रहेगा गजलों के कार्यक्रम का। 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। और एफएम शिमला से अब ये समय है एफएम न्यूज हेडलाइंस का।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद हिमाचल प्रदेश ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण की गुणवत्ता में देश के पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान हासिल किया है। केंद्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता पूर्ण मूल्यांकन रिपोर्ट में राज्य की 1029 परियोजनाओं में केवल 20 कार्य असंतोषजनक पाए गए हैं। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस उपलब्धि का श्रेय नियमित निरीक्षण, सख्त गुणवत्ता नियंत्रण, पारदर्शी कार्यप्रणाली

0: और जवाबदेही को दिया है। उन्होंने कहा कि विभाग का लक्ष्य अगले वर्ष असंतोषजनक कार्यों की संख्या शून्य करना है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनावों की तिथियां जानबूझकर घोषित नहीं कर रही है ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा सके। भाजपा ने आरोप लगाया कि विपक्ष समर्थित निर्वाचित प्रतिनिधियों पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। भाजपा चुनाव तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर के जिलाधीश कार्यालयों पर सांकेतिक धरना देगी। प्रदेश में हाल ही में गठित ग्राम पंचायतों की आज पहली बैठक होगी। इस बैठक के साथ ही प्रदेश पंचायतों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आज होने वाली पहली बैठक में पंचायत प्रधान वार्ड सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बैठक में पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों के अलावा आगामी विकास योजना तैयार करने को लेकर भी चर्चा संभव है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल 28 जून को आयोजित होगा। अभियान के तहत 5 वर्ष से कम आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश भर में 4,753 पोलियो बूथ बनाए गए हैं और सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। बूथ दिवस के बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर छूटे हुए बच्चों को दवा पिलाएंगी। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: सूचना, मनोरंजन, शिक्षा और विविध रंगों से परिपूर्ण पिटारा आकाशवाणी शिमला।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज और डीटीएच पर आकाशवाणी शिमला एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर एफएम शिमला जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए 3 दिन की राजकीय यात्रा पर आज रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में भारत की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंपग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद, राहत सामग्री और चिकित्सा सहायता भेजी गई। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से हराया। पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय मैचों में लगातार 17 मैच में बढ़त का सिलसिला जारी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हार कर 2 बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सेशल्स की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में आमंत्रित अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले वर्ष 2015 में सेशल्स गए थे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि स्वर्ण जयंती समारोहों में 2 नौसैनिक पोत सहित भारतीय रक्षा टुकड़ी भाग लेगी। यात्रा के दौरान श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति पैट्रिक हरमनी के साथ वार्ता करेंगे और दोनों देशों के आपसी संबंधों की समीक्षा करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया जाएगा।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता

0: को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ संवाद उत्साहजनक रहा।
2: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है। ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है। इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
1: श्री गोयल ने इस समझौते के माध्यम से नए अवसर खुलने के साथ ही दोनों देशों के व्यवसायियों को सहयोग बढ़ाने, नवाचार को बढ़ावा देने और साझा समृद्धि के लिए निवेश करने को आमंत्रित किया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात में गांधीनगर स्थित महात्मा मंदिर से देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी, सहकारी क्षेत्रों के प्रतिनिधि और 4,000 से अधिक वाहन चालक यानी सारथी भाग लेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चालकों को प्लेटफॉर्म शेयर सर्टिफिकेट भी प्रदान किए जाएंगे।
3: अमूल, इफको और नाबार्ड जैसी 8 प्रमुख सहकारी संस्थाओं के सहयोग से सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड द्वारा विकसित भारत टैक्सी जीरो कमीशन मॉडल पर काम करती है, ताकि कमाई का अधिकतम हिस्सा सीधे चालकों को मिल सके। पिछले साल दिसंबर में इसकी प्रारंभिक शुरुआत के बाद से अकेले गुजरात में 1.5 लाख से अधिक चालक और 7 लाख से अधिक ग्राहक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके हैं, जहाँ हर दिन 3,500 से अधिक सफर पूरे किए जा रहे हैं। यह सेवा गुजरात के अहमदाबाद, सूरत और वडोदरा सहित 14 प्रमुख शहरों में आज से शुरू की जाएगी। अगले एक महीने में पूरे राज्य में इसका विस्तार करने का लक्ष्य रखा गया है। अपर्णा खोंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कलपक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का उद्घाटन किया। ये संयंत्र फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर से प्राप्त परमाणु ऊष्मा से कॉपर क्लोरीन ताप रासायनिक प्रक्रिया से संचालित है। डॉक्टर मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा कार्बन मुक्त और विश्वसनीय विद्युत उपलब्ध कराने में सक्षम है। ये बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन के लिए उपयुक्त है। ये हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3,000 लोग घायल हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से जारी है। एक रिपोर्ट।
4: अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेस ने आपातकाल घोषित किया है। अनेक देशों ने हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। ये वेनेजुएला के लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त करने के लिए मानवीय सहायता और आपदा राहत मिशन है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इसके अंतर्गत कल भारतीय वायुसेना के 2 विमानों से राहत सामग्री और 41 सदस्यों का बचाव दल भेजा गया है। राहत सामग्री में चिकित्सा कर्मी, भारतीय सेना की फील्ड हॉस्पिटल यूनिट, चिकित्सा उपकरण, दवाइयां और अन्य जरूरी सामान भेजे गए हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत संकट की इस घड़ी में वेनेजुएला की सरकार और लोगों के साथ है। राष्ट्रपति रोड्रिगेस ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में मालवाहक जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में कल ईरान पर फिर हमले किए। अमेरिकी केंद्रीय कमान ने बताया कि ईरान ने उसके तटवर्ती रडार प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया। इससे पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम समझौते के उल्लंघन के गंभीर परिणाम होंगे। इस बीच ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम अल फिकार ने कहा कि इस बार अमेरिकी हमले पर ईरान की प्रतिक्रिया तेज और निर्णायक होगी। उन्होंने कहा कि ईरान माकूल जवाब के लिए सही समय और स्थान का चुनाव करेगा। ब्रिटिश सेना ने बृहस्पतिवार को ओमान के निकट

0: समुद्र में कार्गो शिप को निशाना बनाए जाने की बात कही थी। इससे कुछ घंटे पहले ही ईरान ने इस मार्ग के इस्तेमाल के खिलाफ धमकी दी थी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसराइल और लेबनान के बीच शांति समझौते की रूपरेखा जारी की है। इस समझौते में संघर्ष विराम, हिजबुल्ला की हमले रोकने और दक्षिणी लेबनान से हटने का निर्देश शामिल है। अमरीकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमरीकी मध्यस्थता में समझौते की रूपरेखा इसराइल सरकार और लेबनान के बीच तय हुई है। श्री रूबियो ने इसे शांति और स्थिरता बहाल करने की दिशा में पहला कदम बताया।
1: Today is the first step in that journey. And the first step is sometimes the hardest step, but it's the one we're taking together today. Obviously, the people of Israel deserve to live in peace and security.
0: ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे। इसमें समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श होगा। सम्मेलन के माध्यम से केंद्र और राज्य गाँवों के विकास और साझा रणनीति तैयार करेंगे। चर्चा में विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने तथा संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के अंतर्गत आज छत्तीसगढ़ के गार्बेज कैफे पर बातचीत प्रस्तुत की जाएगी। अंबिकापुर नगर निगम का ये कैफे प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन उपलब्ध कराता है। कार्यक्रम में गार्बेज कैफे के प्रभारी रितेश सैनी से बातचीत प्रसारित की जाएगी।
2: मन की बात में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उल्लेख किया, उसके बाद क्या प्रभाव पड़ा?
3: उसके बाद ये प्रभाव पड़ा कि इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे अंबिकापुर का नाम आना, उससे बहुत सारे लोग थे जो गार्बेज कैफे के बारे में जान पाए।
4: हमारे यहाँ डोर टू डोर कलेक्शन हो रहा है, प्रतिदिन 50 से 55 टन कचड़े का हम प्रोसेसिंग कर रहे हैं। विश्व के समस्त देशों तक गार्बेज कैफे वर्ड जो है वो अंबिकापुर से वहां तक पहुंच गया।
5: प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ।
0: ये कार्यक्रम आज शाम 5:10 पर आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकता है। ये न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसका पुनः प्रसारण कल सवेरे 9:10 पर होगा। और अब खेल खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: FIH प्रो हॉकी लीग में कल भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी। लंदन में मैच के पहले क्वार्टर में अबू बकर ने पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर पाकिस्तान को बढ़त दिलाई, लेकिन दूसरे क्वार्टर में सुखजीत सिंह और हरमनप्रीत सिंह ने गोल कर मैच का रुख पलट दिया। इसके बाद तीसरे क्वार्टर में हार्दिक सिंह, जुगराज सिंह, अभिषेक और राजकुमार पाल ने 4 और गोल किए। चौथे क्वार्टर में दिलप्रीत सिंह ने टीम के लिए 7वां गोल किया। प्रतियोगिता में कल भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। उधर आयरलैंड के बेलफास्ट में पहले T20 क्रिकेट मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू होलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस बीच फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई के मैच में कल फ्रांस ने नॉर्वे को 4-1 से और सेनेगल ने इराक को 5-0 से हराया। फ्रांस इस जीत के साथ ग्रुप आई में शीर्ष पर आ गया। नॉर्वे नॉकआउट में पहुंच गया है, जबकि सेनेगल अगले राउंड में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। इसके अलावा उरुग्वे भी स्पेन से हार कर टूर्नामेंट से बाहर हो गया है और तथा सऊदी अरब का मैच बिना गोल के ड्रॉ रहा। ग्रुप जी में न्यूजीलैंड और बेल्जियम तथा मिस्र और ईरान कुछ देर बाद आमने सामने होंगे।
0: जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉक आई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
7: धन्यवाद मुकेश। गृहमंत्री अमित शाह के मादक पदार्थ नियंत्रण पर दृष्टि पत्र जारी करने की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान ने गृहमंत्री के हवाले से लिखा है, देश से नशे का कारोबार 3 वर्षों में खत्म कर देंगे। पत्र के अनुसार 100 बड़े गिरोहों को समाप्त करने के लिए केंद्र ने रणनीति तैयार की। पंजाब केसरी के अनुसार 3 सूत्री रणनीति पेश, पता लगाओ, बाधित करो और नष्ट करो। वीर अर्जुन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वक्तव्य देते हुए लिखा है, AI को जिम्मेदारी के

0: साथ अपनाना विकसित भारत के लिए जरूरी। इससे एआई आधारित उपकरणों का उपयोग करके बढ़ाई जा सकती है कार्यकुशलता। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, वेनेजुएला की मदद को भारत ने शुरू किया ऑपरेशन अमिस्ताद। सेना की विशेष राहत टीम भेजी गई। पत्र के अनुसार भूकंप में मृतक बढ़कर 920 हुए, 3000 घायल और 50,000 लापता। अमर उजाला के अनुसार त्रासदी के बीच गूंजी किलकारी, मलबे में बच्चे का जन्म। लोकसत्य ने भूकंप के खतरे और हम शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, वेनेजुएला में कुछ ही सेकंड में दो बड़े भूकंप में हजारों लोगों के मारे जाने की आशंका है। पूरे विश्व में भूकंप की स्थिति भयावह होती जा रही है और अपना भारत भी खतरे की जद में है। दैनिक जागरण के अनुसार बंगाल में लैंड जिहाद, लव जिहाद और जबरन मतांतरण के विरुद्ध बनेगा कानून। मुख्यमंत्री शुभेंदु बोले, बंगाल की धरती पर राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए कोई जगह नहीं। अमर उजाला की सुर्खी है, श्रीराम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय और अनिल मिश्रा का इस्तीफा तय, आरोपियों से मिले 80 लाख रुपए। हिंदुस्तान ने मंदिर और दान की चिंता शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, चढ़ावा चोरी करने वालों को दंड मिलना ही चाहिए, राम के मंदिर में हर व्यवहार राम भाव से ओतप्रोत होना चाहिए, राम जी की सेना या सेवा में चोरों का क्या काम। राजस्थान पत्रिका ने मिट्टी की पुकार शीर्षक से लिखा है, 94 वर्ष की उम्र में आंध्र प्रदेश की महिला ने छोड़ी अमरीकी नागरिकता, कहा मुझे अमरीकी नहीं भारतीय नागरिक बनकर मरना है। देशबंधु ने आर्थिक पृष्ठ पर जताया है, भारत के इंजीनियरिंग निर्यात ने बनाया रिकॉर्ड, मई में पहली बार छुआ 12 अरब डॉलर का आंकड़ा।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस में शामिल होने के लिए आज सेशल्स की 3 दिन की राजकीय यात्रा पर रवाना होंगे। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के 14 शहरों में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। भारत ने परमाणु रिएक्टर से उत्पन्न ऊष्मा का उपयोग करने वाला विश्व का पहला हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र विकसित किया। भूकंप ग्रस्त वेनेजुएला की सहायता के लिए भारत का ऑपरेशन अमिस्ताद। FIH प्रो हॉकी लीग में भारत ने पाकिस्तान को 7-1 से करारी शिकस्त दी और फीफा फुटबॉल विश्व कप में स्पेन से 1-0 से हारकर दो बार का विश्व चैंपियन उरुग्वे प्रतियोगिता से बाहर। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to embark on 3-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 50th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela, sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, 2-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. Prime Minister Narendra Modi will embark on a 3-day state visit to Seychelles this morning to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as a guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Our correspondent has filed this report.
3: Prime Minister Modi will address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora during his visit. Today, he is scheduled to visit the botanical gardens for a tree plantation ceremony and visit the Seychelles Coast Guard base. India and Seychelles share a long-standing partnership rooted in shared historical, cultural, and people-to-people ties. As a key maritime neighbor in the Indian Ocean region, Seychelles holds a special place in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. The visit will reaffirm the strong and enduring friendship between India and Seychelles and reinforce the shared commitment of both countries to enhance the bilateral relationship across all sectors.

0: best third place teams. And now for a look at today's newspapers, it's over to Tanvi Khurana.
1: Thank you, Abhishek. The India-UK Free Trade Agreement finds mention in most of the dailies. The pioneer coating, Commerce and Industry Minister Piyush Goyal says, transformational growth, prime focus of India-UK FTA. Will implement UCC in Bengal, says Adhikari, notes the Tribune. Hindustan Times, in its editorial piece, Ram Temple case deserves honesty, writes that the government's handling of the allegations will determine the political and spiritual ramifications of this evolving saga. The paper writes, for centuries, Ayodhya has been the epicenter of faith for many Hindus who believe it to be the birthplace of Lord Ram. After the Supreme Court's landmark 2019 ruling concluded, the decade long Babri Masjid Ram Janmabhoomi title dispute and paved the way for the construction of the Ram Temple, the recent controversy around irregularities in donations threatens to tarnish the temple's status. Australia eyes stronger social media ban for children, reports the Pioneer. NCERT drops French Russian revolutions from class 9th books, informs the Tribune. And finally, Ireland script history with maiden T20 international win over India, reports the Statesman. And with that, it's back to you, Abhishek.
0: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to embark on a three-day state visit to Seychelles this morning to attend Seychelles' 58th National Day. Union Home and Corporation Minister Amit Shah to launch Bharat Taxi Service in 14 cities of Gujarat today. India develops world's first hydrogen production facility that uses heat from nuclear reactor. New Delhi launches Operation Amistad to aid quake-hit Venezuela. Sends relief material and medical assistance as death toll rises to 920. In the FIH Men's Pro League Hockey, India thrashes Pakistan 7-1 in London last night. And in football, two-time champion Uruguay crash out of FIFA World Cup after losing to Spain 1-0. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी FM शिमला. 8:30 हो चुके हैं और ये समय है FM न्यूज़ हेडलाइंस का. आइए सुनते हैं.
3: नमस्कार, FM न्यूज़ हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे. ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आज बड़ा भंगाल जाने का कार्यक्रम है. वे यहाँ के लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को सुनेंगे और मौके पर उनके निवारण के लिए अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करेंगे. मुख्यमंत्री का बड़ा भंगाल क्षेत्र का ये पहला दौरा है. इससे पहले मुख्यमंत्री आपदा प्रभावित क्षेत्र का भी दौरा करेंगे और प्रभावित लोगों से मुलाकात करेंगे. शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर के नेतृत्व में उच्च स्तरीय शिक्षा दल ने जम्मू कश्मीर दौरे के दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की. इस दौरान मंत्री ने हिमाचल में शिक्षा क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के प्रयासों तथा दूरदराज क्षेत्र तक बेहतर शिक्षा पहुंचाने की दिशा में उठाए गए कदमों की जानकारी दी. इस दौरान शिक्षा दल ने जम्मू कश्मीर के कई स्कूलों का दौरा कर वहां लागू नवाचारों और शिक्षा सुधारों का अध्ययन किया. ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 और 29 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन 2026 की अध्यक्षता करेंगे. दो दिन के इस सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विशेषज्ञ शामिल होंगे और समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करेंगे. चर्चा में विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा और ग्राम पंचायत स्तर पर योजना प्रक्रिया को मजबूत बनाने और संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा. भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कल शिमला जिला के सुनी में पौधारोपण किया गया. पौधारोपण के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ मातृ सम्मान का संदेश दिया गया. प्रदेश में कल 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी. इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है. इस अंक में इतना ही. नमस्कार.
2: वन 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला और FM शिमला

से ये समय है लोक संगीत का, आम जन के बीच गूंजने वाले लोकगीतों का आनंद आप लेंगे इस कार्यक्रम में आम जन की बोली में। लोक संगीत में सबसे पहले सुनते हैं मंजू भारद्वाज का गाया ये लोकगीत।

क्यूनी ने आप 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ फिल्म संगीत का आनंद अब आप लेंगे। सबसे पहले आइए सुनते हैं कयामत से कयामत तक फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है उदित नारायण ने।

दोस्तों, आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली, आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है।

कयामत से कयामत तक फिल्म का गीत अभी आपने सुना। अगला गीत हमने लिया है फिल्म क्या कहना से, जिसे गाया है अलका याग्निक ने। मजरूह सुल्तानपुरी के बोल है और संगीत है राजेश रोशन का। अलका याग्निक का साथ दिया है सोनू निगम ने। आइए सुनते हैं ये गीत।

फिल्म संगीत का आनंद ले रहे हैं आप एफएम शिमला से, और गीत संगीत का सिलसिला जारी रखते हुए अगला गीत आपको सुनाने जा रहे हैं सुरेश वाडेकर की आवाज़ में, जिसे हमने लिया है सात खून माफ फिल्म से। आइए सुनते हैं।

आज का गुंडा राज। जी हाँ, ये है फिल्म का नाम जिसका गीत अब आपको सुनाने जा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में। समीर के बोल हैं और गीत को संगीतबद्ध किया है आनंद मिलिंद ने। आइए सुनते हैं।

0: आकाशवाणी के साथ जुड़िए और अपने उत्पाद और सर्विसेज यानी सेवाओं से जुड़े अपने कारोबार के बारे में सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार प्रसार कर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं। शर्मीली फिल्म के इस गीत को सुनिए किशोर कुमार की आवाज में।

फिल्म संगीत में फिलहाल इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ, और ये समय है पीसी हाइलाइट्स का, यानी कि हमारे प्राइमरी चैनल से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में अब आप जानेंगे। 9:30 पर आप सुन सकते हैं सुरबेला कार्यक्रम। 10 का समय रहेगा रिमझिम कार्यक्रम का, और 11:05 पर आप सुनेंगे लोक संगीत। 12:20 अपना पसंदीदा कार्यक्रम महिला सम्मेलन सुनेंगी 12:20 पर। 1:10 का समय रहेगा सैनिकों के लिए कार्यक्रम का। सुनहरी किरणें आप सुनेगा 2:00। 2:30 पर लोक संगीत का आनंद आप लेंगे हिम गुंजन कार्यक्रम में, और 3:05 पर सुनेगा जिले की चिट्ठी। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रमों में 4:20 पर आप लेंगे आनंद चंब्याली कार्यक्रम का। 4:50 पर सुन सकते हैं मंडियाली कार्यक्रम। 6:06 पर कांगड़ी कार्यक्रम सुनेगा, और 6:35 का समय रहेगा महासुई कार्यक्रम का। 5:10 पर आप सुनेंगे दिल्ली रिले कार्यक्रम प्रकृति की बात आकाशवाणी के साथ। 7:10 पर आप सुन सकते हैं कृषि जगत कार्यक्रम, और 7:56 पर रोजगार समाचार आप सुन पाएंगे। धारा रे गीत ये कार्यक्रम आप सुनेगा 8:00, और 8:30 का समय रहेगा सुगम संगीत कार्यक्रम का। 9:15 पर सुनेगा हिम दर्शन कार्यक्रम। 9:30 पर राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका, और 10:00 आप सुन पाएंगे संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम। तो ये थी पीसी हाइलाइट।

हर्ट्स जुड़े हैं आप 103.7 मेगाहर्ट्स पर आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया जाएगा।
1: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
2: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
1: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
2: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
1: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
2: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बड़ा भंगाल के दौरे पर। 14 वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर। केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, जल्द बनाए जाएंगे तकनीकी पैरामीटर। आज नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक होगी आयोजित, क्षेत्र में विकास के अलावा आपदा प्रबंधन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा का सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, आज सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा भंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइडल परियोजना के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज बड़ा भंगाल में ही रुकने का कार्यक्रम है। वे कल बड़ा भंगाल से शिमला लौटेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य इस दुर्गम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को करीब से समझना और सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके, इसलिए ये यात्रा जरूरी है। उन्होंने कहा कि बड़ा भंगाल की कठिन परिस्थितियों को मौके पर जाकर ही बेहतर ढंग से समझा जा सकता है। राज्य सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में से मात्र 3.8% कार्य ही कम गुणवत्ता के पाए गए, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफी बेहतर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, कड़ी जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के कारण ये सफलता मिली है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी पैरामीटर बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर यह जानकारी देते हुए प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि सरकार चिट्टे के खात्मे के लिए व्यापक स्तर पर काम

0: कर रही है और तस्करी के नेटवर्क को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जारी है। इस अभियान में उपायुक्तों सहित अधिकारियों का भी एंटी चिट्टा टेस्ट के आधार पर आंकलन करने का निर्णय लिया गया है।
1: दो चीज़ें की जा रही हैं, एक जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा ये भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी है उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे।
0: आम लोगों तक सरल और सुलभ न्याय पहुंचाने के उद्देश्य से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा शुरू किए गए समाधान समारोह विशेष लोक अदालत के तहत लंबित मामलों को आपसी सहमति से निपटाया जा रहा है। 21 अप्रैल से जारी इस महाअभियान के तहत वर्तमान में राज्य, जिला व उच्च न्यायालयों में विधिक सेवा प्राधिकरणों और मध्यस्थता केंद्रों में सुलह बैठकें आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण पहल का मुख्य उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मुकदमों का सुलह व समझौते के जरिए त्वरित समाधान करना है, जिसके लिए 31 जुलाई तक आवेदन लिए जा रहे हैं। इस महाअभियान का समापन 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट परिसर में विशेष लोक अदालत के साथ होगा। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIRNewsShimla और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रदेश में आज नव निर्वाचित 3,758 पंचायतों की पहली बैठक आयोजित होगी, जिसमें प्रधान और उप प्रधान सभी वार्ड सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी एजेंडों के अनुसार आज पंचायतें अपने अपने क्षेत्र में सड़क संपर्क, स्वच्छता व्यवस्था, पेयजल व सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के साथ आपदा प्रबंधन से जुड़े प्रस्ताव भी तैयार करेंगे। मानसून को देखते हुए भूस्खलन, बाढ़ और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए स्थानीय स्तर पर आवश्यक तैयारियों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि जिला परिषद, BDC तथा नगर परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव काफी पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इन चुनावों की तिथियां घोषित नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस देरी का उपयोग हॉर्स ट्रेडिंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए करना चाहती है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर आज प्रशासन से तत्काल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदेश भर में कल रविवार 28 जून को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। इस अभियान में 5 वर्ष तक की आयु के 5,94,000 से अधिक बच्चों को खुराक पिलाने का लक्ष्य है। इस अभियान के लिए प्रदेश में 4,753 पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। चंबा जिला से संबंध रखने वाली अंतर्राष्ट्रीय धाविका सीमा ने एक बार फिर प्रदेश का नाम रोशन किया है। इन दिनों भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में चल रही 65वीं राष्ट्रीय सीनियर प्रतियोगिता में सीमा ने 5,000 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। कल 28 जून को इस प्रतियोगिता में सीमा 10,000 मीटर की दौड़ में भी भाग लेगी। सीमा के बेहतर प्रदर्शन से उनका जापान में होने वाली एशियन गेम्स के लिए चयन हो गया है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद प्री मानसून का असर देखने को मिला। शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में उमस भरी गर्मी से लोगों की परेशानी बढ़ी है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हैं और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहने की संभावना जताई है। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। विभाग के अनुसार मॉनसून 5 दिनों की देरी से चल रहा है और जुलाई माह की शुरुआत में प्रदेश में दस्तक दे सकता है। अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर। आज अधिकतर समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है। अमर उजाला के शब्द है, रामपुर में 200 मीटर गहरी खाई में गिरी पिकअप, मां बेटे समेत 6 की मौत। पंजाब केसरी के शब्द है, फेसबुक पर लाइव थी महिला, चालक ने नियंत्रण खोया और पिकअप खाई में गिरी, 6 की मौत। शिक्षकों को 2028 तक पास करना होगा टेट।

0: नहीं तो जाएगी नौकरी। शीर्षक से दैनिक जागरण ने लिखा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद शिक्षा विभाग सख्त। दिव्य हिमाचल के शब्द है, हिमाचल में भी 2028 से पहले पास करना होगा टेट। हिमाचल दस्तक के अनुसार सीएम ने चंडीगढ़ में मांगी हिमाचल के हक की 7.19% हिस्सेदारी। चंडीगढ़ में पंजाब के राज्यपाल से मिले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह। मौसम से जुड़ी खबर को दैनिक भास्कर ने शीर्षक दिया है, 4 जिलों में प्री मानसून की झमाझम बारिश, मैदानी क्षेत्रों में गर्मी बरकरार। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज बड़ा बंगाल के दौरे पर, 14 वर्षों के बाद कोई मुख्यमंत्री पहुंचेंगे दुर्गम क्षेत्र के दौरे पर। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में हिमाचल पहाड़ी राज्यों में पहले स्थान पर, केंद्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में सराहा गया प्रदेश का सड़क निर्माण। सरकारी भर्तियों में चिट्टा टेस्ट अनिवार्य, जल्द बनाए जाएंगे तकनीकी पैरामीटर। आज नव निर्वाचित पंचायतों की पहली बैठक होगी आयोजित, क्षेत्र के विकास के आपदा प्रबंधन प्रस्तावों पर होगी चर्चा। और पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में भाजपा का सरकार पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप, आज सभी जिलों में करेंगे धरना प्रदर्शन। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 11:00 बजे। नमस्कार।
1: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
2: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
1: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
2: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
1: जानकारी लें अधिकार जाने,
2: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए गए, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ एफएम शिमला पर भी रिले किया गया। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
4: ट्यूनी ने आप 103.7 मेगाहर्ट्ज आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ 9:30 हो चुके हैं और कुदरत के रंग कार्यक्रम में स्वागत है आप सभी सुनने वालों का। हिमाचल की बात करें तो कुदरत ने सराबोर किया है खूबसूरती से अपने हिमाचल को। कितने ही सारे प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर दर्शनीय स्थल हैं यहाँ पर, और आज हम बात करेंगे स्पीति घाटी की। साथ ही साथ गीत संगीत भी चलता रहेगा, तो आइए सुन लेते हैं ये गीत।

ये जहाँ बेहद खूबसूरत है और अपने हिमाचल का सौंदर्य तो है ही अनुपम, प्रकृति के दिलकश मनभावन नज़ारे हमें आकर्षित करते हैं अपनी ओर और अमिट छाप भी छोड़ जाते हैं हमारे मन मस्तिष्क पर। और आज हम बात कर रहे हैं स्पीति घाटी की, तो हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति ज़िले में स्थित एक बेहद खूबसूरत और ठंडा रेगिस्तानी इलाका है ये, और समुद्र तल से लगभग 112-500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद ये घाटी अपने आश्चर्यजनक मून लाइक लैंडस्केप्स, प्राचीन बौद्ध मठों और साहसिक गतिविधियों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। जी हाँ, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 12,500 फीट है और यहाँ पर विजिट करने के लिए प्लेसेस की अगर हम बात करें तो गाजा स्पीति का मुख्य केंद्र है और सबसे बड़ा स्थान है जहाँ ठहरने और खाने की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है। की मठ, ये भी स्पीति का सबसे बड़ा और पुराना मठ है जो कि शंकुधारी पहाड़ी पर स्थित है। यहाँ की चंद्रताल झील चांद के आकार की है जो कैंपिंग और अद्भुत सौंदर्य के लिए विशेष रूप से जानी जाती है। इसके अलावा हिक्किम और लांगजा की अगर हम बात करें तो हिक्किम दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस है जबकि लांगजा विशालकाय बुद्ध प्रतिमा और जीवाश्मों के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा ही एक स्थान है ताबो, जिसे हिमाचल का अजंता भी कहा जाता है, जो अपने 1000 वर्ष पुरानी गुफाओं और मठों के लिए जाना जाता है। बात और भी करेंगे स्पीति घाटी के बारे में और साथ ही साथ गीत संगीत का आनंद भी लेते रहेंगे, तो सुनते हैं ये गीत।

कुदरत के रंग कार्यक्रम का आनंद आप ले रहे हैं एफएम शिमला से और बात हो रही है स्पीति घाटी की। देखने योग्य आकर्षण की अगर बात करें तो यहाँ पर पिन वैली नेशनल पार्क भी है, हिमाचल प्रदेश का एकमात्र शीत रेगिस्तानी राष्ट्रीय उद्यान जो दुर्लभ हिम तेंदुए और राजसी गुए मम्मी के लिए बेहद प्रसिद्ध है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ तक कैसे पहुंचा जाए, कैसे सौंदर्य का लुत्फ उठाया जाए, तो जान लेते हैं कि यहाँ पहुंचने के लिए दो मुख्य मार्ग है जो मई से अक्टूबर तक खुले रहते हैं। और शिमला के रास्ते यदि आप आना चाहें तो ये मार्ग साल में सबसे ज़्यादा समय तक खुला रहने वाला रास्ता है और ये सुरक्षित भी है। शिमला से काजा की दूरी लगभग 410 किलोमीटर है और अगर आप जाना चाहते हैं मनाली के रास्ते से तो ये मार्ग भी बेहद रोमांचक है जिसकी दूरी 480 किलोमीटर है। और ये मार्ग रोहतांग पास और कुंजुम दर्रा से होकर गुजरता है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

कुदरत के रंग कार्यक्रम पहुंच चुका है अपने अंतिम पड़ाव पर। स्पीति घाटी की बात आज हमने की, जो कि एक मध्यभूमि के नाम से जाना जाने वाला स्थान है और तिब्बत और भारत के बीच स्थित है ये घाटी। और ये घाटी अपने मनमोहक चंद्र दृश्य, प्राचीन बौद्ध मठों और अद्वितीय तारामंडल अवलोकन के अवसरों के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: इसी गीत के साथ कुदरत के रंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। एक सौ 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर एफएम शिमला के साथ जुड़े हैं आप। आइए सुनते हैं एफएम न्यूज हेडलाइंस।
1: नमस्कार, एफएम न्यूज हेडलाइंस के साथ मैं पूनम भारद्वाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस सरकार पर पंचायती राज एवं नगर निकाय संस्थाओं में लोकतांत्रिक प्रक्रिया बाधित करने का आरोप लगाया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि सरकार अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनावों की तिथियां जानबूझकर घोषित नहीं कर रही ताकि हॉर्स ट्रेडिंग और जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा सके। भाजपा चुनाव तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर आज प्रदेश भर में जिलाधीश कार्यालयों पर सांकेतिक धरना देगी। प्रदेश में हाल ही में गठित ग्राम पंचायतों की आज पहली बैठक होगी। इस बैठक के साथ ही प्रदेश पंचायतों के नव निर्वाचित जनप्रतिनिधियों का 5 साल का कार्यकाल औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगा। आज होने वाली पहली बैठक में पंचायत प्रधान वार्ड सदस्यों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। बैठकों में पंचायतों के प्रशासनिक कार्यों के अलावा आगामी विकास योजना तैयार करने को लेकर भी चर्चा संभव है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिला के दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे तथा स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा भंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइड्रल परियोजना के निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य इस दुर्गम क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को करीब से समझना है, जिससे सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजना का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। केंद्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम

0: सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई जिलों में कल दोपहर बाद प्री मानसून का असर देखने को मिला। शिमला, मंडी, कुल्लू और चंबा में कुछ स्थानों पर तेज बारिश हुई, जबकि मैदानी क्षेत्रों बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और ऊना में उमस भरी गर्मी से लोगों को परेशानी बढ़ रही है। आज प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में हल्के बादल छाए हैं और मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अगले 5 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रुक रुक कर वर्षा का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान जारी किया है। इस दौरान ऊंची चोटियों में बर्फबारी की भी संभावना है। इस अंक में इतना ही, नमस्कार।
1: FM शिमला के साथ जुड़े हैं आप और एक बार फिर से जान लेते हैं कार्यक्रमों के बारे में। आज आप सुन सकते हैं पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम 11:05 पर। पहाड़ी संगीत का आनंद आप लेंगे 11:30 पर और 2:30 पर शिखरों के स्वर कार्यक्रम में। म्यूजिक मस्ती एंजॉय कीजिएगा 1:10 पर और 2:00 सबरंग कार्यक्रम, महिला सम्मेलन 12:20 पर और 3:10 पर ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत आप सुन सकते हैं। युववाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 3:30 और हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम शुरू होंगे 4:20 से और 7:10 पर कृषि जगत कार्यक्रम आप सुन सकते हैं। 8:00 सुनिएगा भूले बिसरे गीत कार्यक्रम, 9:15 पर एक फिल्म से कार्यक्रम और 9:30 पर ईमेल बेस्ड प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन जरूर सुनिएगा। 10:00 गज़लें आप सुनेंगे और 10:30 पर सदाबहार नगमे कार्यक्रम। और अब यानी कि 10:00 आपका समय है आपकी फरमाइश प्रोग्राम सुनने का।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप ट्यूनिंग है आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ लेकर हाजिर हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम आपकी फरमाइश लाइव फोन। इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं और जुड़ने के लिए आपको करना होगा हमें कॉल। हमारे फ़ोन नंबर है 2808152 और 2808034। और आज की हमारी मूवीज़ हैं MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, नीरजा, रॉकी हैंडसम, सनम रे, हाउसफुल 3, हैप्पी भाग जाएगी, क्या कूल हैं हम और अजहर। जब तक आप सब की कॉल हम तक पहुंचती हैं तब तक आपको सुना रहे हैं ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी। आइए सुनते हैं।

0: सॉन्ग आपने एंजॉय कर लिया। और इसी बीच हमारे आज के प्रोग्राम के फर्स्ट कॉलर हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, जानते हैं कौन और कहाँ से हैं। हेलो,
1: हेलो
0: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
1: जी, नमस्कार। मैं योगेश बात कर रहा हूँ, करसोग डिस्ट्रिक्ट मंडी से।
0: नमस्कार जी योगेश जी, आपने कॉल किया इसके लिए थैंक्स कहना चाहेंगे। करसोग मंडी से आप कॉल कर रहे हैं, तो मौसम कैसा है वहाँ का?
1: मौसम तो धूप और छाओं की आंख मिचोली चली हुई है, और
0: क्या बात
1: सुबह
0: है
1: तो मौसम बहुत अच्छा था और अभी बहुत तेज धूप शुरू हो चुकी है।
0: जी। जी तो क्या करते हैं आप, बताना चाहेंगे?
1: जी, मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैं डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन DELED कर रहा हूँ।
0: क्या बात है, और साथ में हमारे एक कार्यक्रम भी सुनते रहते हैं रेडियो में।
1: जी हाँ, मुझे आपके कार्यक्रम सुनना बहुत पसंद है, और जब रेडियो पर अपनी आवाज़ सुनने को मिलती है तो और भी अच्छा लगता है। और मैं आज खुश नसीब हूँ कि इस कार्यक्रम में आज मेरी पहली कॉल लग गई।
0: जी, आपकी कॉल लगी और वो भी सबसे पहले, है ना? तो
1: जी हाँ
0: खुशी तो आपको हो ही रही होगी यकीनन।
1: हाँ
0: और
1: जी,
0: कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम में?
1: आप मुझे नीरजा मूवी का गाना सुना
0: जी
1: दीजिएगा।
0: ज़रूर, आपको सुनाया जाएगा ये गीत। एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे कॉल करने के लिए।
1: जी, थैंक यू।
0: तो लीजिए, आप तमाम लिसनर्स के लिए भी प्ले कर रहे हैं निर्जा फिल्म का ये गीत।

0: जीते हैं चल। जी हाँ, ये सॉन्ग आपने अभी इंजॉय किया और आपकी फरमाइश प्रोग्राम आप इंजॉय कर रहे हैं एफएम शिमला से, और लाइव फ़ोन इन इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना होगा हमें कॉल, और हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 2808152 और 2808034। और साथ ही साथ हमारी आज की मूवीज़ भी नोट कर लीजिएगा, MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, नीरजा, रॉकी हैंडसम, सनम रे, हाउसफुल 3, हैप्पी भाग जाएगी, क्या कूल हैं हम और अजहर। जिस भी फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं आप हमें कॉल करके बता सकते हैं। और इसी बीच नेक्स्ट कॉलर भी हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं। लेते हैं आज के कार्यक्रम की अगली कॉल। हेलो,
1: नमस्कार मैडम, मैं चिरमिरी कुरासिया कॉल रही जिला कोरिया छत्तीसगढ़ से।
0: नमस्कार जी इंद्रभान जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस कार्यक्रम में। बताना चाहेंगे क्या करते हैं आप?
1: मैं SCCL में सर्विस करता हूँ, साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड में सर्विस करता हूँ, नौकरी करता हूँ और दूसरी फील्ड में कई केंद्रों में लाइफ ईमेल में जुड़ता हूँ।
0: जी क्या बात है, आप हमारे जी रेगुलर लिसनर्स में से एक हैं आप। और आज आपने कॉल किया, थैंक्स कहना चाहेंगे। कौन सी फिल्म का आप गीत सुनना चाहेंगे?
1: आपका केंद्र में सुनूंगा मैडम हाउसफुल 3 का, वो जो गाना बता रहे थे मैडम।
0: जी जी, हाउसफुल 3 फिल्म का गीत आपको सुना लिया जाएगा। थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौसम कैसा है आपके यहाँ?
1: यहाँ तो मैडम मौसम गजब का किया है, परसों एकदम 1:30 बजे करीब बादल किया और गरज चमक हुआ और दक्षिण दिशा तरफ एकदम धड़ाधड़ चमक रहा था और पानी,
0: यानी कि मौसम का मिजाज थोड़ा सा बिगड़ा हुआ है। और ऐसे मौसम में आप गीत संगीत का आनंद लेते हैं। एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे कॉल करने के लिए, थैंक्स। तो आप तमाम लिसनर्स के लिए भी प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी हाउसफुल 3, आइए सुनते हैं।

आपकी फरमाइश प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हैं आप और लाइव फोन इन इस प्रोग्राम में लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो जी, कौन बोल रहे हैं? लगता है ये हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, एक और कॉलर हमसे जुड़ना चाह रहे हैं, उनकी कॉल लेते हैं, आइए सुनते हैं। हेलो हेलो, डिसकनेक्ट हो रही है कॉल्स, कोई नेटवर्क इशू हो सकता है, एक और कॉल लेना चाहेंगे कार्यक्रम में।

0: हेलो हेलो,
1: हेलो।
0: हाँ जी, कौन बोल रहे हैं? स्वागत है आपका
1: नमस्कार
0: कार्यक्रम
1: जी,
0: में।
1: नमस्ते जी,
0: नमस्कार
1: क्या हाल
0: जी,
1: है?
0: बढ़िया। नाम बताएंगे अपना?
1: नाम क्या आप पता तो है आपको, गुंजेटा बोलो।
0: हाँ गुंजेटा जी, आपका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। और लाइव फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया, इसके लिए थैंक्स कहना चाहेंगे। कौन सी फिल्म का आप गीत सुनना चाहेंगे?
1: लाइव चल रहा है।
0: जी, लाइव चल रहा है।
1: हाँ, कल्पना गांगटा जी, आपको मेरा दिल से बेहद अति प्यार भरा नमस्कार जी।
0: नमस्कार जी।
1: एल आर गुंजेटा, छुपाड़ी रोड से जी।
0: जी गुंजेटा जी, स्वागत करते हैं आपका। क्या चला है इन दिनों आपके यहाँ?
1: आजकल गांगटा जी कुछ नहीं, थोड़ा बहुत वो क्या कहते हैं, स्प्रे सुप्रे चल रहे हैं। सेब तो इस बार थोड़ी क्रॉप कम है, और सेब इस बार बहुत कम है जी।
0: जी, सेब की फसल कम है, तो क्या मानते हैं आप, मौसम इसके लिए जिम्मेवार है या आपकी मेहनत में कोई कमी रह गई है?
1: हम तो गांगटा जी टाइम टू टाइम स्प्रे करते हैं, खाद डालते हैं, हर प्रकार का मतलब तौलिया वगैरह करते हैं, पर लेकिन इस बारी कुछ क्लाइमेट ही कुछ इस बारी कहीं भी सेम नहीं जी। बहुत कम, कुछ मौसम की बार पड़ गई इस बारे ना, मौसम के आधार पर चलता है जी। आने जी, क्लाइमेट अगर अच्छा होगा तो, क्योंकि बीच में बारिश होती है ना जी लगातार, तो रात को फिर जैसे साफ होता मौसम, सुबह के टाइम तो खराब रहता है, तब तो ठीक है। कई बार रात को भी सब साफ हो जाता है, तो फिर उसे पाला पड़ता है एक हिसाब से, पाला से वो क्या ना, सेबों को बहुत नुकसान।

0: जी देखिए, हमारे हाथ में तो मेहनत करना होता है। आप अच्छे से अपनी कृषि बागवानी करते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। और उसका फल कैसा मिलेगा ये तो मौसम पे भी डिपेंड करता है, और कुछ हद तक जो हमारी परिस्थितियाँ भी, हमने खुद ही इस तरह का माहौल बना दिया है कि मौसम भी अब उस तरीके से नहीं बदलता जैसे बदलता था, है ना।
1: जी,
0: तो
1: और मैं गंगा जी कहना चाहूंगा आपको कि मैं तो खैर वैसे तो मैं अप्रैल 21 में रिटायर हो गया हूँ। मैं शिमला में ही नौकरी की पूरी उम्र, मैं एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुआ हूँ।
0: जी, तो
1: अब गांव में मैं अब तो बाग बगीचे में मैं मेहनत कर रहा हूँ
0: क्या
1: और
0: बात
1: बहुत
0: है।
1: आनंद आ रहा है जी। अब तो साथ में साथी है, जीवन साथी मतलब ये रेडियो और संगीत मेरा जीवन है जी।
0: जी, संगीत के बिना तो ज़िंदगी अधूरी सी लगती है। और साथ में देखिए, आपने कितनी अच्छी बात कही है कि रिटायरमेंट के बाद आप बागवानी कर रहे हैं, आप प्रकृति की गोद में रहते हैं, साथ में म्यूज़िक का आनंद भी लेते हैं। तो आज आपने फ़ोन किया, तो कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: मैं चाहूंगा कांता जी, आपकी जो आवाज अंदाज है बेहद काबिल तारीफ है जी, मैं आपकी प्रशंसा करनी चाहिए आपकी जी।
0: जी शुक्रिया।
1: और आज मेरे परिवार जन है जी, अनुज गुंजेटा, मुकुल गुंजेटा, जमिनता गुंजेटा, मेरे मित्रगण है जी, आज जीएमसी शिमला से जगदीश चंद जी और कलहन जिला मंडी से बोधराज वर्मा जी। आप अपनी चॉइस का कोई भी सुना दो जी।
0: जी, आपको ज़रूर कोई अच्छा सा गीत सुनवा लिया जाएगा। एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे कॉल करने के लिए।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: तो चलिए, आप सभी लिसनर्स के लिए प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग जिसे हमने लिया है रॉकी हैंडसम फिल्म से।

0: लाइव फोन इन प्रोग्राम आपके फरमाइशें जग रहे हैं आप FM शिमला से और लेते हैं नेक्स्ट कॉल प्रोग्राम में। हेलो,
1: हेलो दीदी, नमस्ते।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन बोल रहे हैं?
1: मैं गंगाधर सावनकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ दीदी।
0: जी क्या बात है, महाराष्ट्र से आपकी कॉल हमें लग गई है ना।
1: जी जी जी।
0: क्या करते हैं आप, बताना चाहेंगे?
1: मैं रिटायरमेंट हूँ दीदी।
0: क्या बात है, और साथ में हमारे कार्यक्रमों का आनंद आप लेते रहते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: लेते दीदी, रेडियो साथ में है मेरे।
0: और मौसम कैसा है इन दिनों
1: मौसम
0: आपके?
1: सुहाना है, अबर है।
0: आज आपने फोन किया तो कौन सा गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सनम रे फिल्म का गीत सुनना है।
0: जी, सनम रे फिल्म का गीत आपको ज़रूर सुनाया जाएगा। कोई संदेश आप देना चाहते हैं हमारे युवाओं को या हमारे श्रोताओं को?
1: मैं तो संदेश बोल तो ये देना चाहता हूँ कि जो अभी बरसात हो जाएंगी तो उसमें पेड़ लगाना दीदी।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छी बात
1: पेड़
0: आपने
1: लगाने
0: कही
1: से
0: है। तो
1: उससे कुछ
0: जी
1: अपने जो वातावरण में चेंज होगा, पानी टाइम पे गिरेगा,
0: जी
1: सभी अच्छा होगा दीदी।
0: बहुत अच्छी आपने बात कही। जब हम वृक्ष लगाएंगे तभी हम लंबा जीवन भी जी पाएंगे, क्योंकि देखिए हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेड़ों का जो कटाव है वो करते रहते हैं, लेकिन पेड़ लगाना अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते। तो आपने बहुत अच्छा संदेश दिया है, एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे कॉल करने के लिए।
1: दीदी
0: तो
1: कुछ मित्रों नाम लो
0: जी,
1: हमारे भगवान सिंह जी है, गौतम जी रावले, तुकाराम जाधव, सुनील झा, दिलीप पाहुजा और धीरज रबारी जी, उदयलाल टेलर जी, ये सभी गाना सुना दीजिए।
0: जी हाँ, आप सभी के लिए प्ले करेंगे सनम रे फिल्म का गीत। और श्रोताओं, एक और कॉल हम लेना चाहेंगे। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
2: मैं कश्मीर से लतीफ मोहम्मद रीना।
0: जी लतीफ जी, आज आपने कॉल किया तो किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
2: धर्मवीर।
0: देखिए हमारी जो आज की मूवीज़ हैं, रॉकी हैंडसम, सनम रे, हाउसफुल 3, हैप्पी भाग जाएगी, क्या कूल हैं हम और अजहर, साथ में एम

0: दोस्तों ने दी अनटोल्ड स्टोरी जो कि आप सुन चुके हैं, गीत नीरजा का भी सुन चुके हैं, जो आपसे पहले के जो हमारे कॉलर हमसे कनेक्ट हुए थे उनकी फरमाइश थी सनम रे फिल्म का गीत सुनने की। तो आप भी इन्हीं मूवीज़ में से किसी एक फिल्म का गीत सुनना चाहते हैं तो आप हमें बता सकते हैं।
1: दुबारा बोलिए मैडम नाम।
0: जी सनम रे हैप्पी भाग जाएगी। जी
1: सनम रे सुनाइए।
0: जी एक बार थैंक्स कहना चाहेंगे कॉल करने के लिए। लीजिए आनंद सनम रे फिल्म के इस गीत का जिसे गाया है अरिजीत सिंह ने।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं एफएम शिमला के साथ और एंजॉय कर रहे हैं आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम आपकी फरमाइश लाइव फोन इन। इस प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर है 2808152 2808034। और एक बार फिर से नोट कर दीजिएगा हमारी आज की मूवीज़ के नेम्स भी। हमारी आज की फिल्में हैं MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी, नीरजा, रॉकी हैंडसम, सनम रे, हाउसफुल 3, हैप्पी भाग जाएगी, क्या कूल हैं हम और अजहर। इसी बीच एक और कॉलर हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, लेते हैं कार्यक्रम की नेक्स्ट कॉल। हेलो।
1: हेलो, नमस्कार।
0: नमस्कार जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कौन

0: और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: मैं राकेश बात कर रहा हूँ कोटखाई से।
0: राकेश जी, कोटखाई से आपने हमें कॉल किया, थैंक्स कहना चाहेंगे। किस फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे आज के कार्यक्रम में?
1: अजहर मूवी का सुनना है
0: जी। अजहर फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे। कैसा है मौसम इन दिनों आपके कोटखाई में?
1: कोटखाई में मौसम बिल्कुल साफ है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है और थोड़ी थोड़ी जो है बारिश भी आ गई थी, लेकिन ये जो बारिश जो है हमारे को कोई असर नहीं कर रही है, तो फिर ये है कि थोड़ा मौसम साफ है।
0: जी हाँ, मौसम का मिजाज तो इन दिनों कुछ यूं ही रहने वाला है, कहीं खिली धूप, कहीं रिमझिम बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन एक अपना ही मज़ा होता है, हर मौसम का अपना ही आनंद होता है ना। और
1: जी।
0: अगर फसलों की बात करें तो फसलों के लिए आपके तो सेब की फसल इन दिनों है, तो उसका काम चला होगा, उसके लिए भी बारिश आनी ज़रूरी भी है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर सेब के लिए बारिश आएंगी तभी तो सेब की जो है रंग खिल जाएगा, नहीं तो
0: जी। फर्स्ट
1: कोई
0: टाइम
1: असर नहीं।
0: आपने कॉल किया है या फिर आप कॉल करते रहते हैं हमें?
1: जी मैं आकाशवाणी प्राइमरी

0: फसलों के लिए, आपकी तो सेब की फसल इन दिनों है, तो उसका काम चला होगा, उसके लिए भी बारिश आनी जरूरी भी है ना?
1: बिल्कुल बिल्कुल, अगर सेब के लिए बारिश आएंगी तभी तो सेब की जो है रंग खिल जाएगा, नहीं तो
0: जी,
1: कोई
0: फर्स्ट टाइम
1: फसल।
0: आपने कॉल किया है या फिर आप कॉल करते रहते हैं हमें?
1: जी मैं आकाशवाणी प्राइमरी चैनल और FM शिमला दोनों चैनल को मैं सुनता रहता हूँ, और इन चैनलों के साथ साथ मैं बाकी अन्य स्टेशनों पे भी जुड़ा रहता हूँ, और आपके जो सभी प्रोग्राम मैं सुनता रहता हूँ।
0: जी बहुत बढ़िया, एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे कॉल करने के लिए। और अजहर मूवी का जो सॉन्ग है वो आपको ज़रूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और कॉल। हेलो,
1: हेलो,
0: हाँ जी, स्वागत है आपका आज के हमारे कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। कौन और कहाँ से बोल रहे हैं?
1: जी प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ, ग्राम बछोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से।
0: जी सिसोदिया जी, आपके जो वहाँ का मौसम इन दिनों किस तरह का है?
1: जी हल्की बारिश हुई थी और थोड़ी सी बारिश और हो जाती है तो किसान सोयाबीन लगाने की तैयारी करेंगे। हाँ
0: जी, बताना
1: जी
0: चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि आप करते क्या हैं?
1: जी मैं खेती किसानी का काम करता हूँ।
0: बहुत बढ़िया, अगर किसान ना
1: जी
0: हो तब तो देखो हम सभी का गुजारा असंभव है ना?
1: जी बिल्कुल,
0: आज
1: किसान
0: आपने
1: वही मतलब अन्न उगाते हैं और अच्छी अच्छी फसल पैदा करके सभी के लिए मतलब लाते हैं बाजार में।
0: किस फिल्म
1: जी
0: का
1: हाँ
0: गीत सुनना चाहेंगे?
1: जी, आप किसी भी फिल्म का सुनवा दीजिएगा, अभी जो राकेश जी ने पसंद किया है उसी का सुनवा दीजिएगा।
0: जी, अजहर मूवी का सॉन्ग आपको सुनाएंगे, एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहेंगे कॉल करने के लिए।
1: जी थैंक यू सो मच, मुझे आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा।
0: जी शुक्रिया, आप तमाम लिसनर्स के लिए भी प्ले कर रहे हैं ये सॉन्ग फ्रॉम द मूवी अजहर, आइए सुनते हैं।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं।
2: अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य संस्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
3: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
4: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी फरमाइश आप एंजॉय कर रहे हैं FM शिमला से। और इसी बीच नेक्स्ट कॉलर हमसे कनेक्ट हो चुके हैं, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। हेलो
6: मैडम जी, नमस्कार।
5: नमस्कार जी, स्वागत है आपका आज के हमारे इस कार्यक्रम में। कौन और कहां से बोल रहे हैं?
6: चकला बाजार समाना शहर, जिला पटियाला, पंजाब से पप्पू राजा खुशदिल जी।
5: जी पप्पू राजा खुशदिल जी, कैसा है मौसम आपके यहाँ?
6: मैडम जी मौसम तो पूरी गर्मी है जी इस वक्त जी।
5: जी और क्या कुछ खास इन दिनों आपने काम काज चला रखा है?
6: मैडम जी हम तो खाना सप्लाई करते हैं ये फैक्ट्रियों में, दुकानों में, घरों में, टिफिन सर्विस जी।
5: जी बहुत बढ़िया। और कोई संदेश आप देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
6: मैडम जी हम तो संदेश ये देना चाहेंगे, गर्मियों के दिनों में हमें बेजवान पक्षियों के लिए रोटी के टुकड़े और पानी के बर्तन हर वक्त भर कर रखने चाहिए जी।
5: जी बहुत बढ़िया। और आज आपने कॉल किया, थैंक्स कहना चाहेंगे।
6: मैडम जी गर्मी के दिनों में हमें तरबूज, जलजीरा और सिकंजमी का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए जी।
5: जी हाँ, इस तरह के पदार्थों का सेवन हमें करना चाहिए जो मतलब जिसमें जल हो, जलयुक्त जो है, जिससे हमारे शरीर में पानी की कमी ना हो, है ना?
6: हाँ जी मैडम जी, बहुत समय से आप पहले हम आपके विज्ञापन आता था, आपकी छोटी छोटी बातें हमें बहुत अच्छी लगती थी जी।
5: जी शुक्रिया। और हमारे प्रयास सफल हो जाते हैं जब हमारे श्रोताओं को हमारे कार्यक्रम पसंद आते हैं। आज कौन सी फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
6: मैडम जी आप गाना तो कोई भी सुनवा दें, इतना अच्छा प्रोग्राम पेश करने के लिए हम आपका आकाशवाणी शिमला पर गुलाब के फूलों के साथ पूरा धन्यवाद करते हैं जी।
5: जी धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो एक बार आप बताएंगे आपकी पसंद, वैसे तो हम कोई भी सॉन्ग आपको सुना देंगे क्योंकि आपको पसंद आ रहे हैं गाने, जैसा कि आपने कहा कि पसंद आ रहे हैं आपको कार्यक्रम। तो
6: मैडम जी हम तो पुरानी फिल्मों के गाना ज्यादा सुनते हैं, आज तो आप सभी नई फिल्मों के

0: लेकर आए हो जी।
1: जी, क्योंकि अब से थोड़ी ही देर बाद पुरानी फिल्मों से कार्यक्रम में आप पुराने गीतों का आनंद लेंगे, है ना। तो अभी हमारे पास जो फिल्में हैं, हैप्पी भाग जाएगी, क्या कूल है हम, ये जो फिल्में हैं, तो इसमें से कोई आप सुनना चाहेंगे।
0: मैडम जी, क्या कूल हैं हम, कोई भी गाना सुनवा दो जी,
1: जी
0: आपका
1: जी
0: बहुत ही ज्यादा
1: जरूर
0: धन्यवाद करते हैं जी हम।
1: जी, आपका भी बेहद शुक्रिया। सुनाते हैं आपको क्या कूल है फिल्म का ये गीत।

0: ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: आपकी फरमाइश प्रोग्राम पहुंच रहा है समापन की ओर और देखिए ना घड़ी की सुइयां भी अब इशारा करती हैं कि जाने के लिए, लेकिन एक दो जो कॉलर हैं हमसे कनेक्ट होना चाह रहे हैं, इनकी कॉल्स हम ले लेते हैं। आइए जानते हैं कौन और कहां से हैं। हेलो।
3: हेलो मैडम, नमस्कार मैडम जी।
2: नमस्कार जी, कौन और कहां से बोल रहे हैं?
3: हाँ मैडम, जम्मू से केशव शर्मा जी।
2: केशव शर्मा जी, स्वागत करते हैं आपका आज के इस कार्यक्रम में। तो जी थैंक्स कहना चाहेंगे, आपने कॉल किया। तो कौन सी फिल्म का आप गीत?
3: फिल्म का गाना सुना, हैप्पी बागराई जी फिल्म का गाना सुना रही थी।
2: जी जी जी जी, जरूर सुनाएंगे।
3: कोई साथी हैं? मैं श्रीमती सुषमा रानी है, बच्चियां हैं मेरी अंशु शर्मा है, साक्षी शर्मा है, भाई सतपाल शर्मा है
2: जी,
3: और मेरे दो दोस्त हैं यूपी से हैं विजय पांडे जी, राजस्थान से हैं पूर्ण वर्मा जी, और हिमाचल से हैं गोल्डी जी
2: जी।
3: तो कुछ और दोस्त हैं वो भी आपको फोन करते रहते हैं जी, पुष्कर नाथ शर्मा है, रिंकू दीदी है, पंची राम शर्मा है, जी हैं डोडा डिस्ट्रिक्ट से, ये जम्मू में पड़ता
2: जी। आप ये गीत इन सभी के लिए डेडिकेट करना चाहते हैं?
3: जी मैडम जी
2: जी, जरूर आपकी फरमाइश पूरी की जाएगी। एक और कॉल लेना चाहेंगे, आपको कहते हैं थैंक्स कॉल करने के लिए और जुड़े रहिए एफएम शिमला के साथ, है ना?
3: थैंक यू मैडम, थैंक यू।
2: हेलो
4: हेलो,
2: हाँ जी कौन बोल रहे हैं?
4: हाँ मैं जिला बालोतरा राजस्थान से मोहनलाल प्रजापति।
2: मोहनलाल जी, स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। देखिए हमारा जो कार्यक्रम है अब अंतिम पड़ाव पर है, आपने कॉल किया, थैंक्स कहना चाहेंगे, आपकी कॉल भी लग गई है ना? तो
4: धन्यवाद जी, आपने शामिल किया
2: जी, शुक्रिया आपका भी। हैप्पी भाग जाएगी हमारी जो फिल्म है लास्ट, जो आपसे पहले एक जो कॉलर हमसे जुड़े थे उनकी ये फरमाइश है कि इस फिल्म का गीत सुना दीजिएगा, तो आप भी सुनना चाहेंगे इस फिल्म का गीत?
4: बिल्कुल जी
2: जी। क्या करते हैं आप?
4: हाँ मैं किराना की रेडी लगाता हूँ और आपको 5 साल से नियमित श्रोता हूँ
2: जी। क्या बात है, आप काम के साथ हमारे कार्यक्रम का आनंद भी लेते रहते हैं, तभी मुझे लग रहा है आपके आसपास शोर है और पहले भी आप हमसे जुड़ना चाह रहे थे, शायद डिस्कनेक्ट आपकी कॉल हो चुकी थी, है ना? तो चलिए
4: बिल्कुल बिल्कुल जी, बिल्कुल
2: जी, क्योंकि जो आपके आसपास शोर है ना, इसी से अंदाज़ा लग रहा है कि पहले की कॉल भी आप ही की थी। तो चलिए कार्यक्रम जी जी जी जी जी, बहुत बढ़िया। और चलिए आप सभी के लिए प्ले कर रहे हैं ये गीत।
4: धन्यवाद जी।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी।

0: यदि आप अपनी लेटेस्ट ज्वेलरी या कपड़ों के डिजाइन या कपड़ों के व्यवसाय को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी से सस्ते दामों पर विज्ञापनों के माध्यम से अपना प्रचार प्रसार कर लाभ उठा सकते हैं।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।
2: लाइव फोन इन प्रोग्राम आपकी फरमाइश में आज बस इतना ही। जिन कॉलर्स की कॉल्स आज कनेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए बेटर लक फॉर नेक्स्ट टाइम। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप जुड़े हैं आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है और डीटीएच सेवा पर भी ये समाचार उपलब्ध रहेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप रीना वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज कांगड़ा जिले के दुर्गम क्षेत्र बड़ा बंगाल के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां हाल ही में आपदा से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करेंगे और स्थानीय लोगों की समस्याएं भी सुनेंगे। अपर बड़ा बंगाल गांव में स्थित माइक्रो हाइडल परियोजना के निरीक्षण के पश्चात मुख्यमंत्री यहां एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री का आज बड़ा बंगाल में ही रुकने का कार्यक्रम है। वे कल बड़ा बंगाल से शिमला लौटेंगे। धर्मशाला में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में किसी भी मुख्यमंत्री ने इस दुर्गम और पिछड़े क्षेत्र का दौरा नहीं किया है। उन्होंने बताया कि दौरे का मुख्य उद्देश्य लोगों की समस्याओं को करीब से समझना है, जिससे सरकार इस क्षेत्र में विकास कार्यों और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा सके। केंद्र सरकार की वित्तीय वर्ष 2025-26 की गुणवत्ता मूल्यांकन रिपोर्ट में हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण में पहाड़ी राज्यों में पहला स्थान मिला है। एक सोशल मीडिया पोस्ट से जानकारी देते हुए लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि प्रदेश ने एक बार फिर साबित किया है कि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और चुनौतीपूर्ण मौसम के बावजूद विकास और गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। उन्होंने बताया कि राज्य में निरीक्षण की गई 1029 सड़क परियोजनाओं में से मात्र 3.8% कार्य ही कम गुणवत्ता के पाए गए हैं, जो अन्य पहाड़ी राज्यों की तुलना में काफ़ी बेहतर है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि विभाग द्वारा नियमित निरीक्षण, कड़ी जवाबदेही और उच्च गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के कारण ये सफलता मिली है। प्रदेश में भविष्य में होने वाली सरकारी भर्तियों के लिए एंटी चिट्टा टेस्ट अनिवार्य किया जाएगा, जिसके लिए तकनीकी पैरामीटर बनाए जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर ये जानकारी देते हुए प्रदेश के कार्यकारी मुख्य सचिव के पंत ने बताया कि अभियान के तहत उपायुक्तों सहित अधिकारियों का भी एंटी चिट्टा टेस्ट के आधार पर आंकलन करने का निर्णय लिया गया है।
2: दो चीज़ें की जा रही हैं। एक, जो भी भर्ती होगी सरकार में, जो भी एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा, उसमें एंटी चिट्टा टेस्ट कंपलसरी किया जा रहा है। उसके लिए टेक्निकल पैरामीटर्स जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है वो उस पर काम कर रहा है और उसको बना रहे हैं, और जैसे ही टेक्निकल पैरामीटर्स बन जाते हैं उसको हम नोटिफाई कर देंगे। दूसरा, यह भी निर्णय लिया गया है कि चिट्टा और जो भी सरकार की कुछ मेन प्रायोरिटी हैं उनमें सभी डीसीज और बाकी अधिकारियों को भी उस पर इवेल्युएट किया जाएगा और उस इवेल्युएशन के हिसाब से उनकी परफॉर्मेंस को भी उस हिसाब से जज किया जाएगा, उनकी परफॉर्मेंस को उस तरह से नंबर दिए जाएंगे।
1: प्रदेश भाजपा ने पंचायती राज व नगर निकाय संस्थाओं में कांग्रेस सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा कि जिला परिषद, बीडीसी और नगर परिषदों में अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव काफी पहले सम्पन्न हो जाने थे, लेकिन कांग्रेस सरकार जानबूझकर इन चुनावों की तिथियां घोषित नहीं कर रही है। उनका आरोप है कि सरकार इस देरी का उपयोग हॉर्स ट्रेडिंग और निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रभावित करने के लिए करना चाहती है। भाजपा इस पूरे घटनाक्रम पर आज प्रशासन से तत्काल अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव की तिथियां घोषित करने की मांग को लेकर सभी जिलों में धरना प्रदर्शन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। लोक निर्माण विभाग में कार्यरत मल्टीटास्क वर्करों ने मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मांग पत्र सौंपा है और अपनी लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की है। इन कर्मियों ने कहा है कि इन्हें मात्र करीब 6000 रुपये मासिक वेतन

0: मिल रहा है, जिससे इस महंगाई के दौर में कर्मचारियों की आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश भर में करीब 5,000 मल्टीटास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी में सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने सरकार से 4 वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद दैनिक वेतनभोगी का दर्जा देने, 8 से 10 घंटे की ड्यूटी के अनुरूप अलग नीति बनाने, वेतन भुगतान की निश्चित तिथि तय करने जैसी मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 3 बजे। नमस्कार।
1: अभी आप प्रादेशिक समाचार सुन रहे थे। ये समाचार आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला पर भी प्रसारित किए जा रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: सुरीला सफर संगीत का साथ हो मनमीत का, घर आंगन में महके जो क्या कहना उस प्रीत का।

सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज़ एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला जी। बिल्कुल वही आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन जहां पर आप और हम होते हैं एक साथ संगीत के इस सुरमई हसीन और खुशनुमा सफर पर। गीत संगीत बातों और मुलाकातों का ये सिलसिला यूं ही चलता रहता है आपका और हमारा, जहां पर अब से लेकर शाम 4:20 तक आपका साथ निभाने आ गई है आपकी अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं आज के इस सुहाने सफर की, जहां पर आप और हम मिलकर सजाएंगे यादों की महफिल। लेकर आए हैं कुछ दिल को छू लेने वाले दिलकश फिल्मी तराने पुरानी फिल्मों से। जी बिल्कुल, जहां हर सुर में छुपी है यादों की खुशबू, हर गीत में बसा है पुराने जमाने का जादू। तो आइए साथ मिलकर महसूस करते हैं मोहब्बत, दोस्ती और जिंदगी के उन अनमोल एहसासों को पुरानी फिल्मों के इन बेहतरीन नगमों के साथ। आप बस यूं ही बने रहिए हमारे साथ FM शिमला पर, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में अभी आपने सुना राजकुमार फिल्म का ये गीत।
1: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
2: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं, किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए

0: जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
1: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

सरस्वती चंद्र फिल्म का गीत आइए अब सुनते हैं मुकेश और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत लिखा है इंदीवर ने और संगीत से सजाया है कल्याण जी आनंद जी ने।

देखिए लिसनर, संगीत का असली जादू यही है कि बिना कुछ कहे भी ये बहुत कुछ कह जाता है, और जब बात पुराने फिल्मी गीतों की हो तो एहसास और भी गहरे हो जाते हैं। लीजिए अब सुनिए महेंद्र कपूर की आवाज़ में हमराज फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

0: नीलम छुटकी फर्राटेदार अंग्रेजी में बच्चों को क्या सिखा रही है?
1: भाभी, जब से छुटकी का दाखिला सरकारी स्कूल में किया है, उसे तो मानो पंख लग गए हैं। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने वादा निभाते हुए पहली क्लास से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू करवाई है। साथ ही प्रदेश में CBSE और राजीव गांधी आदर्श दे बोर्डिंग स्कूल शुरू किए जा रहे हैं। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे आत्मविश्वासी बन रहे हैं। सरकारी स्कूलों में मुख्यमंत्री बाल पोषण योजना से बच्चों की पोषण जरूरतों का भी ख्याल रखा जा रहा है।
0: नीलम, अच्छे नंबर लाने वाले बच्चों को सरकार विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजती है, ताकि बच्चे वहाँ की पढ़ाई के बारे में जान सकें।
1: भाभी, छुटकी की मैडम बता रही थी कि गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश ने देश भर में 6ठा स्थान हासिल किया है और राज्यों की श्रेणी में हिमाचल 3रे नंबर पर रहा है। जी हाँ, ये सब संभव हो पाया है मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू के बुलंद इरादों से।
2: शिक्षा से आत्मविश्वास और आत्मविश्वास से नए मुकाम हासिल कर रहे हैं हिमाचल के बच्चे। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग हिमाचल सरकार द्वारा जनहित में जारी।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। एफएम शिमला पर अब समय है पहाड़ी लोक गीतों के कार्यक्रम पहाड़ी संगीत का। जी हाँ, पहाड़ों की हसीन और खूबसूरत वादियों में गूंजने वाले ये लोकगीत हमारी लोक संस्कृति और हमारी लोक परंपराओं का आईना है। इन लोकगीतों में पहाड़ों की मिट्टी की खुशबू है, खेत खलिहानों की मेहनत है और लोगों के दिलों की सच्ची भावनाएं हैं। तो आइए कार्यक्रम का आगाज करते हैं लेखराम पाल के गाए इस लोकगीत के साथ।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

पहाड़ी लोकगीतों का कार्यक्रम पहाड़ी संगीत इस समय आप सुन रहे हैं हमारे साथ अपने फेवरेट रेडियो स्टेशन 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला पर। तो आइए अब सुनते हैं कुलदीप शर्मा की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला लोकगीत।

चेतराम कलसी की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। मीनाक्षी देवी की आवाज़ में लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति।

0: के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशल्स रवाना हो गए। इस दौरान वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। रवाना होने से पहले जारी अपने वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री वहां भारतीय समुदाय से भी मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच घनिष्ठ संबंध दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने में सहायक हैं। वेनेजुएला में भूकंप में मरने वालों की संख्या 920 हो गई है। लगभग 3000 लोग इस आपदा में घायल हुए हैं। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम तेजी से चल रहा है। भारत ने वेनेजुएला में सहायता के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद शुरू किया है। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता के प्रति आभार व्यक्त करते हुए इसे संकट की घड़ी में महत्वपूर्ण सहयोग बताया। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज गुजरात के गांधीनगर में देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ करेंगे। आरंभ में राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की जाएगी। श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू किया है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले बृहस्पतिवार को पूरी कर ली गई। हरियाणा सरकार अपने अधिकार क्षेत्र में राष्ट्रीय राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में 1 अक्टूबर से बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र के ईंधन नहीं देने की नीति लागू करेगी। इसका उद्देश्य क्षेत्र की वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक में मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने यह निर्णय लिया। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। डॉ. मोहंती ने कहा कि हाइड्रोजन जैसी उभरती स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के साथ परमाणु ऊर्जा का एकीकरण सतत ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि 1 मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा। मौसम विभाग ने उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में आज बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मीनाक्षी देवी के गाए इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम पहाड़ी संगीत में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। इस समय हमारी स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 12 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। दोपहर के 12:10 हुए हैं, आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। मोहित चौहान की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई मूवी का ये सॉन्ग। बने रहिए FM शिमला के साथ, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
1: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
0: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
1: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

0: अरिजीत सिंह के गाए टू स्टेट्स मूवी के इसी सॉन्ग के साथ फिल्म संगीत में अभी बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: मीडियम वेव 387.5

96.6 मीटर और एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। 12:20 हुए हैं और ये समय है कार्यक्रम महिला सम्मेलन का।

0: महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुनने वाली सभी बहनों को दीपिका शर्मा
1: और कमलेश शर्मा का नमस्कार।
0: जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, लेकिन जो जिंदगी की भीड़ में रहता है ना, जिंदगी उसी के आगे सिर झुकाती है।
1: जी हाँ बिल्कुल बहनों, हर कोई चाहता है कि वो अपने जीवन में सफल हो, और आप हम यानी सभी यही चाहते हैं।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन इस सफलता को हासिल करने का राज क्या है?
0: बिल्कुल, तो बहनों हम आपको बता दें कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है या फिर सफल होना है ना, तो आप में महत्वाकांक्षा का होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल बहनों, महत्वाकांक्षा का मनुष्य के जीवन में बड़ा महत्व होता है। ये वही शक्ति है जो व्यक्ति को बड़े सपने दिखाने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रेरित करती है।
0: जी, और ये जीवन को दिशा, उद्देश्य और आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करती है। और जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, वो अक्सर अपनी क्षमताओं का पूरा उपयोग नहीं कर पाता।
1: महत्वाकांक्षा सफलता की कुंजी है।
0: जी,
1: इसलिए भी मानी जाती है क्योंकि ये व्यक्ति को मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है।
0: और देखिए ना, जब हमारे मन में कोई बड़ा लक्ष्य होता है तो हम उसे प्राप्त करने के लिए ज़्यादा प्रयास करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, कोई बच्चा बड़े होकर डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक बनने का सपना देखता है या जो भी उसका सपना होता है, तो इसके लिए वो ज़्यादा पढ़ाई करता है और उसे करनी भी चाहिए, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर वो प्रयास भी करता है। उसकी यही महत्वाकांक्षा है जो उसे अपने लक्ष्य के करीब लाती है।
1: बिल्कुल, और दीपिका देखिए ना, महत्वाकांक्षा व्यक्ति के आत्मविश्वास को भी बढ़ाती है। जब हम अपने लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उन्हें पाने की दिशा में कार्य करते हैं ना, तो हमारे भीतर आत्मविश्वास का विकास होता है। हम चुनौतियों का सामना करना सीखते हैं, कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानते हैं।
0: बिल्कुल, और जो व्यक्ति समझदार होते हैं ना कमलेश, वो असफलता मिलने पर भी निराश होने के बजाय क्या करते हैं, वो अपनी गलतियों से सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
1: और बहनों, हमारे भविष्य को बेहतर बनाने के लिए महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है। आज का युग प्रतिस्पर्धा का युग है, जहाँ केवल वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए दृढ़ संकल्प रखते हैं।
0: बिल्कुल, और महत्वाकांक्षा ही है जो हमें नई चीज़ें सीखने, अपने कौशल को विकसित करने और समय का सदुपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। ये हमें आलस्य और नकारात्मक सोच से दूर रखती है, यानी कि महत्वाकांक्षी होना बहुत ज़रूरी है।
1: बिल्कुल, महत्वाकांक्षा हमेशा संतुलित और सकारात्मक होनी चाहिए।
0: जी,
1: ऐसी जो व्यक्ति दूसरों से आगे निकलने या किसी भी कीमत पर सफलता पाने की इच्छा रखे, वो हानिकारक होती है ना। ऐसी सोच होनी ही नहीं
0: चाहिए,
1: है ना
0: जी?
1: और यही महत्वाकांक्षा वो है जो व्यक्ति को मेहनती, ईमानदारी और जिम्मेदारी भी सिखाती है।
0: जी, यानी कि सही महत्वाकांक्षा का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमें समाज और उसके प्रति जो कर्तव्य है उसके प्रति जागरूक करती है। तो बहनों, ये कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा ही सफलता का आधार है। ये व्यक्ति को लक्ष्य निर्धारित करने, निरंतर प्रयास करने और अपने सपनों को साकार करने की प्रेरणा देती है।
1: बिल्कुल, अगर हम अपने जीवन में स्पष्ट लक्ष्य रखते हैं और उसे प्राप्त करने के लिए लगन और परिश्रम से काम भी करते हैं, तो हम न केवल एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं, बल्कि समाज और देश की प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।
0: जी, तो बहनों इसीलिए अपने लक्ष्यों को ज़रूर आप निर्धारित करें और आगे बढ़ें। और बहनों, ऐसे ही कार्यक्रम में भी हम देखिए अब आगे बढ़ते हैं और बहनों को सुनवा देते हैं ये गीत।
1: जी,
0: तो आइए सुनते हैं ये गीत।

0: बहनों देखिए ना, अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो महत्वाकांक्षा का होना ज़रूरी है। वैसे ही अगर हमें अपने जीवन में सफल होना है ना, तो हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है।
1: जी हाँ
0: और
1: बिल्कुल,
0: ये तभी संभव है कमलेश, अगर हम योग का सहारा लें और व्यायाम का सहारा लें, है ना।
1: बिल्कुल
0: और
1: दैनिक,
0: देखिए
1: हाँ
0: आजकल हम योग से जुड़ी बातचीत कर ही रहे हैं।
1: बिल्कुल। और देखो दीपिका, क्या होता है ना कि दैनिक जीवन में अगर हम योग को स्थान दे देते हैं
0: जी
1: तो बहुत सारी जो बीमारियां हैं उनसे हम बच जाते हैं।
0: जी और हम यही चाहते हैं ना कि हमारी जो बहनें हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हो, और हम उनको जो जानकारी दे रहे हैं उनसे वो लाभान्वित भी हो, उनका पूरा वो लाभ उठाएं। अब अगर बहनों हम

0: योग की ही बात कर लें तो योग एक प्राचीन भारतीय पद्धति है जो नियंत्रित श्वास, शारीरिक मुद्राओं और ध्यान के माध्यम से शरीर, मन और आत्मा को जोड़ती है।
1: बिल्कुल, और इसके अभ्यास से कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से मांसपेशियां सुडौल हो जाती हैं।
0: जी, और योग सामान्य रोगों का उपचार, गठिया, अवसाद, लीवर की समस्या, कमर दर्द को ठीक करने में सहायक होता है।
1: जी हाँ बिल्कुल बहनों, कई बार क्या होता है ना, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, तो अगर आप योग का सहारा लेती हैं तो
0: जी
1: काफ़ी हद तक इन चीज़ों से बचा जा सकता है।
0: बिल्कुल, देखिए ना, जब आप योग का नियमित अभ्यास करते हैं तो आपको कई स्वास्थ्य लाभ भी होते हैं। और कमलेश, मुझे ये लगता है कि जब हमें समस्या हो तब हम योग का सहारा क्यों ले, उससे पहले क्यों ना ले ले,
1: जी
0: है ना?
1: हाँ बिल्कुल सही कहा
0: अगर हम
1: आपने।
0: शुरू से ही योग करते रहें, व्यायाम करते रहें, अपना ध्यान रखें, तो शायद हो सकता है ये समस्याएं, इन समस्याएं जो आने वाली छोटी मोटी समस्याएं, इनसे बच सकते हैं,
1: बिल्कुल,
0: है ना?
1: और देखिए दीपिका क्या होता है ना कि जब हम ठीक नहीं होते हैं, स्वस्थ नहीं होते हैं, तो कोई भी चीज़ हम कर नहीं पाते हैं,
0: बिल्कुल।
1: और नहीं तो हम बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर पहले से कोई चीज़ आप कर रहे हैं ना, तो उसमें आपका मन लग जाता है।
0: जी, और ऐसा भी रहता है कि जो हमारा शरीर होता है ना, वो सॉफ्ट रहता है
1: बिल्कुल
0: ना, फ्लेक्सिबल जिसे कहते रहता है, तो हम आसानी से उस चीज़ को हम कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, शरीर की मुद्रा में सुधार करता है योग। लंबे समय तक क्या होता है, कई बार बैठे रहने से रीढ़ की हड्डी में दर्द होना शुरू हो जाता है, थकान सी महसूस होती है, तो कुछ योगा आसन शरीर की मुद्रा को सुधारने, और जैसे गर्दन या पीठ के नीचे के जो हिस्से होते हैं उसको अगर दर्द हो रहा है तो उसको दूर करने में भी मदद करते हैं। तो इस तरह से जो छोटी छोटी जो आपको
0: सामान्य
1: समस्या,
0: जो बीमारियां होती है ना,
1: बिल्कुल
0: वो यौगिक उपचार में वो सहायक होती ही है। तो
1: बिल्कुल
0: बहनों, हमें ये समझना होगा कि छोटी छोटी बीमारियां से जो है योग अगर हम करते हैं तो उनसे बचा जा सकता है योग का सहारा लेके। और मांसपेशियों की ताकत को योग बढ़ाता है, योगासन शरीर की कमज़ोर मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं और ये मांसपेशियों को सुडौल बनाते हैं, जिससे मांसपेशियों में बार बार खिंचाव आने से बचाव आता है।
1: बिल्कुल, और देखिए लचीलेपन को भी बढ़ाता है। विभिन्न योगा आसनों का नियमित अभ्यास करने से आपके शरीर का जो लचीलापन है वो बढ़ता है। कई बार देखा आगे झुकते हैं तो उससे क्या होता है कि कई तरह की जो शारीरिक मुद्रा है वो सही नहीं होती हैं।
0: जी
1: तो आपको क्या करना कि आगे झुकते समय आप अपने पैरों की उंगलियों को छूने की कोशिश कर सकते हैं। समय के साथ योग आपको जटिल आसन करने में भी फिर वो सक्षम बनाता है।
0: बिल्कुल, जैसे आपने कहा है ना कि हम ये जो है शरीर में लचीलापन लाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि हम अगर नियमित रूप से योगा करते हैं तो शरीर में लचीलापन अपने ही आप आ जाएगा।
1: बिल्कुल
0: आप देखोगे ना कि अगर आप 1-2 महीने योगा नहीं करते हो या आप कोई भी एक्सरसाइज नहीं करते हो, उसके बाद आप शुरू करते हो, तो वो हो नहीं पाती, क्योंकि वो
1: बिल्कुल
0: शरीर में अकड़न आ जाती है ना, शरीर एकदम से सख्त हो जाता है। तो ये सारी वही चीज़ें हैं कि अगर हम रूटीन में इन चीज़ों को करते हैं ना, तो आपका शरीर अपने आप से लचीला रहता है ना?
1: योग से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और जैसे मौसम परिवर्तन के दौरान शरीर में होने वाले जो विभिन्न वायरसों को भी नष्ट करने में ये सहायक होता है। इसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाकर बीमारियों से लड़ने में भी मदद
0: अरे,
1: करता
0: योग
1: है।
0: में तो बहुत सारे फायदे हैं, इतने फायदे हैं ना, मुझे लगता है कि हम सभी को अब योगा कर ही लेनी चाहिए। हमारी
1: जी
0: जो बहनें नहीं करती हैं उन्हें भी कर लेनी चाहिए। और बहनों, योग शरीर के सभी अंगों में जो है रक्त प्रवाह को नियंत्रित करने में सहायक होता है। योग का अभ्यास रोगों के नियंत्रण और रोकथाम के लिए लाभकारी है, इससे शरीर में रक्त प्रवाह बढ़ता है।
1: बिल्कुल, सांस लेने के व्यायाम फेफड़ों की कार्य क्षमता को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं। नियमित रूप से सांस लेने के व्यायाम का जो अभ्यास करने से कई जो श्वसन संबंधी समस्याओं से आपको बचाव हो सकता है।
0: जी, और इसी प्रकार योग फेफड़ों की क्षमता बढ़ाने में मदद करता है। बीमारियों से बचने के लिए योग करना एक कारगर उपाय है। और कहते हैं ना कि सांस लेना छोड़ना ये एक इतनी अच्छी बहनों एक्सरसाइज है ना, कि कहते हैं कि इससे जो ऑक्सीजन लेवल है आपका वो बॉडी में अच्छा होता है। और जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है तभी तो हमारे शरीर में समस्याएं होती है। तो हमें समझना होगा कि इसका हमारे शरीर के लिए कितना महत्व है, कितना बड़ा योगदान है ना?
1: बिल्कुल, तो बहनों हम तो यही कहेंगे कि योग से कई बीमारियों का इलाज संभव है। तो अभ्यास आप

0: को एक नियमित दिनचर्या के रूप में करना है कि आप इसे एक रूटीन में कर लें।
1: जी
0: और जब आप इसको रूटीन में करते हैं ना, तो आपको खुद ही लगेगा कि आपकी जो जो नींद है वो बहुत अच्छी आपको आनी शुरू हो जाती है, आपकी चिंता तनाव भी वो कम हो जाती है।
1: जी और ये इसी तरह से हमारी एक दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। जिस तरह
0: बिल्कुल
1: से हमें पानी पीना है, खाना खाना है, उसी तरह से योग भी हमारी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। बहनों, योग तनाव और चिंता को कम करता है। जब आपका शरीर तनाव मुक्त होता है तो आपको गहरी और शांतिपूर्ण नींद आती है।
0: बिल्कुल, आप स्वस्थ रहें इसलिए ज़रूरी है कि बीमारियों से बचाव के लिए दैनिक योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
1: बिल्कुल, तो देखिए योग के साथ साथ, जानकारी के साथ साथ बहनों को अब एक और गीत सुना दिया जाए।
0: जी

0: तो बहनों, अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के समय की अगर हम बात करें ना, तो आज के समय में प्लास्टिक प्रदूषण की एक जो है बड़ी समस्या बन चुका है।
1: जी
0: पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकार और समाज दोनों ही प्लास्टिक के उपयोग को कम करने पर जोर दे रहे हैं।
1: ऐसे में कागज़ के लिफाफे और कैरी बैग की मांग लगातार बढ़ रही है। ये ग्रामीण महिलाओं के लिए एक बेहतरीन स्वरोजगार का अवसर है।
0: जी बिल्कुल। तो बहनों, आज यानी हर शनिवार को हम बहनों को करियर से जुड़ी कोई ना कोई जानकारी देते ही हैं, और जिसके माध्यम से वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार की आय में भी योगदान दे सके।
1: तो आज हम बात करेंगे कि किस तरह से ग्रामीण महिलाएं कागज़ के लिफाफे और कैरी बैग बनाकर अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं।
0: जी, तो बहनों, अगर आपको कागज़ के लिफाफे या कैरी बैग बनाने का व्यवसाय शुरू करना है तो ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती। आप घर पर ही पुराने अखबारों, क्राफ्ट पेपर, गोंद, कैंची और धागे जैसी सरल सामग्री की मदद से ये काम शुरू कर सकती हैं। हाँ, लेकिन शुरुआत में छोटे स्तर पर उत्पादन किया जा सकता है और मांग बढ़ने के साथ साथ व्यवसाय को बढ़ाया जा सकता है।
1: ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह महिलाओं को संगठित होकर काम करने का अवसर प्रदान करती है।
0: ये तो है।
1: समूह के साथ मिलकर काम करने से उत्पादन बढ़ता है, लागत कम होती है। महिलाएं मिलकर स्थानीय दुकानों, किराना स्टोर, मेडिकल स्टोर, मिठाई की दुकान और कपड़ों की दुकानों से संपर्क कर अपने उत्पादों की बिक्री कर सकती हैं।
0: बिल्कुल, क्योंकि देखिए ना, आज के समय में हम देखते हैं कि हर गांव में स्वयं सहायता समूह बने ही हुए हैं, तो महिलाएं कमलेश तरह तरह की चीज़ें वहां पर बना रही हैं,
1: जी
0: और हम कहीं पर भी जाते हैं, कहीं कैंप लगे होते हैं, स्टॉल लगे होते हैं, तो वहां पर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बनी होती हैं, महिलाएँ स्वयं वहाँ पर बेच रही हैं, खुद वो बना रही हैं, और वो जब इकट्ठे होकर काम करती है ना, तो बचत भी हो जाती
1: बिल्कुल
0: है ना,
1: बिल्कुल।
0: और चीज़ें भी जल्दी से बन जाती है।
1: और देखिए, इस व्यवसाय का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इसमें विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। थोड़े से प्रशिक्षण के बाद महिलाएं आकर्षक और मजबूत लिफाफे और कैरी बैग तैयार कर सकती हैं, है ना। यदि बैगों पर सुंदर डिज़ाइन, चित्रकला करनी
0: जी
1: है,
0: जी
1: स्थानीय कला का कोई उपयोग किया जाए, तो उसकी बाज़ार में मांग और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे उत्पाद को अलग पहचान मिलती है और बेहतर मूल्य भी प्राप्त होता
0: जी
1: है।
0: क्योंकि हर कोई चाहता है कि उसके पास कोई ऐसी चीज़ हो जो खूबसूरत हो, हाथ से बनी हुई हो, और आज के समय में तो बहनों ऐसी ट्रेंड बन गया है इन चीज़ों का कि हमारे पास कुछ अच्छी सी चीज़ हो, और इस दिशा में लोग बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ ही डिजिटल माध्यमों का उपयोग करके भी जो महिलाएं हैं अपने उत्पादों का प्रचार कर सकती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है बहनों। जब आप कोई चीज़ बनाती है और आपने इतना खर्च किया होता है, तो आपको अब उस उत्पाद को बेचना है, तो कैसे आप बेचें, कैसे उसका प्रचार करें, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है।
1: बिल्कुल। और सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों तक आसानी से इसे पहुंचाया जा सकता है।
0: जी
1: इससे स्थानीय बाजार के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी ऑर्डर प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: जी बिल्कुल, क्योंकि आज के समय में अब सोशल मीडिया की वजह से काम बहुत ही आसान हो गया है, तो अगर आप जागरूक हैं, आप इन चीज़ों के बारे में अच्छे से जानती हैं, तो आप वहाँ पर डालकर अपनी चीज़ों का कह सकते हैं कि एडवर्टाइजमेंट कर सकती हैं। तो बहनों, कागज़ के लिफाफे और कैरी बैग का जो व्यवसाय है ना, ये केवल आय का साधन ही नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में भी बहुत योगदान देता है।
1: ये रोजगार का ऐसा माध्यम है जो कम लागत, कम जोखिम और अधिक संभावनाओं वाला है।
0: जी
1: यदि ग्रामीण महिलाएं मेहनत, गुणवत्ता और नवाचार पर ध्यान दें, तो बस इस क्षेत्र में सफल उद्यमी वो बन सकती हैं।
0: बिल्कुल, और देखिए ना, आप घर बैठे बैठे ये काम कर सकती हैं, क्योंकि इसके लिए

0: कोई हमें तकनीकी कौशल लेने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो ये भी चिंता रहती है कि अब हम क्या करें, कहाँ जाएं, कई बार समय नहीं होता है। तो ये एक ऐसा काम है जिसे आप आसानी से कहीं से भी देखकर कर सकती हैं। तो इस प्रकार से कागज़ के लिफाफे और कैरी बैग बनाकर ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बन सकती हैं और समाज में अपनी एक नई पहचान स्थापित कर सकती हैं।
1: जी
0: तो कमलेश, हम तो चाहेंगे कि हमारी जो बहनें हैं वो अपने पैरों पर खड़ी हो, और हम उम्मीद भी करेंगे कि वो जो भी काम करना चाहें वो अच्छे से करें और उसमें उन्हें निपुणता हासिल हो। और देखिए देखिए, जानकारी के साथ साथ मनोरंजन भी ज़रूरी है।
1: जी
0: तो चलिए बहनों को सुनवाते हैं ये गीत।

0: तो बहनों देखिए ना, अब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हैं और चलते चलते चलिए बहनों को कमलेश कुछ किचन से जुड़ी जानकारी दे दें।
1: जी हाँ बिल्कुल,
0: ऐसे छोटे छोटे उपाय जो रोज़मर्रा के दिनों में हमारे काम भी आए और अगर बहनों को मालूम नहीं है तो वो भी इसका इस्तेमाल कर लें।
1: बिल्कुल दीपिका जी, देखिए ना, थोड़े समय के लिए बहनों को थोड़ा सा आराम मिल जाता है कि रसोई घर से फुर्सत मिली है,
0: बिल्कुल
1: चैन से बैठकर आप हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं और साथ में कोई काम भी कर रही हैं।
0: और जी
1: लेकिन आपको तो हमें रसोई घर में ले जाना ही है, लेकिन क्या करें, रसोई घर में तो
0: जाना ही है
1: है
0: जी,
1: ना,
0: बिल्कुल
1: उसके बिना गुजारा भी नहीं है।
0: बिल्कुल
1: तो बहनों क्या करना चाहिए आपको, देखिए छोटी छोटी बातें हम आपको बता रहे हैं। चावल के दाने अलग अलग रखने के लिए उबालने के बाद उसे आप छान लें, तो
0: जी
1: दाना चावल का वो खिला खिला सा बनता है
0: बिल्कुल।
1: ना। और एक बार क्या होता है कि कई बार हम प्याज टमाटर लहसुन या आलू की बात करें ले आते हैं, काफ़ी ज़्यादा दो दो 4 किलो ले आते हैं, लेकिन वो उन्हें अच्छे से नहीं रखते हैं, फिर वो एकदम से अंकुरित हो जाते हैं। तो जब ऐसी चीज़ें लाएं तो उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। आप देख ही रहे हैं हल्की हल्की बारिश का मौसम भी शुरू हो रहा है और ऐसे में बहुत सारी चीज़ों का हमारी बहनों को ध्यान देना होगा। तो प्याज अंकुरित ना हो इसके लिए सूखी जगह पर इन्हें रखें।
0: जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। ये बहुत बार होता है कि हमें लालच आ जाता है कि अगर प्याज सस्ते मिल रहे हैं ना तो हम मात्रा ज़्यादा कर देते हैं, आलू हमें सस्ते मिल रहे हैं तो मात्रा ज़्यादा कर लेते हैं, लेकिन वो इकट्ठे हम उन्हें रखते हैं वो ख़राब हो जाते हैं, है ना। तो ध्यान देना तो बहुत
1: बिल्कुल
0: ज़रूरी है।
1: दीपिका, क्या होता है ना, जो गृहिणियाँ होती हैं ना तो उन्हें बहुत कुछ सोचना होता है, उन्हें ये भी देखना होता है कि घर में सामान होना
0: और
1: चाहिए,
0: बचत भी हो
1: बचत
0: जाए।
1: भी होनी चाहिए,
0: जी
1: दोनों चीज़ें उन्हें देखनी होती हैं। क्योंकि घर में ऐसा होता है, परिवार में सदस्य होते हैं, कब किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, कब बच्चे कौन सी चीज़ की फरमाइश करते हैं, घर में बड़े बुजुर्ग भी, कब वो कौन सी चीज़ खाना पसंद करेंगे, कब वो बोल देंगे, तो
0: मालूम ही
1: पहले
0: नहीं
1: है
0: है।
1: ना,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल
1: ये सारी चीज़ें पहले से होनी चाहिए।
0: जी, तो
1: और
0: इसीलिए तो हमें ये छोटी छोटी बातें बहनों को बतानी भी है और उन्हें पता मालूम भी होनी ही चाहिए। और ऐसे ही बहुत बार होता है कि जब हम टमाटर डालते हैं सब्ज़ी में तो वो पकता नहीं है, तो बहनों वैसे तो आप सभी को मालूम ही है कि आप उसमें नमक डालती ही हैं, लेकिन कई बार हम समझ नहीं पाते हैं और हमारी गैस जो है लगी ही रहती है और टमाटर पक नहीं पाता है, तो अगर आप उसमें थोड़ा सा नमक डाल दें तो वो एकदम से पक जाता है। और सब्जी में तेल कम करने के लिए आप क्या कर सकती हैं कि आप पेपर टावल का इस्तेमाल करें, क्योंकि कई बार ज़्यादा डल जाता
1: डल
0: है
1: जाता है
0: ना।
1: बिल्कुल, और फिर वो ना दाल सब्जी में ऊपर ऊपर सा
0: हाँ,
1: आ
0: तैरने लग
1: जाता, तो
0: जाता
1: कईयों को वो
0: है।
1: ज्यादा अच्छा
0: हाँ,
1: नहीं
0: डर लगता
1: लगता।
0: है तेल खाने से कमलेश, तो अगर गलती से ऐसा हो जाता है तो आप पेपर टावल का इस्तेमाल कर लें।
1: बिल्कुल, अब जिस समय आप दाल उबालते हैं उसमें थोड़ा देखिए झाग सा आना शुरू हो जाता है, अगर दाल में झाग कम करना है तो थोड़ा सा उसमें घी डाल दें तो
0: जी
1: उससे वो झाग उसका कम होना शुरू हो जाता है।
0: बिल्कुल। और ऐसे ही अगर आप रोटी को नरम बनाना चाहती हैं तो आटे को आप ढककर भी रखें, और हो सके तो जब आटा गूंदती हैं तो उसमें थोड़ा सा आप तेल लगा दें ऊपर से या घी लगा दें ऊपर से, तो भी आपका जो आटा है वो नरम रहता है।
1: बिल्कुल, अगर हम चाय की बात करें ना, चाय का तो स्वाद बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ बहनें उसमें डालती ही रहती हैं,
0: जी,
1: चाय के बिना बात ही नहीं,
0: मज़ा
1: मैंने
0: ही नहीं है, मज़ा ही नहीं। अब चाय
1: बात
0: की
1: ही
0: बात आपने की तो मुझे तो अभी भी चाय की याद आ गई।
1: जी हाँ। और बिल्कुल देखिए, जो चाय की शौकीन होती हैं, जो चाय पीती हैं, वो चाय में अदरक इलायची कुछ ऐसी चीज़ें डाल देना
0: तो
1: तो चाय
0: चाय
1: का स्वाद
0: दो
1: दुगना
0: गुना
1: हो
0: हो जाता
1: जाता
0: है।
1: है ना।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो बहनों आप ऐसे करें, चाय जब बनाएं तो कुछ ना कुछ उसमें डाल
0: ज़रूर
1: दें।
0: डालें। और ऐसे ही अगर फ्रिज में से बदबू आ रही है ना, तो बहुत बार होता है कि हम चीज़ें ढककर नहीं रखते हैं तो फ्रिज में से बदबू आनी शुरू हो जाती है, तो आप क्या करें कि कॉफ़ी पाउडर उसमें रख दें, खुला रखें, ताकि जो है कॉफ़ी पाउडर की वजह से वो उसकी बदबू दूर हो जाए,
1: हाँ, और खुशबू उस पर फिर आने लगती
0: आने
1: है, और
0: लग
1: फ्रिज
0: जाए।
1: का हम इस्तेमाल करते ही रहते हैं, है ना। और कई बार क्या होता है बहनों की, जैसे कोई चीज़ अगर आप जल जाती है, जैसे आपकी कढ़ाई जल गई, काम करते करते बहुत सारे बर्तन
0: जल
1: जलते
0: जाते
1: हैं,
0: हैं।
1: है
0: जी,
1: ना, तो उसमें आप बर्तन में पानी, नींबू और नमक डालकर उस चीज़ को उबालें। जैसे अगर आपकी कढ़ाई जल गई है तो इस तरह से आप उसका इस्तेमाल करेंगी तो आपके जो बर्तन है वो एकदम से
0: साफ
1: साफ़
0: हो
1: हो जाते
0: जाएंगे।
1: हैं, है
0: जी,
1: ना।
0: तो देखिए ये छोटी छोटी जो बातें हैं ना हमारी रोज़मर्रा के जीवन में बहुत काम आती हैं और हमारे लिए बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन कमलेश क्या है ना कि देखिए समय का पता ही नहीं चलता है, और अब बहनों को कार्यक्रम का ये वाला गीत भी सुना देते हैं, है
1: जी
0: ना। तो चलिए बहनों सुनते हैं गीत।

0: अभी आप महिला सम्मेलन कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। इस समय 1 बजने को है। समाचारों के लिए आइए अब आपको लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली स्टूडियो।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 3 दिन की राजकीय यात्रा पर सेशेल्स रवाना हो गए। श्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशेल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

0: मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। श्री बैरी फोरे ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमरीका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में गुजरात के लिए देश की पहली सहकारिता आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। फिलहाल राज्य के 14 प्रमुख शहरों में ये सेवा शुरू की गई है। श्री शाह ने कहा कि देश के मोबिलिटी क्षेत्र के लिए आज एक बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि देश के विकास में टैक्सी की जरूरत आम है। श्री शाह ने बताया कि इस सेवा का उद्देश्य लोगों का शोषण रोकना है।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे सारथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
0: श्री शाह अनेक प्रमुख पहल के शुभारंभ और समीक्षा बैठकों के लिए 3 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जांच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों, सिक्किम, असम और मेघालय में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार, छत्तीसगढ़, कोंकण, गोवा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, केरलम, माहे और पूर्वोत्तर क्षेत्र में भी तेज बारिश की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने का अनुमान है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश किया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में अभी भी बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट दौर में पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi has embarked on a 3-day state visit to Seychelles this morning. During the visit, Mr. Modi will participate in the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. In his departure statement, the Prime Minister said, Seychelles is a valued maritime neighbour and a key partner in India's Vision Mahasagar and its commitment to the Global South. He said this year marks the 50th anniversary of diplomatic relations between the two countries.

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। आज के इस हसीन और खूबसूरत सफ़र में हम और आप हैं साथ साथ, जहां पर हम लेकर आए हैं आपके लिए म्यूज़िक मस्ती कार्यक्रम। जी बिल्कुल, एक से बढ़कर एक कुछ बढ़िया बढ़िया से गीत आपके लिए हम चुनकर लाए हैं इस कार्यक्रम में, तो बनी रहिए हमारे साथ यूं ही एफएम शिमला पर। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आनंद लेते रहिए इन प्यारे प्यारे से गीतों का, जो बजने वाले हैं आपके रेडियो सेट्स पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए।

मिस्टर इंडिया फिल्म का गीत अभी आपने सुना कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में। आइए अब सुनते हैं कुमार सानू, उदित नारायण और अलका याग्निक को फिल्म सुहाग में।

0: संतान कर्तव्य से मुख न मोड़े, माँ बाप से प्यारा नाता जोड़े।
1: हिमाचल ने बनाई मिसाल नई, भरण पोषण अधिनियम लागू सही।
0: यदि संतान कर्तव्य ना निभाए, कानून वृद्धों को न्याय दिलाए।
1: उपमंडलाधिकारी के पास आवेदन, 5,000 रुपए तक भरण पोषण संरक्षण।
0: जानकारी लें, अधिकार जाने।
1: तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से संपर्क ठाने।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने सुना चलो इश्क लड़ाएं फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर और आनंद ले रहे हैं म्यूज़िक मस्ती कार्यक्रम का। कार्यक्रम का अगला गीत हमने चुना है आपके लिए अलका याग्निक, उदित नारायण और अमित कुमार की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है बड़े मियाँ छोटे मियाँ।

0: अरे बेटा जीवन क्या बताऊं, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए कहा है लेकिन लाखों रुपए का इलाज हम कहां से करवाएं?
1: ताऊ जी अब चिंता छोड़ो, मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू जी ने गरीबों के इलाज का पूरा इंतजाम कर दिया है। अब प्रदेश के अटल सुपर स्पेशलिटी आयुर्विज्ञान संस्थान चमियाड़ा, टांडा मेडिकल कॉलेज, नेरचौक मेडिकल कॉलेज और IGMC शिमला में पहली बार रोबोटिक सर्जरी जैसी आधुनिक सुविधाएं मिल रही हैं। अब इलाज होगा आसान, हर घर तक पहुंचेगा सम्मान। प्रदेश में 3,000 करोड़ रुपए खर्च कर एम्स दिल्ली की तर्ज पर स्वास्थ्य सुविधाएं मजबूत की जा रही हैं। अस्पतालों में 19 वर्षों से अधिक पुरानी मशीनों को अत्याधुनिक मशीनों से बदला जा रहा है। सभी स्वास्थ्य स्थानों में चरणबद्ध तरीके से अत्याधुनिक 3 टेस्ला MRI, पैट स्कैन, अल्ट्रासाउंड और CT स्कैन मशीनें स्थापित की जा रही हैं। मरीजों को बेहतर जांच सुविधाएं मिल रही हैं। आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों में 6-6 विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती की गई है। डॉक्टरों, स्टाफ नर्सों और पैरा मेडिकल स्टाफ की भर्ती भी तेजी से हो रही है। और सुनिए ताऊ जी, प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में PG की 314 सीटें भी बढ़ाई जा रही हैं।
2: वाह बेटा, अब तो इलाज के लिए बड़े शहरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
3: हर घर तक स्वास्थ्य का अधिकार, जन जन के साथ सुखू सरकार। स्वस्थ हिमाचल, खुशहाल परिवार, सुखू सरकार सबके द्वार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में लीजिए अब सुनिए राजा भैया फिल्म का गीत।

0: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
1: अच्छा, इसमें क्या होगा?
0: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
1: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
0: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
1: अच्छा,
0: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।
2: हाँ।

आवाज़ों में अभी आपने सुना 100 डेज फिल्म का गीत। आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम का। लीजिए अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में याराना फिल्म का ये ब्यूटीफुल म्यूजिकल डांसिंग नंबर।

0: लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए पत्थर के फूल फिल्म के इसी गीत के साथ म्यूजिक मस्ती कार्यक्रम में आज बस इतना ही।
1: शुभवाणी लाभवाणी जन जन की वाणी ये है आकाशवाणी। माटी की महक है जहां, खेतों खलियानों की वही आवाज घाटियों में गूंजती है। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एफएम

103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर ये समय है सबरंग कार्यक्रम का।

कैलाश खेर के गाए इसी गीत के साथ सबरंग कार्यक्रम में आज बस इतना ही। 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। अब आप सुनेंगे दोपहर हिंदी समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। कृपया रिले की प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने

0: अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार बारिश की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशल्स पहुंचेंगे। श्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में मुख्य अतिथि हैं। प्रस्थान वक्तव्य में प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स भारत का महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर तथा वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रमुख साझेदार है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दोनों देशों के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे हो रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमनी के साथ द्विपक्षीय संबंधों और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सहयोग को और मजबूत बनाने पर चर्चा करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यात्रा के दौरान सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को संबोधित करेंगे और वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात करेंगे। आज उनके कार्यक्रम में बोटानिकल गार्डन में पौधारोपण समारोह में भाग लेना और सेशल्स कोस्ट गार्ड के बेस का दौरा करना शामिल है। भारत और सेशल्स के बीच लंबे समय से मजबूत और घनिष्ठ संबंध हैं, जो साझा इतिहास, सांस्कृतिक जुड़ाव और दोनों देशों के लोगों के बीच आपसी रिश्तों पर आधारित हैं। हिंद महासागर क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी के रूप में सेशल्स भारत के विजन महासागर और वैश्विक दक्षिण के प्रति उसकी प्रतिबद्धता में विशेष महत्व रखता है। प्रधानमंत्री की यह यात्रा भारत और सेशल्स की मजबूत और स्थायी मित्रता को और मजबूत करेगी तथा दोनों देशों के बीच सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने की साझा प्रतिबद्धता को नई मजबूती देगी। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: सेशल्स में भारत के राजदूत रोहित रथीश ने बताया कि प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी।
2: $175 million इकोनॉमिक पैकेज जो प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया था, उसको आगे कैसे बढ़ाएं, उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट्स तो आइडेंटिफाई हो चुके हैं, उस पर काम भी शुरू हुआ है और कुछ प्रोजेक्ट्स जैसे इनके एक वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है ग्रांट में बनाएंगे अंडर दैट $175 million पैकेज, उसका शायद हम देख पाएंगे कि ये वर्चुअल ग्राउंड ब्रेकिंग भी होगा इस विजिट में। दूसरा, डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में हम आगे बढ़ेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग के बारे में बात करेंगे, हम इनके मैरिटाइम एसेट्स को अपग्रेड कैसे करें, इसके भी बातचीत होगा।
0: इस बीच सेशल्स ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। विदेश मंत्री बैरी फोरे ने कहा कि वर्तमान वैश्विक व्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में सुधार की जरूरत है। उन्होंने कहा कि भारत बड़ी आबादी, बढ़ते वैश्विक प्रभाव तथा शांति स्थापना, समुद्री सुरक्षा और बहुपक्षीय कूटनीति में योगदान के कारण सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता का हकदार है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा है कि भारत ने उल्लेखनीय आर्थिक प्रगति की है और वैश्विक स्तर पर उसकी भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। व्हाइट हाउस में श्री रूबियो ने कहा कि ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका का सबसे करीबी रणनीतिक साझेदार मानता है।
3: प्रधानमंत्री मोदी के कामों की बात करें तो वो एक ऐसे देश का नेतृत्व कर रहे हैं जो आर्थिक रूप से जबरदस्त तरक्की कर रहा है और एक वैश्विक शक्ति के रूप में पहचान बना रहा है, एक ऐसा देश जिसकी वैश्विक स्तर पर फैसलों में अहम भूमिका रहती है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते के साथ दोनों देशों के संबंध मजबूत हो रहे हैं। लंदन में कल श्री गोयल ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुखों के साथ उनका संवाद उत्साहजनक रहा।
4: ब्रिटेन के साथ हुआ समझौता बहुत ही व्यापक है, ये सिर्फ टैरिफ और रूल्स ऑफ ओरिजिन तक ही सीमित नहीं है, ना ही केवल सामान और सेवाओं के व्यापार के बारे में है, इसमें प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति और कला क्षेत्र में सहयोग भी शामिल है। इसका उद्देश्य दोनों देशों की बेहतरीन चीजों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। ये एक निष्पक्ष, समान और बहुत संतुलित समझौता है।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले 2 वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। गुजरात में भारत टैक्सी का शुभारंभ करते हुए श्री शाह ने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। उन्होंने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।
5: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है कि हमारे

0: साथियों का और हमारे ग्राहकों का किसी का भी शोषण न हो, ये सबसे पहला कारण है। दूसरा, सारथी का सम्मान हो। वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ, भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: श्री अमित शाह ने डेयरी उत्पादों से संबंधित अमूल सहकारी अभियान की भी सफलता का उल्लेख किया।
0: एक टैक्सी बनाने का विचार आया कोऑपरेटिव बेसिस पर, तो सब लोगों परेशान थे कि भाई पैसा कहाँ से लाएंगे। तो मैंने कुछ कोऑपरेटिव संस्थाओं को कहलवाया भी, बुलाया भी। मुझे आनंद है कि एनसीडीसी, इपको, क्रिपको, एनडीडीबी, नाबार्ड, एनसीईएल, अमूल, ये सब ने मिलकर बड़ी से बड़ी कंपनियों से लोहा लेने के लिए ड्राइवरों की, सारथियों की अपनी एक कोऑपरेटिव बनाने का फैसला।
1: उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस पर उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देश के कुल निर्यात में एमएसएमई क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है।
2: That is the only way that our MSME can go to the next level. And it is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business and environment reforms of our Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress.
1: स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा कल नई दिल्ली में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण परिषद सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, सतत विकास लक्ष्य, खाद्य एवं औषधि सुधार तथा संबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब पुलिस ने अमृतसर में सीमा पार से चल रहे अवैध हथियार तस्करी गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। इससे पहले पुलिस ने 7 लोगों से हथियार, नशीले पदार्थ और हवाला की बड़ी रकम बरामद की थी। पुलिस के अनुसार आरोपी सीमा पार से हथियार मंगाकर अपराधियों तक पहुंचाते थे। मामले की जाँच जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए तकनीक आधारित निगरानी प्रणाली प्रोजेक्ट हॉकाई शुरू की है। इसके अंतर्गत यात्रा मार्ग पर ड्रोन के माध्यम से 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। महाराष्ट्र में कल होने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा TET का प्रश्न पत्र लीक होने के कारण परीक्षा स्थगित कर दी गई है। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने बताया कि ठाणे के भिवंडी इलाके में कुछ व्यक्तियों के पास परीक्षा प्रश्न पत्र से संबंधित जानकारी होने की सूचना मिली थी। परिषद ने कहा है कि परीक्षा से संबंधित संशोधित जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर डाली जाएगी। मिजोरम मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR अभियान के अंतर्गत गणना प्रपत्रों का 100% डिजिटलीकरण करने वाले 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला राज्य बन गया है। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय ने बताया कि डिजिटलीकरण प्रक्रिया तय समय सीमा से 3 दिन पहले पूरी हो गई। कोलकाता के तारातला भवन में हुई दुर्घटना में मृतकों की संख्या 17 हो गई है। राहत और बचाव कार्य में सेना, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल, रेलवे, नागरिक सुरक्षा, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल और अन्य एजेंसियां मिलकर काम कर रही हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। मौसम विभाग ने अगले 3 से 4 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश तथा उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में दक्षिण पश्चिम मानसून के आने की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। आज बिहार, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में तेज बारिश का अनुमान है। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता, निर्देशक और पटकथा लेखक के भाग्यराज का आज चेन्नई में 73 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे तमिल सिनेमा में अपनी प्रभावशाली पटकथाओं और संवाद लेखन के लिए जाने जाते थे। उन्होंने 25 से अधिक फिल्मों का निर्देशन किया और लगभग 75 फिल्मों में अभिनय किया। राज्य सरकार ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके अंतिम संस्कार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री

0: मंत्री सी जोसेफ विजय सहित कई नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। परमाणु ऊर्जा सचिव अजीत कुमार मोहंती ने तमिलनाडु के कल्पक्कम में इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में विश्व के पहले हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
1: समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर मोहंते ने कहा कि परमाणु ऊर्जा को हाइड्रोजन उत्पादन जैसी उभरती हुई स्वच्छ ऊर्जा तकनीकों के साथ जोड़ना टिकाऊ ऊर्जा भविष्य की दिशा में एक रणनीतिक कदम है। उन्होंने कहा कि परमाणु ऊर्जा जिसमें भरोसेमंद और कार्बन मुक्त बिजली देने की खास क्षमता है वह बड़े पैमाने पर हाइड्रोजन उत्पादन में मदद करने के लिए उपयुक्त है। ये सुविधा एक तकनीक प्रदर्शन इकाई के तौर पर स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र मुंबई द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित CuCi थर्मोकेमिकल प्रक्रिया का इस्तेमाल करके परमाणु ऊर्जा से हाइड्रोजन उत्पादन को प्रमाणित करना है। शिवा मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध रीवा सुंदरजा आम की पहली व्यावसायिक खेप संयुक्त अरब अमीरात भेजी गई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा है कि एक मीट्रिक टन प्रीमियम गुणवत्ता वाले GI टैग प्राप्त आम निर्यात किए गए हैं। इससे रीवा के आम उत्पादकों को लाभ मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के विशिष्ट कृषि उत्पादों को नई पहचान मिलेगी। नई दिल्ली में आज 3 दिवसीय त्रिपुरा वैश्विक अनानास महोत्सव का उद्घाटन त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉक्टर सुकांत मजूमदार ने किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस महोत्सव से अनानास के निर्यात को बढ़ावा मिलेगा और राज्य की संस्कृति, हस्तशिल्प तथा पर्यटन को भी वैश्विक पहचान मिलेगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ने पहली बार नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। अंतिम लीग मैच में मिस्र ने ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ खेला। राउंड ऑफ 32 में मिस्र का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। हालांकि ईरान भी नॉकआउट चरण में पहुंचने की दौड़ में बना हुआ है। एक अन्य मैच में बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हरा कर नॉकआउट दौर में जगह बना ली। बैडमिंटन एशिया जूनियर मिक्स टीम चैंपियनशिप में भारत ने कजाकिस्तान को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। भारत ग्रुप सी में चीनी ताइपे, कजाकिस्तान और फिलीपींस के साथ है। भारतीय नौसेना का प्रशिक्षण पोत INS सुदर्शनी लोकायन 26 अभियान के अंतर्गत अमेरिका के मैरीलैंड राज्य के बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंच गया है। यात्रा का उद्देश्य भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और भारत तथा अमेरिका की नौसेनाओं के बीच सहयोग को मजबूत करना है। पोत अपने प्रवास के दौरान समुद्री सहयोग और सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों में शामिल होगा। इससे पहले INS सुदर्शनी ने वर्जीनिया के नॉर्थ फॉक में आयोजित सेल 250 समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर बाद 3 दिन के दौरे पर सेशेल्स पहुंच रहे हैं। श्री मोदी ने सेशेल्स को एक महत्वपूर्ण समुद्री पड़ोसी और भारत के विजन महासागर में प्रमुख भागीदार बताया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, ट्रंप प्रशासन भारत को अमेरिका के सबसे करीबी रणनीतिक साझेदारों में से एक मानता है। दोनों देशों के साझा मूल्य और हित हैं। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के 14 प्रमुख शहरों में सहकारी आधारित टैक्सी सेवा भारत टैक्सी का शुभारंभ किया। तमिल फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता और निर्देशक के भाग्यराज का चेन्नई में 73 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में मूसलाधार वर्षा की आशंका व्यक्त की और फीफा फुटबॉल विश्व कप में मिस्र ईरान के साथ 1-1 गोल से ड्रॉ के बाद पहली बार नॉकआउट चरण में पहुंचा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आप सुन रहे हैं FM शिमला। 2:30 हो गए हैं। FM शिमला पर लेकर आ गए हैं आपके लिए पहाड़ी लोक गीतों का कार्यक्रम शिखरों के स्वर। जी बिल्कुल, कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं दीप राम ठाकुर के गाए इस लोकगीत के साथ।

रघुवीर शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत, और अब हम आपको सुनवा रहे हैं प्रेम रोंटा की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

आप सुन रहे हैं FM शिमला 103.7 MHz पर और आनंद ले रहे हैं पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम शिखरों के स्वर का। इस समय आप सुन रहे हैं तारावती की आवाज़ में ये लोकगीत।

जगदीश शर्मा की आवाज़ में अभी आपने सुना ये लोकगीत। कार्यक्रम के अंत में लीजिए अब सुनिए जयप्रकाश शर्मा की आवाज़ में गाया ये लोकगीत।

जयप्रकाश के गाए इसी लोकगीत के साथ पहाड़ी लोकगीतों के कार्यक्रम शिखरों के स्वर में आज बस इतना है। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं FM शिमला। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: एफएम बैंड 103.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों पर भी सुना जा सकता है और डीटीएच सेवा पर भी ये समाचार उपलब्ध रहेंगे।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारी टैक्सी प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का अगले दो वर्षों में देश भर के 500 शहरों और कस्बों में विस्तार किया जाएगा। आज गुजरात के गांधीनगर में भारत टैक्सी के उद्घाटन सत्र में उन्होंने इस पहल को सहकारी क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम बताया। अमित शाह ने कहा कि भारत टैक्सी का उद्देश्य चालकों को सीधे लाभ पहुंचाकर निष्पक्ष और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि इससे चालकों को उनके पारिश्रमिक का अधिक से अधिक हिस्सा मिलेगा और यात्रियों को भी सुरक्षित व किफायती यात्रा का लाभ मिल सकेगा।
2: भारत टैक्सी बनने का सबसे पहला कारण है सारथी का सम्मान हो, वो ऐप पर रजिस्ट्रेशन के लिए मोहताज नहीं है। आज मैं गर्व से कहता हूँ भारत टैक्सी के साथ जुड़े हुए 7 लाख सारथी भारत टैक्सी के मालिक है, शेयर होल्डर।
1: आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम यानी MSME दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नई दिल्ली में इस मौके पर एक कार्यक्रम में बताया कि देश के कुल निर्यात में MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है और देश को

0: वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने में एक मजबूत स्तंभ बनकर उभरा है। उन्होंने उद्यमियों से आधुनिक तकनीक अपनाने और गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत कम करने का आग्रह किया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनादेश का अपमान करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है और भाजपा इस बारे में सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।
1: नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का, वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं दी। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही।
0: पिछले 24 घंटों के दौरान हुई मॉनसून पूर्व की भारी वर्षा से लारजी जल विद्युत परियोजना के जलाशय में जलस्तर व गाद की मात्रा बढ़ गई है। राज्य बिजली बोर्ड ने बताया है कि लारजी पावर स्टेशन के लारजी स्थित बांध से कल सुबह 6 बजे से 29 जून सुबह 6 बजे तक गाद की निकासी की जाएगी। ऐसे में लारजी बैराज के सभी गेट खोले जाएंगे और जलाशय से लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाएगा। बोर्ड ने क्षेत्र के लोगों से एहतियात बरतने और ब्यास नदी के समीप न जाने की अपील की है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगारों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कल शाम शिमला जिले के रामपुर इलाके में तकलेच काशापाट सड़क पर हुए सड़क हादसे में 6 लोगों की मृत्यु पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में राज्य सरकार शोक संतप्त परिजनों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता देने के निर्देश दिए हैं। इस बीच चंबा जिले के भरमौर क्षेत्र में उरेई समरा सड़क पर आज एक कार के खाई में गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 2 अन्य घायल हुए हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 6:30 बजे। नमस्कार।
2: प्रादेशिक समाचारों के बाद लीजिए पेश है सामयिक चर्चा। विषय है राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह तैयार। वाचक स्वर पूनम शर्मा का है।
0: केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2026 का राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान कल रविवार 28 जून से देश भर में आयोजित किया जा रहा है। इस अभियान के तहत 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को पोलियो से बचाव के लिए ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। अभियान का मुख्य उद्देश्य देश को पोलियो मुक्त बनाए रखना और बच्चों को इस गंभीर बीमारी से सुरक्षित रखना है। बूथ दिवस के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को भी पोलियो की दवा पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुंच पाए। ये खुराक पूरी तरह सुरक्षित, प्रभावी और निशुल्क है। जिन बच्चों को पहले भी पोलियो की खुराक मिल चुकी है उन्हें भी इस अभियान के दौरान दोबारा पोलियो की दवा पिलाना पूरी तरह सुरक्षित और आवश्यक है। हिमाचल प्रदेश में भी राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के सफल संचालन के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस अभियान के दौरान प्रदेश के 5,94,000 से अधिक 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की 2 बूंद पिलाई जाएगी। इसके लिए पूरे प्रदेश में 4,753 पल्स पोलियो बूथ स्थापित किए गए हैं। पोलियो वैक्सीन सहित सभी आवश्यक सामग्री समय रहते सभी जिलों एवं बूथों तक पहुंचा दी गई है और प्रशिक्षित टीका

0: टीकाकरण दलों और पर्यवेक्षकों की तैनाती भी कर दी गई है। अभियान की तैयारियों की समीक्षा 23 जून 2026 को स्वास्थ्य सचिव हिमाचल प्रदेश एम सुधा देवी की अध्यक्षता में आयोजित राज्य टीकाकरण कार्यबल की बैठक में की गई। बैठक में विभिन्न विभागों के नोडल अधिकारियों ने भाग लिया और अभियान को सफल बनाने के लिए सभी विभागों की जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। इसी प्रकार सभी जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में बैठकें आयोजित कर संबंधित विभागों एवं हितधारकों के साथ तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन हिमाचल प्रदेश के मिशन निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर ने प्रदेश के सभी अभिभावकों से अपील करते हुए कहा है कि वे 28 जून को अपने 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को, चाहे उसे पहले पोलियो की खुराक मिल चुकी हो, अपने निकटतम पल्स पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर आएं और पोलियो की 2 बूंद पिलवाएं। उन्होंने कहा कि बार बार पोलियो की दवा पिलाने से बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता और मजबूत होती है तथा पोलियो वायरस के संक्रमण का खतरा समाप्त करने में सहायता मिलती है। बूथ दिवस के बाद 29 और 30 जून को स्वास्थ्य विभाग की टीमें घर घर जाकर उन बच्चों को पोलियो की दवा पिलाएंगी जो किसी कारणवश बूथ तक नहीं पहुँच पाए। इस विशेष अभियान का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रदेश का कोई भी पात्र बच्चा पोलियो की खुराक से वंचित ना रहे। मिशन निदेशक ने नवनिर्वाचित पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों, शहरी निकायों के जन प्रतिनिधियों, शिक्षकों, सामुदायिक नेताओं और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी अपील की है कि वे अधिक से अधिक बच्चों को पल्स पोलियो बूथ तक लाने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि आशा कार्यकर्ताओं द्वारा पहले ही सभी पात्र बच्चों की लाइन लिस्ट तैयार कर ली गई है जिससे प्रत्येक बच्चे तक पहुंचना सुनिश्चित किया जा सके। उल्लेखनीय है कि भारत वर्ष 2011 से पोलियो वायरस से मुक्त है जो देश की एक बड़ी उपलब्धि है। हालांकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अभी भी पोलियो के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में भारत को पोलियो मुक्त बनाए रखने के लिए प्रत्येक राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान में सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाना अत्यंत आवश्यक है। यदि किसी भी बच्चे तक ये दवा नहीं पहुँचती है तो संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। पोलियो एक गंभीर बीमारी है जो बच्चों को जीवन भर के लिए विकलांग बना सकती है, लेकिन समय पर दी गई पोलियो की 2 बूंद इस बीमारी से प्रभावी सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अभिभावकों से आग्रह किया है कि अब वे अपने 5 वर्ष से कम आयु के प्रत्येक बच्चे को 28 जून को निकटतम पल्स पोलियो बूथ पर अवश्य लेकर जाएं। यदि किसी कारण से बच्चा बूथ तक नहीं पहुंच पाता है तो 29 व 30 जून को घर घर आने वाली स्वास्थ्य विभाग की टीम से उसे पोलियो की दवा अवश्य दिलाएं।
1: अभी आप सामयिक चर्चा सुन रहे थे। विषय था राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान 2026, हिमाचल प्रदेश पूरी तरह तैयार, और वाचक स्वर पूनम शर्मा का था। इसे आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला पर भी प्रसारित किया जा रहा था। हम आकाशवाणी शिमला से बोल रहे हैं, हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
2: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला।

आप सुन रहे हैं एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज पर। 3:10 हो गए हैं और एफएम शिमला पर ये समय है ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत का। कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं बरखा फिल्म का गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने सुना तुमसा नहीं देखा फिल्म का ये गीत। ओल्ड हिट्स फिल्म संगीत आप सुन रहे हैं हमारे साथ एफएम शिमला पर, और आइए अब सुनते हैं भाभी फिल्म में लता मंगेशकर को।

आशा भोसले और तलत महमूद के गाए बड़ा भाई फिल्म के इसी गीत के साथ ओल्ड इट्स फिल्म संगीत में आज बस इतना है। 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर यह समय है युवा साथियों के अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी का।

नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी शिमला पर अपना पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी, और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो होस्ट, आपकी दोस्त सोनिका कौशल। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है जिस मिट्टी के छोटे से दिए से आपका घर रोशन होता है, उसके पीछे किसी का बड़ा सपना छिपा हो सकता है। क्या आपने कभी गौर किया है, सड़क किनारे चाय बेचने वाले की छोटी सी दुकान किसी परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद हो सकती है। और क्या आपको पता है, दुनिया की कई सक्सेसफुल कंपनीज भी कभी एक छोटे से कमरे से लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ और एक बड़े हौसले से शुरू हुई थी। तो मेरे प्यारे साथियों, अब सवाल ये है, क्या छोटा सचमुच छोटा होता है? दोस्तों, शायद नहीं, क्योंकि कई बार छोटे कदम ही बड़े बदलाव का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, आज 27 जून के इस स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे इन्हीं छोटे कदमों की, बड़े हौसलों की। हम बात करेंगे MSME की।

बातों के साथ साथ आपके एंटरटेनमेंट का भी रखेंगे पूरा ध्यान। तो चलिए बिना किसी देर किए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस शानदार गीत के साथ।

दोस्तों, 27 जून की ये स्पेशल तारीख वर्ल्ड MSME डे के रूप में मनाई जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं इस दिवस को मनाने की शुरुआत यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली द्वारा 6 अप्रैल 2017 में पारित एक प्रस्ताव से हुई थी। इस प्रस्ताव के तहत 27 जून को MSME डे के रूप में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य दुनिया भर के छोटे और मध्यम उद्योगों के योगदान को सम्मान देना है, जो विश्व अर्थव्यवस्था की मजबूत नींव हैं। आगे और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सुनवाते हैं प्रोग्राम का ये गाना।

साथियों, एमएसएमई की बात करें तो एमएसएमई का पूरा नाम है माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस, यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। अगर आसान भाषा में कहें तो वे उद्योग या व्यवसाय जो छोटे लेवल से शुरू होते हैं लेकिन लाखों लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव लाते हैं। गांव के कुम्हार, हथकरघा बुनकर, दर्जी, डेयरी संचालक, फर्नीचर बनाने वाले कारीगर, स्टार्टअप शुरू करने वाले युवा, घर से अचार या पापड़ का व्यवसाय चलाने वाली महिलाएं, ये सभी एमएसई क्षेत्र का हिस्सा हो सकते हैं। इनका आकार भले छोटा हो लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा है। दोस्तों, आज भारत में करोड़ों लोग एमएसएमई क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। ये क्षेत्र देश में बड़े पैमाने पर एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध कराता है, साथ ही साथ एक्सपोर्ट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यही कारण है एमएसएमईज को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ यानी बैकबोन भी कहा जाता है। साथियों, बातों का सिलसिला यूं ही बरकरार रहेगा, लेकिन अब वक्त है छोटे से म्यूजिकल ब्रेक का।

आज कार्यक्रम युवाणी में बात हो रही है MSMEs की। मित्रों, पहले लोग कहा करते थे अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए। जब रोज़गार की बात होती थी तो अक्सर नौकरी की ही कल्पना किया करते थे, लेकिन आज समय बदल रहा है, अब सोच बदल रही है। आज का युवा केवल नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी पैदा करने वाला भी बन रहा है। आज का युवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा है, नए विचार रखता है और जोखिम उठाने का साहस भी रखता है। स्टार्टअप्स, ऑनलाइन वर्क, लोकल प्रोडक्ट्स, डिजिटल सर्विसेज के माध्यम से युवा उद्यमिता की नई मिसालें स्थापित कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि सफलता की राह आसान नहीं होती है। कभी संसाधनों की कमी, कभी असफलताओं का सामना और कभी आत्मविश्वास की परीक्षा। लेकिन जो व्यक्ति इन चुनौतियों से सीखते हुए आगे बढ़ते हैं, वही समाज और राष्ट्र के लिए प्रेरणा बनते हैं। और संस्कृत में कहा भी गया है, उद्यमेन ही सिद्धांति, कार्याणि न मनोरथ है। यानी केवल इच्छाएं करने से नहीं बल्कि परिश्रम और उद्यम से ही कार्य सफल होते हैं। दोस्तों, बातों का सिलसिला अभी थमा नहीं है, बस थोड़ा सा संगीत का रंग इसमें घोलते हैं और सुनते हैं ये शानदार गाना।

साथियों, आज कार्यक्रम युववाणी में हम बात कर रहे हैं MSMEs की। दोस्तों, आज के दौर में महिलाएं भी उद्यमिता के क्षेत्र में नई पहचान बना रही हैं। घरेलू उत्पाद, हस्तशिल्प, बेकरी, सिलाई, डिजिटल सर्विसेज और वर्क फ्रॉम होम से महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी प्रतिभा का परिचय दे रही हैं। घर से शुरू हुआ छोटा सा व्यवसाय आज हजारों परिवारों की आय का स्रोत बन रहा है। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई हुनर है, अगर आपके पास कोई नया विचार है और अगर आपके अंदर कुछ नया करने का जुनून है, तो शुरुआत करने के लिए बड़े संसाधन का इंतज़ार मत कीजिए, क्योंकि सफलता की शुरुआत बड़े निवेश से नहीं, बड़े विश्वास से होती है।

दोस्तों उद्यम ही विकास है, नवाचार ही भविष्य है और आत्मनिर्भरता ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। तो आइए इस वर्ल्ड MSME डे पर हम संकल्प लें, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाएंगे, छोटे छोटे सपनों को उड़ान देंगे, अपने हुनर को नई पहचान देंगे। इन्हीं प्रेरणादायक विचारों के साथ मैं सोनिका कौशल आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे युववाणी के अगले अंक में एक नए विषय, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक सपने देखते रहिए और मेहनत करते रहिए। नमस्कार।

0: सुबह हो या शाम, आपके घर आंगन में महकती एक आवाज 103.7 मेगाहर्ट्ज एफएम शिमला। मस्त चुनो, मस्त सुनो, जानकारी और मनोरंजन के लिए सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: एक 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं एफएम शिमला। एफएम शिमला पर आइए अब आप और हम मिलकर आनंद लेते हैं फिल्म संगीत का।

लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के गाए हम आपके हैं कौन फिल्म के इसी गीत के साथ फिल्म संगीत में आज बस इतना है। अब अपनी रेडियो हमसफर बबीता शर्मा को दीजिए इजाज़त, इसी उम्मीद के साथ बहुत जल्द होगी आपसे मुलाकात। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बस यूं ही सुनते रहिए हमारे साथ FM शिमला।

मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्स और एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्स पर ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश हैं हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम। आइए शुरुआत करते हैं चंबियाली कार्यक्रम के साथ।

चंबेली कार्यक्रम सुनने वाले सारे लोगों जो बलदेव नेगी दा नमस्कार श्रोताओं, अज असी चंबेली कार्यक्रम के अंदर गलबात करनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। सौगी सौगी खेलकूद का महत्व भी असी तुसने साझा करना है बताना, तो नवे ताज़ा समाचार भी तुम सुनाने, सौगी सौगी जोड़े से असी अपने लोग गीत सुना के तुम्हें मनोरंजन भी कराना। श्रोताओ, इसी कड़ी बिच सबका पहले तो सकने सांझा कर दिया जिदे नवें ताज़ा समाचार। आज जड़े से सूक्ष्म लघु ते मध्यम उद्यम यानी MSME दिवस है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने आज नवी दिल्ली बिच इस मौके पर एक कार्यक्रम बिच गलाया कि देश के कुल निर्यात बिच MSME क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है। उन्होंने बोलिया कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था जो मजबूत बनाने विच MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होंगी। उपराष्ट्रपति ने बोलिया कि भारत विच ये क्षेत्र पहली पीढ़ी दे जिहड़े उद्यमी हैं तिन्हां दे साहस ते उद्यमशीलता का प्रतीक है, ते देश जो साल 2027 तक

श्रोताओं, अब ऐसी गल करनी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। देखते कि भी असंदे मुल्क की जड़ी पुरखियां का चले आया कर दी हस्तशिल्प ते कारीगरी बाई जड़ी संस्कृति है से श्रोताओं सदियों पुरानी है। असी देखते कि बढ़ई है, लोहार है, सुनार है, दर्जी है, राजमिस्त्री है, नाई है, धोबी है, मोची वगैरह कारीगरां ने जड़े से भारतीय समाज ते अर्थव्यवस्था जो मजबूत बनाने विच अपना जड़े से खास योगदान दिता है। अज के टाइम विच तकनीकी विकास ते औद्योगिकरण की वजह कने जड़े से दिखते कि इन जड़े पारंपरिक पेशे हैं तिन्हें सामने एक मती सारी जड़ी सी चुनौती पैदा खड़ी कर दी है कि भई अब अज के टाइम विच इन पेशियां दा जड़े से उपयोगिता क्या है, कितनी है। इन जो इस जड़ी से चुनौतियां हैं तिन्हें दूर करने ते पारंपरिक कारीगरी तिन्हें दे कारीगरां दी आर्थिकी ते तकनीकी रूप विच तिन्हें जो मजबूती देने दे मकसद का जड़े से 17 सितंबर 2023 जो भारत सरकार ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना शुरू की है। मकसद जी असी दस्या श्रोताओं कि भई जिहड़े असांदे पारंपरिक पेशे हैं तिन्हां जो जिहड़े से मजबूत करना है ते वोकल फॉर लोकल आत्मनिर्भर भारत ते मेक इन इंडिया जैसे राष्ट्रीय जिहड़े कार्यक्रम है तिन्हां जो मजबूती देनी है। अब जिस मौके से इसे पात्र लाभार्थियों की गल कर दे कि भाई जी असीं दस्या कि भाई बढ़ई है, नाव बनाने वाले हैं मतलब किश्ती बनाने वाले हैं, लोहार हैं, औजार जिहड़े हुंदे असां दे कृषि वास्ते या होर कम धंधे वास्ते तिश्चू बनाने वाले हैं या ताड़े वगैरह बनाने वाले हैं, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, दर्जी ते टोकरियां ते चटाइयां बनाने वाले हैं, नाई हैं, धोबी हैं, माला बनाने वाले मनु हैं ते राजमिस्त्री है या मछली पकड़ने वास्ते जिहड़े जाल बनदे तिन्हें जो बनाने वाले हैं से सारे जिहड़े से पेशेवर मनु हैं से इस विच शामिल हैं कि वे से इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर जड़े से आवेदन कर सकते कने जड़े भी प्रावधान इसके अंदर है तेरे फायदे लेकर ही अपनी जड़ी आर्थिकी है से जो मजबूत कर सकते। अब जिस मौके से खासियतों की गल करते तो इसके खासियत में सब का पहले कौशल प्रशिक्षण है। कौशल प्रशिक्षण मीनस जड़े कारीगर हैं तिन्हें जो होर जड़े है नए तरीके कने प्रशिक्षित या ट्रेनिंग देकर ही तिन्हें जो कम धंधे जो जड़े से होर बधाना है। तो इसके अंदर लाभार्थी जो 5-7 दिन का जड़े से बुनियादी तौर का जड़ा एक प्रशिक्षण हुंदा से दिता जाता तो जरूरत के मुताबिक जड़े से 15 दिन या उसका ज़्यादा दिन तक भी एक उन्नत किस्म का जो प्रशिक्षण से भी इस कार्यक्रम के अंदर दिता जाता। इस अवधि के दौरान जड़े भी मनु हैं तिन्हें जो लगभग जड़े से 500 रुपये का वजीफा जड़े से हर दिन दिता जाता से ट्रेनिंग जितने दिन की भी रहनी तिन्हें जो ये 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब करने तिन्हें जो वजीफा दिते जाना। होर जिस मौके से खासियत दिखते श्रोताओं से है भी आधुनिक औजारा वास्ते भी मदद इस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंदर दी जाती कि प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उपकरण खरीदने वास्ते 15,000 तक की टूल किट प्रोत्साहन राशि दी जाती। इस कार्यक्रम के अंदर ही योजना के अंदर ही जड़े से आसानी कने जैसे कर्ज की भी सहूलियत है कि भाई बिना किसी जमानत जिसको अंग्रेजी में कोलेटरल फ्री बोलते बिना किसी जमानत दे 2 चरणों में जैसे से कर्ज उपलब्ध कराया जाता। पहले चरण में है 1 लाख तिकर है तो दूजे चरण में 2 लाख तिकर है।

ये जरा से कर है, ये ऋण है, ये कर्ज जो है से 5% ब्याज दर के हिसाब कने मिलता थे कि जो कि मार्केट या बाजार दी जड़ी से ब्याज दी दर ऐसी तो ज़्यादा होंगी, पर बाकी जड़ी दर हैं से 50% जो है सरकार द्वारा अपने आप बहन किते जाता। श्रोताओं होर जो इसे खासियत है से है कि भाई डिजिटल सशक्तिकरण आज के टाइम डिजिटल का जो है से मता सारा चलन है, बिना डिजिटल जैसे तरीके कने इसे उपयोग किते बिना असी कुछ भी काम कार जो आगे नहीं बढ़ाई सकते, तो इसी वास्ते कारीगरन जो डिजिटल भुगतान ऑनलाइन लेन देन ते आधुनिक विपणन तकनीकों का जैसे प्रशिक्षण दिते जाता थे ताकि जड़े से डिजिटल अर्थव्यवस्था कने जुड़ी सको, कने अपने जड़े से काम धंधे जो जो से आधुनिक तरीके कने कर सको। होर है विपणन सहायता, विपणन सहायता में मार्केटिंग मार्केटिंग वास्ते भी जिन्हें जो सहायता मिलती कि भाई सरकार कारीगरों के उत्पादों जो प्रदर्शनियाँ मेलियाँ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से ब्रांडिंग के माध्यम का जड़े से राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक जड़े से पहुँचाने की भी मदद कर दी, ता मतलब ताकि जड़े माणु जड़े कारीगर अपना जड़े से कुछ उत्पाद पैदा करते हैं तिन्हें जड़े से बिक्री भी से सुनिश्चित हो सके ताकि तिन्हें अपने उत्पाद का फायदा मिली सकूँ। अब ये गल करते कि भाई महत्व महत्व तो जी असं दस है कि इसे खासियत है, तो महत्व भी सही है कि पारंपरिक व्यवसाय का संरक्षण श्रोताओं अस दिखते कि भी जरूरी है। ग्रामीण तो शहरी गरीबा जो रोज़गार इसके माध्यम का मिलता, स्वरोजगार के उद्यमियों जो बढ़ावा मिलता, स्थानीय उत्पादों की मांग बढ़ती, महिला कारीगरों जो भी जड़े से आर्थिक आर्थिकी का अवसर प्राप्त होता, असंत जड़े से हस्तशिल्प के ग्रामीण उद्योगों जो जड़े से नोई जड़ी से पछाण मिलती कि जो कि जिस मौके असी नोई तकनीक के माध्यम का अपने काम धंधे जो कर देता इस एरिए जड़े से पछाण जो राष्ट्रीय कने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलती। होर जो सब का ज़्यादा जड़े से इसेरा महत्व है श्रोताओं से है ग्रामीण अर्थव्यवस्था जो एक बड़ी मजबूती मिलती, तो जरा असं दिखते कि भी माणु अपने काम धंधे या जीविका वास्ते घर छड़े करी बाहर जाते शहर की तरफ जाते से पलायन भी कुते ना कुते असी घट होंदा दिखते, जिस मौके जड़े से अपने स्थानीय स्तर पर जड़े से कारीगर होंगे तिन्हें जो जड़े से आधुनिक तरीके कने जड़े अपनी पेशे जो कम करने ते अपने उत्पाद तैयार करने वास्ते एक मौका कने प्रोत्साहन अगर सरकार देंदी है। तो असी बोली सकते श्रोताओं कि भाई प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केवल मात्र एक वित्तीय मदद नहीं है, बल्कि ये योजना जड़े से पारंपरिक शिल्प विरासत जो संजोई कर रखने ते कारीगरों जो सम्मानजनक आजीविका प्रदान करने का एक व्यापक कोशिश है। अगर इस तरह जड़े से प्रभावी तरीके कने असी दिखते कि भी अमलीजामा पहनाया जाता धरातल पर जड़े से ता इस दिखते कि ज़्यादा का ज़्यादा जो कारीगर है तक इसकी पहुँच सुनिश्चित हो सकती, अगर इस ये पहुँच सुनिश्चित होगी ता ये योजना जड़े से रोज़गार सृजन ग्रामीण विकास ते आत्मनिर्भर भारत के निर्माण जड़े से एक खासी जड़ी भूमिका निभाई सकते। ये तो श्रोताओं गल थी आज प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। अब असी होर विषय पर गल करनी पर इसका पहले तुम जो एक लोकगीत सुनाना।

जी श्रोताओं, अब ऐसी गलबात करनी है खेल कूद दे महत्व या अहमियत के बारे विच। खेल श्रोताओं मात्र मनोरंजन का साधन नहीं है, बल्कि शारीरिक मानसिक सामाजिक देखने कने नैतिक विकास का भी एक जड़े से बड़ा ही प्रभावी एक माध्यम है। आज दे टाइम विच जिस मौके देखते कि बच्चे ते नौजवान का जड़े से अधिकांश जड़े से टाइम है से टाइम जड़े से मोबाइल आप और इंटरनेट ते डिजिटल उपकरण पर जड़े से ज़्यादा बीते जाता, ते खेल कूद का महत्व जड़े से पहले का जड़े से होर इस दौर से बदी जाता। इसी वास्ते गलाया जाता कि भई स्वस्थ शरीर विच ही स्वस्थ मस्तिष्क का जड़े से निवास करदा। जिस मौके असी शारीरिक महत्व की गल करते श्रोताओं, तो नियमित खेल कूद का शरीर जड़े से स्वस्थ कने मजबूत बनता, इस ते कने असन जड़े से मांसपेशियां हैं से भी मजबूत बनती, ते शरीर दी जड़े से बीमारियां जो रोकने दी जड़ी समर्था है से भी कुते ना कुते असी देखते कि भाई मजबूत हो जाती है बधी जाती। खेल मोटापा मधुमेह उच्च रक्तचाप ते हृदय रोग जैसी जीवन शैली संबंधी बीमारियां हैं तीसरे जड़े खतरे जो भी इसे घट कर दे, ते नियमित कसरत का जड़े से शरीर विच ऊर्जा ते हमारी जड़ी से कार्य क्षमता है कम करने दे से भी बनी रहती। श्रोताओं, जिस मौके से मानसिक ते बौद्धिक विकास की गल कर दे, खेल कूद मानसिक तनाव जो घट करदा ते आत्मविश्वास बढ़ांदा, खेल खेलने का जड़े से असन दी जड़े से एकाग्रता बनदी, ते फैसले लेने की जड़ी से क्षमता है से भी बढ़ जाती, ते समस्या समाधान कौशल यानी कोई भी समस्या है तिस जो तिसे जड़े से सौ का समाधान तोपने वास्ते भी जड़े से असन दी जड़े से एक कारीगरी से भी बढ़ जाती, ते रचनात्मक सोच विकसित होती, ते अस देख देख के भाई इसी वजह कने असी हार ते जीत दोनों जो जड़े से स्वीकार करने की जड़ी भावना है से विकसित होती, जिस कने माणू जड़े से जीवन की चुनौतियों का सामना करने वास्ते जड़े से ज़्यादा ही आत्मविश्वास कने आगे बढ़ता। जिस मौके सामाजिक एवं नैतिक महत्व की गल करते, तो खेल कूद असी इंसाना जो अंदर अनुशासन टाइम का जड़े से पालन करना, लोगों कने सहयोग करना,

नेतृत्व और सहनशीलता कन्नै कन्नै टीम भावना भी असां दे अंदर विकसित करदे, ताकि असी जेह्ड़े से लोग जेह्ड़े से मिली जुली करी कम करी सकूं। अस दिखदे कि भई खेल जेह्ड़े है इस खिलाड़ी कुसी भी जाति धर्म ते क्षेत्रीय भेदभाव का उपर उठी करी एक सौगी कम करना सीख दे। खेलों के माध्यम का ही भाईचारा, राष्ट्रीय एकता ते सामाजिक समरसता जो भी बढ़ावा मिलता। शिक्षा बिच भी असी खेलों का योगदान दिखते श्रोताओं कि भई खेल जो समग्र शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा मनिया गया है, जिस मौके पर भी असं जैसे दिखते कि समाज आगे बढ़ है। खेल पढ़ने वाले कुड़िया मुंडिया के अंदर जड़े से नेतृत्व क्षमता, आत्मविश्वास ते आत्म अनुशासन के कने कने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना जड़े से विकसित करते। मते सारे ऐसे शोध हुए हैं जो सिद्ध करते कि भई नियमित खेलने वाले विद्यार्थी जड़े से कुड़ी मुंडे जड़े तिन्हां दा शैक्षणिक प्रदर्शन भी से बेहतर होंदा, कि जो कि उन्हां दी जड़े स्मरण शक्ति, ध्यान क्षमता ते मानसिक संतुलन से खेल करने से बधी जाता। असी दिखते श्रोताओं कि भई खेल दे अंदर जड़े से कोई खेलने वास्ते या सिर्फ जड़े से एक शौक नहीं है, बल्कि एक खेल जो अब एक करियर भी दिखे जाया करता है, एक पेशा भी दिखे जाया करता है, कि खेल जड़े से केवल शौक नहीं बल्कि एक अच्छा खासा करियर भी या एक पेशा भी बनी चुके दा है। असी देखते क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी, कुश्ती, एथलेटिक्स, निशानेबाजी, मुक्केबाजी, टेनिस ते होर मते सारे खेलों विच खिलाड़ी राष्ट्रीय ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ही सम्मान जैसे कने आर्थिक सफलता हासिल करे करते हैं। असी दिखते कि भैया से दे ग्रामीण क्षेत्र के अंदर मते सारे ऐसे नौजवान ऐसे कुश्ती के अंदर जैसे बड़े अगे बधे करते हैं, ते से जिस मौके छिंज मेले का जड़े से एक सीजन चलता तो ऐसे लाखों रुपए जड़े से इस अपने कुश्ती दे वजह कने जड़े से जितते कने से कमाते कने अपनी एक शरीर जो स्वस्थ रखने दे कने कने जड़े से अपनी आर्थिकी भी अपनी जड़े पेशे जो भी जो से सुदृढ़ करते। इसी वास्ते जड़े से दिखते कि भाई विश्व स्वास्थ्य संगठन है तेने भी एक दसा कि भाई बच्चों जो ते कने कने किशोर जो तिन्ह जो हर रोज़ जड़े से कम जड़े से एक घंटा ते अडल्ट जड़े व्यसक है तेने जो प्रति माह 150 मिनट जड़े से मध्यम किस्म का जड़े से जिसको बोलते शारीरिक गतिविधि करनी चाहिए। तो इसी वास्ते असं बोली सकते श्रोताओं कि खेल कूद स्वस्थ अनुशासित ते सफल जीवन की एक आधारशिला है, ते खेल दे कने असी अपनी जिंदगी दे अंदर जड़े स्वस्थ शरीर ते स्वस्थ एक समाज दी जड़े से जो बनाई सकते। इसी वास्ते खेल कूद का जड़ा महत्व है दिन प्रतिदिन होर बढ़िया करता है, जिए जिए असां दी जीवन शैली उठने बैठने खाण पीने दी जड़े से प्रक्रिया बदलिया करती है, तो खेलों का महत्व होर बढ़ी जाया करता है। श्रोताओं ये थी गलबात खेल कूद के महत्व के बारे में। अब जड़े से असां दा चंबैली कार्यक्रम लगभग से होया करता है, तो असी चलते चलते नेक सिंह ठाकुर की भाग में एक लोकगीत तुसां जो होर सुनाना।

0: अभी आप सुन रहे थे चंब्याली कार्यक्रम। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। पहाड़ी बोलियों के कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं मंडियाली कार्यक्रम।

मंडियाली कार्यक्रम सुनने वाले सबनिया जो पुष्पराचारी नमस्कार तदे हमारा के भी कार्यक्रम रा वक्त होया होर कार्यक्रम मंज आज ऐसा तुस सौगी गलबात लगानी के भी खेल होर अनुशासन कने सौगी सौगी गलबात लगानी स्वच्छ भारत अभियान रे बारे अंदर होर मनोरंजन कठे बढ़िया बढ़िया लोक गीत भी कार्यक्रम मंज सुनाने कने सौगी सौगी देखा नई ताजी भी लगानी के भी असारे आसे पासे क्या कुछ जो से घटिया करा ता महाराज दिखा भी सब तो पहले ता थोड़ी जी नवी ताजी ही खबरी के भी आज सूक्ष्म लघु होर मध्यम उद्यम यानी के MSME दिहाड़ा जो से हया उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्ण होरिए आज नई दिल्ली मंज से इस मौके पर एक कार्यक्रम मंज दसिया कि भी देशा रे कुल निर्याता मंज MSME क्षेत्र रा जड़ा योगदान हा से लगभग 50% जो से हया तिन्हें गलाया कि भी किसी भी देशा री जड़ी अर्थव्यवस्था जो मजबूत बनाने मंज MSME क्षेत्र री जड़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो से हुआई उपराष्ट्रपति होरिए गलाया कि भी भारत मंज अरे क्षेत्र जो से पहली पीढ़ी रे उद्यमिया रे साहस होर उद्यमशीलता रा जड़ा प्रतीक जो से हया होर देशा जो 2047 तक का विकसित भारत बनाने मंज एक मजबूत स्तंभ जो से बनी के ने उभरिया है तिन्हें उद्यम ते आधुनिक तकनीक अपनाने होर गुणवत्ता बनाए रखते हुए लागत कम करने रा जड़ा आग्रह भी कित्या ये तस्वीर खबरें कि भी पिछले स्टेशन रे लारजी स्थित बांधा ते कल भ्यागा 6 बजे ते लेके ने 29 जून भ्यागा 6 बजे तक का जो से गादारी जड़ी निकासी की जानी एड़े मंज ला

Thank you.

Thank you.

उसे ले जाएं। खेल अमज दे कभी सामूहिक तारी भावना जड़ी हुई से बड़ी भारी जरूरी जो से है। टीमारे जो भी देखा भी बाकी सदस्य हुए तिना बीचा देखा भी संयोग समझदारी एकता और एक दूजे रे प्रति जो से समानता इतना ते ही टीमारी जड़ी ताकत जो से बधाई। सामूहिकता ते देखा के भी खिलाड़ी आपू मंज एक दूजे री जड़ी कोई भी कमजोरी होता तेता जो समझी के ने तेता जो सुधारने मंज जो से मदद कराएं और एकजुट हो के ने लक्ष्य री प्राप्ति जो से कराएं। ता यही एक एकजुटता री जड़ी भावना है से देखे भी जीवनारे होरी क्षेत्र मंज भी जो से बड़ी सहायक हुआ क्योंकि देखा भी जड़ा भी अनुशासन जो से सीखा जाए तो ये देखा भी हर क्षेत्र में जो से ऐसा जो सहायक जो से हुआ तो एक खिलाड़ी जो कितना कुछ देखा भी सीखने जो मिला जेथी भी देखा भी महाराज एक टीम जड़ा समूह वाला जड़ा खेल हुआ ये तरह जो जरूरत हुआ तो हर क्षेत्र इतने जो भी देखा भी सीख के तुसे आए रहो तो हर क्षेत्र अंदर तुसा जो अनुशासन में जो रहना जो से सीखा जा ये देखे भी तारा बहुत बड़ा फायदा जो से हुआ कने ये गल तुसे देखे भी सब नहीं जाने कि भी जेड़ा के पहले भी गलाए कि भी खेल ही अनुशासन सिखाएं कोई देखा भी महाराज दूजे खिलाड़ी हो तिना कने भी देखे भी सभ्यता रा व्यवहार जो से करना चाहिए कने प्रेम प्यारा ते गलबात करी कने जो से अपने खेला जो खेलना चाहिए। अभी देखा महाराज कि भी जेड़ा दो खिलाड़ी हो या फिर दो समूह हो ता जिन्हें अंदर देखे भी खेल लगी रहना था तेता में जले एक ता देखा जीत होनी था एक ही हार होनी था ये ता देखे भी खेल अंदर खेला जो खेलना रही भावना ते जो से खेलना चाहिए। कोई देखे भी अगर कोई हार गया था तिना जो नीचा दिखाने की कोशिश जो सी नहीं करनी चाहिए बल्कि तिनारी जड़ी हौसला बजाई करनी चाहिए ताकि देखे भी दूजी बार जब भी आगे कोई खेल होता तेता इकट्ठे से अपनी होर मेहनत जो से करो। तो महाराज असली अगर गल अस गलाएं तो भी खेल अमज जो से अनुशासन सामूहिककार ही भावना जड़ी से सफलता री कुंजी जो से हुआई। खेल आ रे जरिए ते अनुशासन होर सामूहिकता रा जड़ा विकास जो से करी कने असे एक स्वस्थ सफल होर समृद्ध समाज जो से बनाई सकाएं। तो महाराज ये तो देखा थोड़ी जी गलबात हुई गई एबे एक बांका जया लोकगीत तुसा जो होर सुनाना लारा ता सुना तुसे लोकगीत।

तो महाराज ये सुना तुसे लोक गीत गाते लगे थे सपना कुमारी होरी ये बे देखा घड़ी री सुई भी सिणक दिया कराई कि भी कार्यक्रम हमारा वक्त भी पूरा होंदा लग गया। तो पुष्प राजा जो आ गया दिया नमस्कार।

मंडियाली कार्यक्रम अभी आपने सुना 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 5:20 हुए हैं। पहाड़ी बोलियों कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए अब पेश है पंगवाली कार्यक्रम।

आज आकाशवाणी शिमला के यहाँ बोलने को सभी आदि पाई भाई के भी मठ पे किन को से तुम मनपसंद पंगवाड़ी कार्यक्रम।

पंगवाड़ी कार्यक्रम सुनने वाले ये सभी ये नरेंद्र ठाकुर नमस्कार। सुनने वाले आज तुझे गलबात लासी जे वर्तमान आता केंद्र सरकार है जे कर्मचारी से तंके भविष्य आता रिटायर होने पाता जे पैसे में थे यूनिफाइड पेंशन स्कीमें बारे अस हते कि हैं देश हैं तो टाइम टाइम बैठ अस धनराशि बारे विभिन्न स्कीमें देश हैं तो अस हते कि 2000 पहला जो पुरानी स्कीम थी पेंशन स्कीम से चलती थी तड़े पता कई राज्य तो अलग अलग स्कीम कहनी पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की कहनी नई पेंशन स्कीम बड़ोसी पर केंद्र सरकार है जे केंद्र सरकार है कर्मचारी से तंके लिए यूपीएस जैच बोलते यूनिफाइड पेंशन स्कीम आणूसी जे भी कर्मचारी अस हते कि 1 अप्रैल 2005 क्या पता केंद्र सरकार नौकरी तनी ज्वाइन की उसी तंके लिए तो हो रे भी अगर इस दौरान तनी नौकरी या तो उसे तो तंके लिए भी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम पूरे केंद्र सरकार है हाँ तो उसी ताकि जब भी कर्मचारी नवा नवा नौकरी लगते सस स्कीमें फायदा उठाई सकते ऐसा तो असु कि 10 साल कैसे नौकरी बोई गई थी तड़े पता से कम 10,000 पेंशन नैना हकदार बोई गया था अगर जैन नौकरियां तो 5 साल सेवा काल जिस से पूरा काई चा

दस ऐसा साहब जो पूरी पेंशन लेना हकदार सा ऐसा तो कर्मचारी तो जे कर्मचारी सा तैसे भी कुछ अंश दान होता साथ साथ सरकार भी आपो तरफा कुछ कर्मचारी अंश दान बराबर पैसे छती ऐसा तो ये भी सी सीमा रखो सी कि कर्मचारी अंशदान मूल वेतन जमा महंगाई बातें 10% अत तसे अंशदान दैन होता और तथी साथ साथ सरकारी सरकार जी सी जत भी तैन अंशदान दो सा ऐसा तो भी आतरू हो तो मूल वेतन जमा महंगाई बातें 10% से सरकार छती तैने वाले वक्त जेखे से सेवानिवृत्त हो गया था तड़े पता एज ए पेंशन सी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एत समैन शुरू हो गई थी तड़े पता जे खासकर कई कर्मचारी होते कि पेंशन लगने कुछ वक्त बाद तंके मृत्यु हो गई थी तो तनी जे आशीष सा जे तस कर्मचारी परिवार सा तस जे जति तसे पेंशन बांटी तसे जे 60% पेंशन तनी जे आशीष जैसे तनी भी अगर लग गई थी अप्रैल 2005 के शुरू सी खासकर केंद्र सरकार ये हिदायत भी सी कि 1 अप्रैल 2005 के जन भी नौकरियां तो उसे केंद्र सरकार है सस चीज़ें हकदार से अथा तो ये भी सी कि कम से कम 10,000 ता पेंशन मेती मेती कोई भी कर्मचारी सा अरे उन पेंशन है कोई प्रावधान नहीं और जे 60% से जे आशीष से तनी मेती ऐसा तो कि मुझे कि जे 2004 के पहला नियमित कर्मचारी केंद्र सरकार से तनी बट अलग न होती तनी जे पुरानी पेंशन मैन लगू सी सही अगर मेहती रहती है सिर्फ जे नवा कर्मचारी से यानी 1 अप्रैल 2005 के हम पता केंद्र सरकार है सेवा शुरू की सी तैंके लिए आसी हालांकि केंद्र सरकार ये भी मंशा सी कि भारत विभिन्न राज्य से तठी भी केंद्र सरकार है जे यूनिफाइड पेंशन स्कीम सी है चलती रही ताकि पूरे देश तो भेदभाव ना हुआ ना तो कौन राज्य पुरानी पेंशन स्कीम देन लगे सी कौन यूनिफाइड पेंशन स्कीम देन लगे सी ऐसे जे अंतर से ख़त्म हो केंद्र सरकार हालांकि हैं कोशिश सी पर केंद्र सरकार जे भी कर्मचारी से तैंके लिए जरूरी सी ताकि जे कर्मचारी केंद्र सरकार आता जापो अत साल सेवाएं देता से भविष्य तो धन संबंधी समस्या क्या निजात पा सके और जे बचा जीवन सा सेख अच्छी तरह यापन कर सके केंद्र सरकार है जे भविष्य अंत तस खासकर वित्तीय सहायता जरूरत पूंती से मेहती रहे और तस जे बुजुर्ग कर्मचारी से तस वित्तीय हिसाब जो कोई समस्या आने वाले वक्त तो न भू अत थी तुझ गलबात UPS जे वो तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जे केंद्र सरकार सी और असि भी केंद्र सरकार कर्मचारी जे तस बारे तुझ गलबात सुनते लोक गीत।

अबेंतु सुनो प्रियंका व जनता अभदिया लोकित ऐसे खास खास प्रादेशिक समाचार। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर दावा किया कि जे 70% पंचायत हत जे उम्मीदवार जीते से भाजपा समर्थित प्रधान तो प्रधान है चुनाव तनी जीते। शिमला ते ये पत्रकारिता

होता त्यांनी बोललो की नगरिकाई परिषद आता भाजपा पुरा दबदबा रहा त्यांनी काँग्रेस पुढारं उभला की काँग्रेस जानबूझ काय जिल्हा परिषद नगर पंचायती के अध्यक्षता उपाध्यक्ष चुनाव जैसे त्यांनी टाळलं नगोसी नेता प्रतिपक्ष बोलो की त्यांनी जनादेश अपमान करण वाले अधिकारी के सूची तयार करण नगोस आहे और त्यांनी बोलो की भाजपा इस बारे सड़क्या अदालत सौंख इस लड़ाई लड़ते पिछले 24 घंटे अंदर मानसून ने वजह जो वजह बारिश होती है सरलार जी जल विद्युत जे पौन सुठी तसे मात्रा काफ़ी बढ़ गई उसी और शुभ आगे 6:29 6 सौंख ऐसे पानी निकासी भूसी लार्जी जे जल विद्युत परियोजना से तसे जाते भी गेट से खोलों से बोर्ड मैंने क्या अपील की उसी की सहित एहतियात बारे बरते और ब्यास नदी किनारे नंगे क्योंकि पानी बहाव साथ तसे बजाय जो आम जान मानस जे खतरा हो सकता ही सोलन तो जे शालनी मेला चलो सा तसे दूसरा दिन था और इस दौरान काफ़ी खेल प्रतियोगिता हुई। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू शिमला जिले जी तकलीज काशा पाठ अंत जे सड़क हादसे हुए तथा तो 6 मानू के मृत्यु हुई तनि इस पर गहरा शोक प्रकट किया और जे परिवार सा जिस परिवार के मानु थे तनि ये संदेश देता कि पूरी राज्य सरकार तंजो साथ ऐसी और जिला प्रशासन जे बोलू कि जत भी हर हाल तंत्र के सहायता हो सकती से सहायता करने निर्देश देता है। इस बीच ही चाम जिला तो भी बरमेर क्षेत्र उरे ही सामरा क्षेत्र एक कार जिसी से खाई तो झड़ने बजाय हुई तथा तो टला मैणू के मर गया और दू घायल से जिला चामा तो 2011 के जनगणना अनुसार जेठी 250 मैणु के अधिक आबादी सी से सड़क सुविधा क्या अगर से ग्राम कोई वंचित सु से प्रधानमंत्री सड़क योजना जे चौथा चरण चलन सा ऐसा तो शामिल करण से जैसे भी कैसे ग्राम आबादी 250 की आजादी सी और तठी सड़क नहीं तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण तो शामिल काई छू से और ऐसे लिए जे बजट प्रावधान सब से 551 करोड़ रुपए चाहूँ जी ले जे मैं से ताकि ये कोई ग्रां न बचे जठी जनसंख्या 250 के ज़्यादा सी पर सड़कें संपर्क मार्ग हो भी नहीं ऐसे लिए विधानसभा अध्यक्ष एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने आदेश देते ताकि जत भी ग्रां से तनी सड़क सुविधा उपलब्ध कराई सके। केंद्र सरकार पासपोर्ट आवेदन जे शुल्क सा तथा तो वृद्धि क्यों सी 36 पृष्ठों वाला जे पासपोर्ट इस टाइम आवेदन का तो कोई भी तस 2500 रुपये जे शुल्क सा सदैन सा बाकी जे गैर घरेलू एलपीजी पर जे पहला प्रतिबंध लगो थे तसे एलपीजी पी कमी चलते हुए से सरकार हटाई छोसा ताकि जे भी ऐसे इस्तेमाल करते गैर घरेलू एलपीजी सिलेंडर से नहीं सकता है। तो थे खास खास समाचार सुनते एक और लोकगीत।

जे प्राकृतिक तौर बट उगत तैसे सिर्फ प्रयोग करत। व्यावसायिक खेती अस के क्षेत्र पहला बिल्कुल नहीं थे। हाँ कोटे प्राकृतिक तौर बट उगे तो या इंसानी कहता कि आपो मनोरंजन आपो खुशी लिए तनी चीज़ें उगानत। अस गलबात करना गुस्से फीड़ू की खेती बारे वर्तमान आता ऐसे जो जरूरत सी से काफ़ी सारी बड़ी गो सी पहला ही बंदूत की कोठी पैदा बही गो सा अपने आप या इंसान आपो थोड़ी सजावट लिए या खुशी लिए कोई फ्यूल लादत तथा तो संतुष्टि थी। अब ऐसी चीज़ है फीड़ू खेती अख मोटा व्यवसाय बनी गो सा क्योंकि अस सहते कि हर इंसान फीड़ू जो बड़ा लगाव रहता तेंगे प्यार रहता और पूजा पाठ हाँ तो फीड़ू के इस्तेमाल बनता कैसे स्वागत हाँ तो तिखे फीड़ू के इस्तेमाल बनता और साथ साथ कई चीज़ें जी आई इतर सब परफ्यूम जैच बोते तो संत भी कई फीड़ू के उपयोग बनता। साथ साथ इंसान ने जे शारीरिक बीमारी सी तसली भी दवा बनाना तो फीड़ू के इस्तेमाल बनता। साथ साथ जे खाद्य पदार्थ से बहुत सारे खाद्य पदार्थ से जैथा तो फीड़ू के पंखुड़ी या विभिन्न जे फ्यूल से तंगे इस्तेमाल बनता तो ऐस हिसाब जो है फीड़ू के काफ़ी सारी मांग पूरे संसार तक उठना गुसी कोई भी अस चीज़ें है तो तैठी सजावट लिए बहुत सारे खासकर शादी समारोह जैठी बोना गुस्सा तैठी फीड़ू के बहुत सारी मांग रहती तो इसके क्षेत्र जिलैन मर्द इसके क्षेत्र बहुत सारी कामयाबी अर्जित कर सकते क्या सरकार तरफा बहुत सारी इतना तो सब्सिडी भी मिलती जी पोली हाउस बनाने लिए फीड़ू जे ड्रिप इरीगेशन करने लिए कोल्ड स्टोर लिए ये विभिन्न सारी जे चीज़ें असंत इस्तेमाल होती तंके लिए सब्सिडी भी प्रावधान सा इसलिए जलैन मर्द या अस व्यवसाय अपनाई के बहुत सारा फायदा उठाई सकते इसलिए सरकार हर एक जगह वित्तीय सहायता करने तैयार से यह भी एक बहुत अच्छा विकल्प सा कहते कहते अखरू लोकगीत सुनते सा।

अथि ओकुम शर्मा आवाज अंत लोकगीत इस टाइम वर्तमान काल अंत अगर अस हते कि विभिन्न क्षेत्र अंत मैडम के जे रोजगार है चीजें सी तनि हो रोजगार बढ़ाना गुस है जी आई फज के जैविक खेती है या हो रही अंत चीजें चलो सी बहुत सारे उत्पादन भूणा गुस है पर पहला उत्पादन बड़े कम थे क्योंकि

अथी रजनीचंद्र आवाज अंत लोकगीत अस लोकगीत साथ साथ है पंगवाड़े कार्यक्रम में टाइम बहुत नरेंद्र ठाकुर दे इजाजत नमस्कार।

0: पंगवाली कार्यक्रम अभी आपने सुना 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 5:50 हुए हैं, कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।
1: आइए सुनते हैं लोकगीत। शुरुआत करते हैं बसंत लाल ठाकुर के गाए हुए इस लोकगीत के साथ।

अभी आप सुन रहे थे लोकगीत, ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। 6 बजने को हैं, थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz, मोबाइल ऐप और रेडियो की DTH सेवा पर भी सुना जा सकता है।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। कल पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिले में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: प्रदेश भाजपा ने आज जिला परिषद, बीडीसी और नगर निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी को लेकर राज्य के अनेक स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शिमला में हुए धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। हर्ष महाजन ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक बताया और कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की गई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
2: ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी बीडीसी, चुनी कमेटी के मेंबर्स, सबका इन्होंने मजाक उड़ाया और ये कहना कि इनकी भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुक्खू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव नहीं कराए, अब जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
0: इस दौरान हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए तुरंत आईजीएमसी ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगारपरक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगाड़ों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मेले में आए लोगों ने ठोडा प्रतियोगिता को संस्कृति का प्रतीक बताया।
3: छोटा है हमारा ये कल्चर पुराना हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये देव कार्य होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हम ये छोटा मनाया जाता है और बड़ा धूमधाम से तो तीर कमान से एक दूसरे को तीर निशाने लगाएंगे। 11-11 प्लेयर होते हैं इसके अंदर, तो उसी

0: से पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर उनका फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज देंगे।
1: ये छपरा हमारा ये कल्चर है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, एआईआर न्यूज की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा एआईआर न्यूज, डीडी न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। चंबा जिले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर के उरेई समरा सड़क मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। 3 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि एक घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हुई। ये सभी लोग आसपास के गांवों के रहने वाले थे और समरा में एक जातर मेले में भाग लेने जा रहे थे। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं 7:45 पर। नमस्कार।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। लीजिए अब पेश है कांगड़ी कार्यक्रम।

आकाशवाणी दा शिमला केंद्र है। टाइम होया है 6:06, मैं दीपिका ठाकुर हाजिर है कांगड़ी कार्यक्रम लेने। कांगड़ी कार्यक्रम सुनने वाले सारे श्रोतियों मेरी राम राम। श्रोते उम्मीद करते हैं कि तुम सारे जड़े हैं सेहतमंद होने, राजी पाजी होने, कने सुख शांति ने होने। क्या कि दिखा जिंदगी का मज़ा तो ही ले सकते ना जे सेहत खरी हो। अगर सेहत ना साथ दे ना तो इं तो बोलते ना भाई पैसा बड़ा जरूरी है, पैसा बिल्कुल जरूरी है जीने ताएं, पर अगर अहाँ सेहतमंद नहीं होंगे तो इस पैसे का हम मज़ा भी नहीं ले सकते। इस तरह सारे से ज़्यादा जरूरी है सेहत, सेहता का ध्यान रखन ता ही जिंदगी का मज़ा भी जोड़ा है सह ले सकते हैं। श्रोते अज कार्यक्रम जहाँ गलबात लैनी है पर्यावरण का आँधी जिंदगी क्या महत्व है, इसके अलावा फिट इंडिया अभियान पर भी गलबात करनी है। कने जिहड़े लोक गीत अज अहां दे श्रोतियां सुनने हन तिन्हां कलाकारां दे नाम भी दसिंदे हन। रविदास, सुलोचना देवी, धनीराज दे गाए लोक गीत जिहड़े हन अहां दे श्रोता अज कार्यक्रम च सुन सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं गलबात कने पर्यावरण दा अहां दी जिंदड़ी च क्या करी महत्व है। पर्यावरण प्रकृति का एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसकी वजह से ही धरती पर जिहड़ी है सै जिंदड़ी मुमकिन होंगी। अहां दे चौं पासियां मौजूद बेल बूटे, रुख, हवा, पानी, जमीन, दरिया, पर्वत, पहाड़, बण, पशु, पख, पखेरू, इन्हां दे अलावा दूए भी कई प्राकृतिक संसाधन जिहड़े हन सै, ये सब कुछ मिली ने पर्यावरण बनाते हैं। अगर आवो हवा स्वच्छ, साफ सुथरी, संतुलित, बराबर होंगी तो अहां माणुआं दी जिंदड़ी जिहड़ी है सै भी सुखी कह सेहतमंद होनी। इस करी पर्यावरण जो बचाना अज सारियां ते बड़ी जिहड़ी है सै, अहां सारियां दी मतलब अहां दा जिहड़े है सै कर्तव्य भी है, कने एक बड़ी जरूरत भी है बनी गई है। पर्यावरण बगैर धरती पर तो अहां जिंदड़ी बगैर सोच ही नहीं सकते। साफ हवा अहां तंदुरुस्त रखती है, साफ पानी जिंदड़ी दे सारियां ते बड़ी जरूरत है। चंगी फसल देने वाली जिहड़ी जमीन है, उपजाऊ जिस जो बोलते हैं उपजाऊ जमीन जिहड़ी है, तिथु ते अहां जो रोटी हुंदी है। बेल बूटे रुखां ते

भाई आकाशवाणी शिमले फा एवं सुनो तुसे महासी कार्यक्रम और आज तुसा साथी आऊँ चंपा शर्मा। तो देखो आज जो तुसा साथी मेरे गल बात करनी है सो से करनी लघु सूक्ष्म कुटीर एवं मध्य उद्योग के बारे दा और एक गल बात करनी आयुष्मान भारत योजना कुछ खास खास खबरें भी सो तुसा के लिए आई दी साथ ही साथ मनोरंजन करना तुसारा लोकगीता साथी। तो भाई तुसारा सब जने अपने घर ठीक ठाक रहो यही मंगल कामना भगवान आप करो। तो सूक्ष्म और लघु कुटीर एवं मध्य वर्ग जो ये चलाई रखा हो सो इतरा जो ये एक कारोबार रे कारोबार सो जो मारे केंद्र सरकारे और राज्य सरकार आप कई तरफ हा जो उसो से बिजनेस और कारोबारियों के प्रोत्साहित करो सो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग क्षेत्र रा देशा रे विकासा के बड़ा भारी योगदान हो सो लघु उद्योग क्षेत्र रे योगदान के देखते हुए सरकारी बैंकों साथी साथी प्राइवेट क्षेत्र री जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी भी हो सो से भी कम ब्याज दर बिजनेस लोन देने लगी रे। इतना एक खास बात हो सो कि सरकार री ये चलाई दी जो सुविधा सो इतफा फायदा लेने री तई उद्योगा दा MSME रजिस्ट्रेशन होना बहुत जरूरी हो और MSME के सूक्ष्म लघु व मध्य उद्यम बोला जाओ सो बिना रजिस्ट्रेशन करे बगैर इते योजना रा लाभ तुसे नहीं ले सकते हो सो 2006 दा बने दे MSME अधिनियम रे मुताबिक इतरे कई प्रकार उसो मैन्युफैक्चरिंग उद्योग मैन्युफैक्चरिंग उद्योग का नई चीज़ों के बनाने रा काम करा जाओ सो सर्विस सेक्टर का खास रूपा दा सेवा देने रा काम करा जाओ सो इत्ते के सेवा क्षेत्र रे रूपा दा भी जाना जाओ MSME रे प्रकार समझने फबाद ही एबे जो इतरा आकार हो यानी साइज हो तेरे ईसा बाफा MSME के बताऊँ ए परिभाषा 2006 रे मुताबिक तय करी गई थी। सूक्ष्म उद्योग आसे तिना सभी उद्योगा के सूक्ष्म उद्योगा दा रखू जिना उद्योगों दा 25 लाख तई मशीनरी लगी दियो ए परिभाषा मैन्युफैक्चरिंग उद्योगा री तई लागू हो सर्विस सेक्टर री तई परिभाषा बदली जाओ सो और इते सेक्टर दा मशीनरी या सेटअप दा 10 लाख तई के निवेश होने फा इना के भी सूक्ष्म उद्योग दाई रखो सो मैन्युफैक्चरिंग जो उद्योगों सो से जो ए जो उद्योगों सो से लघु और लघु उद्योगारी श्रेणी दाई रखे जाओ सो जिन्हा उद्योगों का 25 लाख 5 करोड़ रुपए तक की मशीनरी खरीदारी

ये सुना तुसे लोकगीत और गाने वाले थे वनीता ठाकुर। आयुष्मान भारत योजना जिते दा प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना भी इत के बोला जाओ सो ए एक योजना सो जितेरा उद्देश्य समाज का आर्थिक रूपा फा कमजोर वर्गारी मदद करना सो जिन्हें के स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत हो ए योजना प्रधानमंत्री जो सो से तिन्हारी तैंखे चलाई रखियो सो 23 दिसंबर के ए योजना शुरू करी गई थी। ए योजना लगभग 50 करोड़ माणुओं के आपू साथी लियाओ सो और इत योजना के रे तहत 70 सालों पर ज़्यादा उम्र रे सभी सीनियर सिटीजन तिनारी सामाजिक आर्थिक रे बजाय हर साल 5 लाखा रे स्वास्थ्य बीमा रे ए योजना जो सो से भारत सरकार री एक

स्वास्थ्य बीमा योजना ओसो, जो तृतीय व द्वितीय अस्पतालों का भर्ती होने वाले जो खर्चे ओसो ते तेरी तें खेती ना खे ए राशि सहायता दे जाओ सो। ए योजना गरीब व जरूरतमंद माणू रे परिवार री तें खे चलाई रखियो सो, जिना खे दवाई रे खर्चे व अस्पताला दा भर्ती रा खर्चा दा जो सो से सहायता करो सो। आयुष्मान योजना एबे प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे रूपा दा बदला गुआ दा सो। एते योजना रे जो लाभ लेने वाले माणू सो तिना खे देशा दा केथी भी जो सो इते पैनला दा जो शामिल हो सो से अस्पताला दा पब्लिक या प्राइवेट दा सेवा राय तेरा लाभ ले सको सो। इतरी तें के आयुष्मान कार्ड मिलो सो, जो PMJAY योजना साथी अस्पताल जानाओ और इते दा जो सो से कैशलेस ट्रीटमेंट लेने रा लाभ तुसे ले सको सो। इतरी तें के तुसे ऑनलाइन जो सो से आवेदन भी कर सको और ऑनलाइन जो फॉर्म भरी रो तुसे इत योजना रा लाभ भी ले सको सो।

भई ये सुना तुसे बढ़िया जा लोकगीत और गाने वाले थे सुखराम और साथी। तो अभी मैं गा गई कुछ खास खास खबरें भी। सो पहली खबर हो सो आज सूक्ष्म लघु और व मध्यम उद्यम यानी MSME दिवस हो सो। उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन ने आज नई दिल्ली दा इस मौके पांदे एक कार्यक्रम दा बताया कि देशा रे कुल निर्याता दा MSME क्षेत्र रा योगदान लगभग 50% हो। तिने बोलिया कि कसी भी देशारी अर्थव्यवस्था के मजबूत बनाने दा MSME क्षेत्र री खास भूमिका हो सो। उपराष्ट्रपति बोलिया कि भारत दा एक क्षेत्र पहली पीढ़ी री उद्यम म्योरे साहस व उद्यमशीलता रा प्रतीक हो सो व देशा के साल 2047 तई विकसित भारत बनाने के एक मजबूत स्तंभ बनाई रो उभरी रा। तिने उद्यमियों फा आधुनिक तकनीकी अपनाने व गुणवत्ता बनाई रो रखते हुए कम लागत करने रा आग्रह कराओ सो। अगली खबरों सो पिछले 24 घंटे रे दौरान हुई मानसून पूर्वरी भारी बरखा फा लारजी जल विद्युत परियोजना रे जलाशय दा पानी रा गादा री मात्रा बढ़ी गई। राज्य बिजली बोर्डे बताया कि लारजी पावर स्टेशना रे लारजी दा बांधा फा कल ब्यागा 6 बजे फा 29 जून ब्यागा 6 बजे तई के गादा के निकाला जाना। इशे दा लारजी बैराजा दा सभी गेट खोले जाने व जलाशय दा लगभग 2000 क्यूमैक्स पानी छोड़ा जाना। बोर्ड क्षेत्र रे लोगों फा एहतियात बरतने व व्यास नदी रे नेड़े ना जाने री अपील करी गई। आखिरी खबरों सो सोलना दा चले दे राष्ट्रीय शूलनी मेले रे दूजे दिन आज पौराणिक ठोड्या प्रतियोगिता रा आयोजन करा गया। प्रदेशारी लोक परंपरा वीरता व संस्कृति विरासता रे प्रतीक इस खेला दा 6 टीमें जो एसो से भाग लई रो अपने खेल कौशला रा प्रदर्शन करा। इस प्रतियोगिता के देखने री तई के स्थानीय माणू साथी बड़ी संख्या दा पर्यटक भी ठोडा मैदान दा आई रे। इस मौके

बजदा नगाड़े री गूंज, रणभेरी री धुन व खिलाड़ियों रे उत्साह व माहौल उत्साहमय बनी रहो सो। तो इतनी कुछ खास खास खबरें, जाते जाते असें एक लोकगीत तई सुन लो।

अभी आप सुन रहे थे महास्वी कार्यक्रम। इसके साथ ही हिमाचली बोलियों के कार्यक्रम अब समाप्त होते हैं। 7:05 होने को हैं। आइए अब आपको अंग्रेजी समाचारों के लिए लिए चलते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र।

0: for a possible All India final. Ronak Chauhan also advanced, beating Israel's Misha Zimmerman 23-21, 21-11. India have reached the quarterfinals of the Badminton Asia Junior Mixed Team Championships with a convincing 2-0 victory over Kazakhstan in their opening Group C match at Yatsushiro, Japan. The girls' doubles pair of Durga Isha Kundarapu and Kirti Manchala gave India a strong start. Puneet Suresh and Deepti Raj Aditi then extended India's lead. The Indian team went on to dominate the remaining matches and comfortably seal the tie. And that is the end of this news bulletin.
1: प्रस्तुत है किसान बागवान भाई बहनों के लिए कृषि जगत कार्यक्रम।
2: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान और बागवान भाई बहनों को हमारा नमस्कार। किसान भाइयों, कार्यक्रम के इस अंक को लेकर के मैं हाजिर हूँ शिवरंजन।
3: और मैं दिनेश ठाकुर।
2: दिनेश जी, क्या हालचाल है आपके?
3: बिल्कुल बढ़िया शिवरंजन, और उम्मीद करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे और हमारे किसान और बागवान भाई बहन भी बिल्कुल स्वस्थ होंगे और अपने कृषि और बागवानी के कार्य को अच्छी तरह से कर रहे होंगे।
2: जी,
3: इन दिनों हमारे किसान और बागवान भाई बहनों के खेतों में गर्मियों की सब्जियों की काश्त उन्होंने कर रखी है, तो गर्मियों की सब्जियों की काश्त करते समय किसान भाइयों, आपने ध्यान देना है कि अब जो सब्जी आपने लगा रखी है वो बिल्कुल तैयार हो गई होगी, उनको अच्छी तरह से पैकिंग करें, ग्रेडिंग करें और मंडियों में भेजें।
2: तो दिनेश जी, अपने किसान और बागवान भाई बहनों को बता दें कि आज के इस कार्यक्रम में हम उनके लिए क्या कुछ खास लेकर के आए हैं। किसान भाइयों, आज काम की बातों के अंतर्गत जिस विषय पर हम आपको जानकारी देंगे वो है पॉली हाउस में बीज रहित खीरे की खेती आप किस तरह से कर सकते हैं। करवाएंगे मनोरंजन लोकगीत से और सुनवाएंगे आपको एक जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण भी। विषय रहेगा जंगल की आग से पर्यावरण प्रदूषण एक चेतावनी।
3: तो शिवरंजन, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉली हाउस में बीज रहित खीरे की खेती के बारे में।
2: जी,
3: खीरा एक उप उष्ण कटिबंधीय सब्जी है। उच्च प्रकाश, आर्द्रता, नमी, तापमान व उर्वरक इसकी बढ़ोतरी हेतु आवश्यक होते हैं। जब पर्यावरण और पोषण की परिस्थितियां अनुकूल व स्थिर हो और नाशी जीव नियंत्रण में हो तो पौधे तेजी से बढ़ते हैं और भारी उपज देते हैं। खीरे के पौधे तापमान के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं। तापमान अनुकूल ना होने के कारण पौधों की बढ़ोतरी व उपज में कमी आ सकती है। ये एक कम अवधि की फसल है जो कि पाले को बर्दाश्त नहीं कर सकती है और 14 से 20 डिग्री सेल्सियस का तापमान फलों के विकास हेतु अत्यंत अनुकूल होता है। खीरे के पौधों को मध्यम जलवायु की आवश्यकता होती है, इसलिए ये पॉली हाउस में बढ़िया उगते हैं। अच्छे निकास वाली रेतीली दोमट मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। भारी, गीली व पानी के कम निकास वाली मिट्टी से इसे उगाना नहीं चाहिए। 5.5 से 6.5 पीएच मान वाली मिट्टी में ये बहुत अच्छी उपज देती है।
2: जी, तो किसान भाइयों, ये तो हमने बात करी जलवायु और भूमि के बारे में, अब बात करते हैं पौधों में विकास की प्रवृत्ति के बारे में भी। किसान भाइयों, खीरा एक खुरदरा, बेलदार व वार्षिक पौधा है जिसके पत्तों और तने पर सख्त कांटे होते हैं। 2-3 पत्ते निकलने के बाद बेल बनने लगती है और साथ के साथ शाखाओं में बंटने लगती है। जैसे ही शाखाएं निकलती है, पत्तों के आधार से फूलों के गुच्छे निकलने लग पड़ते हैं। खीरा एक अनियमित ऊंचाई वाला पौधा है जिसके नए विकसित हिस्सों पर लगातार फूल लगते रहते हैं। मुख्य तना, किनारे वाली शाखाएं तेजी से बढ़ते हैं।
3: जी बिल्कुल, और साथ ही किसान भाइयों, इनकी लगातार कटाई छंटाई करके एक तना रखा जाना चाहिए और तारों के साथ सिधाया जाता है ताकि पत्तों की बढ़िया छतरी बन सके, जिससे अधिकतम प्रकाश को अवरुद्ध किया जा सके व वायु का संचार भी अच्छा रहे। अनुकूल परिस्थितियों में प्रत्येक पत्ते के आधार में कई फल लग सकते हैं। फलों का पूरा आकार विकसित करने के लिए उनकी छंटाई करना जरूरी रहता है। अत्यधिक फलों और पौधा कमजोर हो जाता है, फल झड़ने लगते हैं और समय बीतने के साथ साथ उत्पादकता में व्यापक उतार चढ़ाव हो सकते हैं।
2: जी, बात करते हैं तापमान की। किसान भाइयों, हवा का तापमान अंकुरण वृद्धि, फूल लगने, फल वृद्धि और फल गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला मुख्य पर्यावरण घटक है। टमाटर के मुख्य

0: खीरा कम तापमान में अधिक संवेदनशील है। लगातार उत्पादन हेतु न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से कम नहीं होना चाहिए। अत्यधिक ऊंचे वाले तापमान से भी फल उत्पादन व गुणवत्ता पर विपरीत असर पड़ता है, इसलिए लंबे समय तक तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं रहना चाहिए। अगर अंकुरण कक्ष का तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस हो तो खीरे के बीज तेजी से अंकुरित हो जाते हैं, यानी कि 2 से 3 दिन में ही ये अंकुरित हो जाते हैं। एक बार बीज का अंकुरण हो जाने पर बीज की ट्रे का आवरण हटा दें और तापमान को 22 डिग्री सेल्सियस तक कम कर दें और लगातार अधिक प्रकाश की व्यवस्था बनाए रखें। इन परिस्थितियों को 5 से 7 दिनों तक बनाए रखें, जब तक पौधे पर्याप्त रूप से बड़े ना हो जाए, ताकि उन्हें सुरक्षित रूप से संभाला जा सके।
1: जी बिल्कुल, और साथ ही किसान भाइयों, इन परिस्थितियों को इतने लंबे समय तक भी नहीं बनाए रखें कि पौधों को स्थान की तंगी हो जाए, इनमें पीलापन आ जाए और वे बहुत लंबे पतले हो जाए। पौध की वृद्धि दर 24 घंटे के औसत तापमान पर निर्भर करती है। औसत वायु तापमान जितना अधिक होगा उतनी ही तेजी से वृद्धि होगी। दिन रात के तापमान में जितनी ज़्यादा भिन्नता होगी, पौधे उतने ही लंबे और उनके पत्तों का आकार उतना ही छोटा रहेगा। हालांकि दिन रात के लगभग 28 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अधिकतम वृद्धि होती है
0: जी।
1: 19 से 20 डिग्री सेल्सियस रात्रि के तापमान व 22 से 24 डिग्री सेल्सियस दिन के तापमान पर अधिकतम फल उत्पादन होता है
0: जी। किसान भाइयों, साथ ही साथ पौधे के विकास में प्रकाश भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये पत्तियों में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित किया जाता है। पत्तियां पौधे की खाना बनाने की फैक्ट्रियां होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर करती है, हालांकि ये इनके समानुपात में नहीं होती है। सर्दियों में प्रकाश का महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये अपर्याप्त हो जाता है।
1: जी बिल्कुल किसान भाइयों, बात करें अपेक्षित आर्द्रता के बारे में, तो नमी की कमी या अधिकता को फसल सहन कर सकती है और इसके अनुसार अपने को ढाल सकती है, परंतु नमी में अत्यधिक तथा लगातार परिवर्तन को लेकर ये काफ़ी संवेदनशील है। इस तरह के परिवर्तन को इसकी संवेदनशीलता तब ज़्यादा होती है जब फसल को उच्च अपेक्षिक आर्द्रता में पैदा किया जाता है। इससे पौधे पर पानी जमने और खतरनाक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है
0: जी।
1: कम नमी की अवस्था में सिंचाई का महत्व बढ़ जाता है और इसके अलावा कम नमी में सफेद चूर्ण सीता रोग व स्पाइडर माइट अधिक फैलते हैं।
0: किसान भाइयों, अब बात करते हैं किस्मों के चयन के बारे में भी। फसल उत्पादन की प्रक्रिया में उचित किस्म का चयन सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक होता है। पॉलीहाउस में खीरे के उत्पादन हेतु कई किस्में उपलब्ध है। किस्मों के चयन हेतु रोग प्रतिरोध, पौध प्रबलता, शीघ्र व कुल उपज, फलों का आकार व फल की सामान्यता, गुणवत्ता सहित कई कारकों पर विचार किया जाता है। सबसे पहले किस्म के चयन करने के लिए आपने कुछ एक बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि कुल उत्पादकता, पौधों के विकास का तरीका व पौध वर्धन शक्ति, फलों की गुणवत्ता और उसकी लंबाई, व्यास, आकृति और रंग कैसा है, साथ ही फलों के भंडारण अवधि के बारे में भी। पॉलीहाउस में ऐसी किस्मों का चयन करना चाहिए जिसके पौधों पर केवल मादा फूल ज्यादा आए और फल बीज रहित कोमल एवं मुलायम और आकर्षक रंग व आकार का हो व अधिक उपज देने वाला हो। कुछ संकर बीज रहित किस्में जैसे कया, कामेर व सटीस पॉलीहाउस के लिए उपयुक्त है। इनमें परागण की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: जी बिल्कुल किसान भाइयों, खीरे की उन्नत किस्मों की हम बात कर रहे हैं तो इसमें किस्में आप ले सकते हैं देवगिरी, मालिनी, मोहिनी और फाउंटेन टॉप, पिकलिक खीरा, आइवरी किस्में आप लगा सकते हैं। भूमि की तैयारी के बारे में बात करें तो पॉलीहाउस में पौधे की रोपाई से 1 माह पहले खेत को गहरी खुदाई कर भुरभुरा बनाए और रोगाणुओं व कीटाणुओं से निदान पाने के लिए मिट्टी फॉर्मलिन से उपचारित कर ढक दें। बाद में 1 सप्ताह बाद मिट्टी को उलट पुलट कर रसायन की गैस को अच्छी तरह निकाल दें। खीरे की पौध नियंत्रण वातावरण में पूरे साल पॉली बैग या ट्रे में उगाई जा सकती है
0: जी।
1: इसके अंकुरण के लिए 24 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान उचित रहता है और पौध विषाणु रहित हो इसके लिए मिट्टी को पहले उपचारित कर बिजाई करें। 4 से 5 पत्तियां आने पर इसे उपयुक्त स्थान पर रोपित करें। तैयार पौध को किस्म के अनुसार 70

0: से 150 सेंटीमीटर, पंक्ति से पंक्ति और 30 बाई 30 से 60 सेंटीमीटर पौध से पौधे की दूरी पर रोपाई करनी है।
1: जी,
0: तो ये तो रही किसान भाइयों कुछ एक जानकारी पॉली हाउस में बीज रहित खीरे की खेती के बारे में।
1: जी,
0: तो शिवरंजन अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को सुनाएंगे एक लोकगीत।

0: किसान भाइयों, ये तो सुना आपने रोशनी देवी और हेतराम कैंथा की आवाज़ में लोकगीत। तो किसान भाइयों, अब मनोरंजन के बाद कार्यक्रम में समय हो चला है जानकारी पूर्ण बातचीत का पुनः प्रसारण सुनवाने का। विषय रहेगा जंगल की आग से पर्यावरण प्रदूषण एक चेतावनी। बातचीत में भाग ले रहे हैं डॉक्टर परमिंदर कौर बावेजा और उनसे जानकारी हासिल कर रहे हैं राजेंद्र।
1: आज हमारे स्टूडियोज में डॉक्टर परमिंदर कौर बावेजा जी आए हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: धन्यवाद जी।
1: किसान भाइयों, आज का हमारा विषय है जंगल की आग से पर्यावरण प्रदूषण एक चेतावनी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि जंगलों में आग एक चेतावनी कैसे है?
2: जी सर, आपने बहुत अच्छे से ये प्रश्न किया है, क्योंकि हमारे किसान भाई छोटा सा बेनिफिट, छोटा सा फायदा देखने के लिए सोचते हैं कि जंगल में थोड़ी सी आग लगा देंगे तो घास अच्छा आ जाएगा और हमारे जानवरों को अच्छा खाने को मिल जाएगा
1: जी।
2: थोड़ा सा वो आगे और ज्यादा नहीं सोचते, वो ये नहीं सोचते कि हम लोग जीवित कैसे रहेंगे। मैं आपको इस चेतावनी से अवगत कराना चाह रही हूँ, क्योंकि जंगल जो है, आप इसको आसान तरीके से समझने के लिए सोचो कि ये हमारे लंग्स हैं
1: जी।
2: तो अब आप सोचो कि किसी को फेफड़ों में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो ये जंगल की आग जो है, जंगल हमारे लंग्स हैं, फेफड़े हैं, अगर उनको हम खत्म करेंगे तो सोचो अपना क्या होगा
1: जी।
2: तो ये बड़ा सीधा सीधा तालमेल में आपको बताया, तो ये एक चेतावनी नहीं तो और क्या हो सकता है। इसमें थोड़ा आगे बढ़ती हुई मैं ये बताना चाहूंगी कि जो जंगल हैं, इसमें जब आग लग जाती है तो क्या होता क्या है, क्या नुकसान होते हैं, जो कि हमारे किसान भाई इस चीज के प्रति जागरूक नहीं है। इसीलिए ये टॉक जो है, ये मेन पैरामीटर ये लिया गया था कि आज का टॉपिक यही होना चाहिए। दिस इज अ करंट टॉपिक। आज ये जरूरत है इस चीज की कि हमारी जो सारे जो रहने वाले जंगल के आसपास रहने वाले हैं, उसमें जो पशु पंछी पल रहे हैं, प्लस उसमें जो धरती है, मिट्टी है, उस सारे को अब हमारी जरूरत है। हम उसका ध्यान नहीं रखेंगे तो हम अपनी ही जो नस्ल है, मनुष्य जाति को ही खत्म कर देंगे।
1: जी जी।
2: तो इसलिए ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है, ये इंडिकेशंस हैं।
1: जिस तरह ग्रीन हाउस के जो गैसेस हैं उसका उत्सर्जन हो रहा है, तो इस विषय पे आप कुछ बताएंगे?
2: जी जी सर, जब जंगल में आग लग जाती है तो ग्रीन हाउस गैसेस जो है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट है। जब सूर्य की किरणें धरती पे आती हैं तो वो छोटी किरणों, शॉर्ट वेव रेडिएशन की फॉर्म में आ रही हैं, वो हमें कोई भी नुकसान नहीं करती। जब वो वापस जाती हैं धरती से टकराने के बाद, री रेडिएट होती हैं, तो वो थर्मल इफेक्ट रखती हैं। थर्मल इफेक्ट मीन्स हमें गर्मी देती हैं, हमें ऊर्जा देती हैं। सारी प्रकृति जो है उससे ही उत्सर्जन हुई हुई है। जब वो रेडिएशन वापस जाती हैं, री रेडिएशन कहते हैं उसे लॉन्ग वेव रेडिएशन कहते हैं। तो इस लॉन्ग वेव रेडिएशन के जो ये गर्मी देने वाला और ताकत देने वाला इफेक्ट है, इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। और ये हमारे जो वातावरण में, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें 5 अलग अलग तरह की गैसेस हैं जो इस काम को करती हैं
1: जी।
2: तो उसमें सबसे पहला नंबर कार्बन डाइऑक्साइड का आता है, दूसरा नंबर मीथेन CH4, तीसरा नंबर ओजोन, जो कि पृथ्वी के काफी नजदीक रहती है, उसे हम ओजोन, जो पृथ्वी से दूर रहती है, सेकंड जोन में है, 12 किलोमीटर से दूर है, 15 से 35 किलोमीटर तक है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है, उस ओजोन को हमने मेंटेन करना है। लेकिन जो हमारे पर्यावरण में प्रदूषण की वजह से पृथ्वी के नजदीक नजदीक 10 और 12 किलोमीटर में रहेगी, वो उतनी घातक भी है
1: जी।
2: तो इस तरह से हमारी 5 जो है, नॉक्स है, सॉक्स है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, और सबसे बड़ा वाटर वेपर्स भी हैं। तो ये सारे के सारे गैसेस क्या करती हैं, जो री रेडिएट होती है हीट हमारी रेडिएशन की फॉर्म में, लॉन्ग वेव रेडिएशन की फॉर्म में, वो इन रेडिएशन को, अलग अलग गैस अलग अलग वेवलेंथ को

0: एब्जॉर्ब कर लेती है, सोख लेती है। जैसे ही वो सोखती हैं, तापमान में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाती है। हम अपने अर्थ प्लैनेट पे इसी वजह से ही सर्वाइव किए हुए हैं,
1: जी
0: सारी प्रकृति इसी वजह से है। अगर ये गैसेस ना हो तो तापमान माइनस में चला जाए, -35, 40, 45,
1: जी
0: जैसे मून में है। तो इस तरह से कहने का मतलब ये हुआ कि ये गैसेस उतनी ही महत्वपूर्ण है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। तो
1: जी
0: ये जैसे ही बढ़ गए हैं तो वो उतना ही घातक होता जा रहा है। तो मैं इसके अब नेगेटिव इफेक्ट्स बता रही हूँ।
1: जी डॉक्टर साहब, क्योंकि जंगलों में आग लगेगी तो पर्यावरण प्रदूषण तो होगा ही, तो क्या इसका कोई विशेष प्रभाव हमारी
0: जी
1: फसलों
0: जी
1: पर
0: जी
1: या फिर मनुष्य के
0: रहन सहन पे
1: स्वास्थ्य पर भी पड़ता होगा?
0: इसका सब पे प्रभाव पड़ता है। जितनी भी प्रकृति में प्राकृतिक उपज है, जो भी चीजें हैं, सब पे प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जैसे जानवर हैं, हम हैं, ये वनस्पति है, ये सब एक छोटा छोटा हिस्सा है इसका। जो
1: जी
0: मेन है वो एटमोस्फियर है, एनवायरनमेंट है, बहुत बड़ा
1: जी
0: भाग। तो
1: जी
0: उसमें हम बिल्कुल फ्रैक्शन वाली बात है, मतलब कीड़े मकोड़े कह दो, हम
1: जी
0: एक कीड़े मकोड़ों की तरह है इसमें। जब इसमें प्रलय आएगी तो हम लोग पता भी नहीं चलेगा कहाँ चले गए।
1: जी
0: तो ये कैसे, क्योंकि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जो है वो बहुत पहले बहुत ज्यादा था, जब कुछ भी नहीं था दुनिया में, इसलिए वो आस्ते आस्ते प्लांट आए, पौधे बढ़े, जंगल बने, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते गए सोखते गए, सिंक का काम करते गए। तो उससे क्या हुआ कि ये लेवल 250, 200, 300 तक पहुंच गया।
1: जी
0: उसमें क्या हुआ, आस्ते आस्ते जीव जंतु पैदा होने शुरू हो गए, हम लोगों की उत्पत्ति शुरू हो गई। लेकिन अब क्या है, ये 400 से भी ऊपर जा चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। जो 400 का मतलब 100 जो है पार्ट्स पर मिलियन, इसका यूनिट होता है मेजर करने का,
1: जी
0: पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। ये जो गैसेस है ये सारी मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन में काउंट होती हैं,
1: जी
0: इनको
1: जी
0: इस तरह से मेजर किया जाता है। तो इसकी जो ये पांचों की पांचों जो हैं, ये 100-100, 200-200% बढ़ गई हैं।
1: जी
0: जिसके कारण क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का तो बड़ा ही आसान तरीका है समझने का। जब भी आग लगती है, चाहे जंगल में लगे, चाहे घरों में लकड़ी जला रहे हैं किसान, अपना खाना पकाना तैयार कर रहे
1: जी
0: हैं, उसमें धुआं एक बड़ा कारण है। दूसरा ब्लैक कार्बन, जो
1: जी
0: काले काले, जब आग लगती है लकड़ों को, तो आप सबने देखा होगा कि काली काली छोटी छोटी जो है वो कण से हवा में तैरते
1: जी
0: हैं,
1: बिल्कुल
0: उसे हम ब्लैक कार्बन का नाम देते हैं।
1: जी
0: उस ब्लैक कार्बन का क्या काम है, वो जितनी भी थर्मल एनर्जी है, रेडिएशन है, रोशनी है, उसको सोख लेता है अपने में। और जिसकी वजह से इम्पैक्ट क्या है, ये रेनफॉल पैटर्न को हिला देगा उसी पर्टिकुलर जोन में।
1: जी
0: ये नहीं है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, जिस रीजन में ये ब्लैक कार्बन निकल रही है उसी जगह पे वो उसको, उसका जो बैलेंस है वो खराब कर देगा।
1: खराब कर देगा
0: उस
1: जी
0: बैलेंस के खराब होने से क्या है कि रेनफॉल पैटर्न बदल गया, टेम्परेचर पैटर्न बदल गया।
1: जी
0: इन दोनों के बदलने से पूरी की पूरी वनस्पति बदल गई, आपकी ह्यूमन नीड्स बदल गई, आपके जानवरों का रहने का, उनको सफोकेशन शुरू हो गया। नहीं
1: जी
0: तो ये जैसे हम कह देते हैं कि उस जगह पे इतना ज्यादा धुआं था कि वो इतनी जितने भी क्लोज रहने वाले थे उनको वैकेट करा दिया गया, या वो सारे बेहोश हो गए।
1: जी कई बार डॉक्टर साहब ये भी देखा गया है कि जो हमारे वन्य जीव जंतु है वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं।
0: हाँ, तो वो अपने जिंदा रहने के लिए जो भी उनको लगता है वो करते हैं।
1: जी
0: खाने
1: जी
0: पीने का सामान भी खत्म हो गया
1: जी
0: है,
1: बिल्कुल
0: जो पेड़ों पे लगता था वो अब है ही नहीं है कुछ भी। तो इसको, इसके लिए बहुत ही इंडिकेटर है, एक चेतावनी है, एक बहुत ही सहज तरीके से सोचने वाली बात है कि हमने आग नहीं लगानी तो नहीं लगानी। इवन इसीलिए जो सरकारें हैं उन्होंने पॉलीथीन बंद किया, क्योंकि उससे भी ये ग्रीन हाउस गैसेस ही निकलती थी ज्यादा।
1: जी
0: फिर उन्होंने बोला कि जो पराली है, जो जो हमारा हस्क है,
1: उसको
0: उसकी
1: जलाते हैं,
0: जलाना है,
1: उससे
0: वो
1: काफी पर्यावरण प्रदूषण होता है।
0: पनिशमेंट है, वो उसमें मीथेन निकलती है,
1: जी
0: वो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं तो मीथेन को बढ़ा रहा है।
1: जी
0: तो उसपे पनिशमेंट भी है, उसपे जुर्माना भी है। अपनी तरफ से सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि ये समझे बात को। पर आपको मैं इसलिए आई हूं आज, क्योंकि मैं ये समझाना चाह रही हूं कि आप ये समझो कि जो जंगल है वो हमारा, हमारे श्वास है, हमारा जो लंग्स है वो जंगल है। अगर लंग्स को जला दोगे तो क्या रह जाएगा अपने पास,
1: जी
0: तब तो कुछ भी नहीं रह गया, कोई पैसा नहीं रहना, कोई खाने को, जो कुछ मर्जी सब धरा का धरा रह जाएगा।
1: जी जी
0: तो इसको जितना जल्दी बचा सकते हो बचाना, हमें, हमारा सबका कार्य है, मेन कारण कार्य यही होना चाहिए।
1: डॉक्टर साहब, जंगल में आग तो लग गई, उसके साथ साथ जंगल में कई तरह की वनस्पतियां भी साथ में जल गई।
0: बिल्कुल बिल्कुल, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स,
1: जी
0: बहुत बहुत जंगल जो है उसमें तो हमारी कहते हैं कि ये

0: खजाना है,
1: जी
0: वो ऐसा खजाना है जो जिस जिसको जैसे जौहरी पहचान सकता है,
1: जी जी
0: तो उसी तरह जो मेडिसिनल प्लांट्स के एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, जो भी एक्सपर्ट, वो सब उससे ही कई जड़ी बूटियां ले लेके आते हैं। जब वो जंगल में, ज्यादातर हिमाचल के जंगलों में जो आग लगती है वो सरफेस फायर होती है।
1: जी
0: सरफेस फायर का मतलब तले पे ही लगती है, ऊपर पेड़ों तक नहीं
1: नहीं
0: पहुंचती,
1: पहुंच पाती
0: हवा
1: है
0: इतनी नहीं होती, तो जिस वजह से वो अंदर अंदर अंदर अंदर अंदर सालों साल रहती है।
1: जी।
0: तो वो क्या है कि जितने भी उसके साथ साथ लगने वाले पौधे हैं, मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट्स हैं, श्रब्स हैं, छोटी छोटी ट्रेलर्स हैं, ग्रासेस हैं, उनको सबको खत्म करता जाता है।
1: जी डॉक्टर साहब, कई बार हमारे किसान भाई ये सोचते हैं कि अगली साल फसल अच्छी आएगी इसलिए आग लगा दो।
0: वही वही तो मैं समझाने आई हूँ, यही तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वो एक साल, वो ये नहीं सोच रहे कि हम रहेंगे तो साल की फसल रहेगी।
1: जी
0: अब तो क्वेश्चन ये हो गया कि हमारे रहने का ही क्वेश्चन हो चुका,
1: जी
0: वहां तो अंदर भी नहीं घुस सकेंगे, साय नहीं आएगा तो क्या, कहाँ जाएंगे,
1: जी बिल्कुल
0: हॉस्पिटल भी नहीं होंगे,
1: जी
0: कोई कर ही नहीं सकेगा, कितने को वेंटिलेटर लेके घूमेंगे साथ में।
1: जी जी
0: तभी आजकल क्या है, किसी का जन्मदिन होता है तो हम लोग उसको पौधा देते हैं,
1: जी
0: तो ये इसीलिए वो उसके श्वास पकड़ा रहे हैं हम उसको
1: जी जी
0: कि ये बुके क्या देना, पूरा गमला ले, ताकि साथ ले सके, जिंदा तो रह सके।
1: जी जी
0: अंदर कमरों में पहुंच गए हैं हम कि इंडोर एयर क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अंदर के पौधे लगाओ, बाहर के पौधे तो हैं ही हैं, उनको तो हम बचाना भूल गए, हम अंदर ही ले आए पौधों को।
1: जी
0: तो इसलिए बाहर वालों को भी बचाओ, अंदर तो हमें वो हमें सब जगह ही बचाएंगे,
1: जी
0: पौधे हैं तो हम हैं।
1: जी
0: तो इसके लिए सबसे अच्छा उपाय है, जितना आग ना लगाएं उतना ही अच्छा है। इसीलिए कूड़ा करकट भी दबाने के लिए, या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अब लेना शुरू कर दिया उन्होंने, ग्रीन
1: जी
0: है, गिल्ला कचरा है, सूखा कचरा है,
1: जी
0: कितनी बढ़िया आसानी तरीके से समझाया उन्होंने,
1: जी
0: ठीक है ना। तो वेस्ट मैनेजमेंट हो गया, वो
1: जी
0: उनके पास प्लांट्स लगे हुए हैं जो अंदर ही अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं। इवन बेंगलोर, हैदराबाद, इन जगह पे सड़कें बननी शुरू हो चुकी हैं, जितना
1: जी
0: प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा करा, सड़कें बन गई हैं उसकी, और वो अच्छे से चल रही हैं, उनमें मिक्सचर करके, कन्वर्शन करके, ये जो ईंटें हैं, टाइल्स हैं, ये भी बन चुकी हैं इसकी।
1: जी
0: सो मेरे कहने का मतलब ये है कि ये सोल्यूशन नहीं है कि हमारे जानवरों को खाने के लिए घास नहीं है तो हम जंगल जलाएंगे और घास पैदा करेंगे,
1: जी
0: ये तो इसका मतलब हम खुद को ही तकलीफ दे रहे हैं। जानवर को तो तकलीफ देंगे ही देंगे, जंगल को भी देंगे, खुद को भी दे रहे साथ में।
1: जी
0: तो ये कार्य जो है वो खत्म करना होगा, उसकी जगह और बहुत बहुत बहुत तरीके आज तक अपनाई हो चुके ने, और ये हमारे जो पर्य यूनिवर्सिटी है इसमें ट्री इम्प्रूवमेंट डिपार्टमेंट है, इसमें मेडिसिनल एरोमेटिक विभाग है, सारे विभाग हैं,
1: जी
0: उनके पास सब इन सब चीज़ों के बहुत ही बेहतरीन सोल्यूशन है।
1: जी
0: हम ये नहीं कह सकते कि आपका यही सोल्यूशन है, जलेगा तो घास आएगा तो खाएंगे, अदरवाइज कुछ भी नहीं है। नो
1: जी
0: बहुत बहुत बहुत बहुत बढ़िया बढ़िया इनके पास सुझाव हैं। तो किसान भाई अच्छे हैं कि उनको हमारे से तालमेल रखना बनता है, ये नहीं कि वो अपने आप, अपने जो पुराना तरीका था वो नो डाउट वो अपने तरीके से अपने कर रहे, लेकिन उस समय वातावरण की गैसेस की जो मात्रा थी वो
1: काफी कम
0: बराबर
1: थी
0: बराबर थी,
1: जी
0: थोड़ा सा लग भी जाता था तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था।
1: जी डॉक्टर साहब, आप हमारे स्टूडियोज में आई और आपने जंगल की आग से पर्यावरण प्रदूषण एक चेतावनी के बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा की। इस जानकारी के लिए आपका बेहद शुक्रिया।
2: किसान भाइयों, अभी आपने सुनी जानकारीपूर्ण बातचीत जिसका विषय था जंगल की आग से पर्यावरण प्रदूषण एक चेतावनी। बातचीत में भाग ले रहे थे डॉक्टर परविंदर कौर बावेजा और उनके साथ बातचीत कर रहे थे राजेंद्र। तो शिवरंजन, अब अपने किसान और बागवान भाई बहनों को सुनाएंगे एक और लोकगीत।
3: जी।

0: तो किसान भाइयों, ये तो सुना आपने समूह स्वरों में लोकगीत।
1: जी बिल्कुल, और इसी के साथ अब कृषि जगत कार्यक्रम का समय भी संपन्न हो चला है। सभी श्रोताओं से अनुमति चाहेंगे। नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता दीपक कुमार।
2: अभी किसान बागवान भाई बहन सुन रहे थे कृषि जगत कार्यक्रम 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM शिमला केंद्र। 7:43 होने को हैं। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए।

0: मीडियम वेव 387.6 मीटर अर्थात 774 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये शिमला केंद्र है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार प्रसारित होंगे जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ एफएम शिमला 103.7 मेगाहर्ट्ज़, मोबाइल ऐप और रेडियो की डीटीएच सेवा पर भी सुना जा सकता है।
1: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
2: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
3: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीखी है असली जायदाद।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
4: अरे पता है, हिमाचल प्रदेश में जनगणना का पहला चरण 16 जून से 15 जुलाई तक चल रहा है।
5: अच्छा, इसमें क्या होगा?
4: इसे मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कहते हैं। इसमें मकानों से जुड़ी जानकारी ली जाएगी।
5: अच्छा, तो क्या घर के दस्तावेज, बैंक की जानकारी या कोई ओटीपी देना होगा?
4: नहीं, बिल्कुल नहीं। जनगणना में किसी भी प्रकार के दस्तावेज, बैंक विवरण, पासवर्ड या ओटीपी नहीं मांगा जाता।
5: अच्छा,
4: केवल अधिकृत 33 प्रश्नों की जानकारी दीजिए। सही जानकारी देकर हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार, मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान जीते चुनाव। राज्य सरकार पर जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 800 किलो चेरी व प्लम की निर्यात खेप को ओमान के लिए किया रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कांगड़ा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि के तहत 1500 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान किया है। उन्होंने आज बड़ा भंगाल में लोगों के साथ संवाद किया और उनकी समस्याएं भी सुनी। मुख्यमंत्री ने कहा कि बड़ा भंगाल में 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाए जाएंगे और बच्चों को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अधिकारियों को बड़ा भंगाल को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से उगाए गए राजमाह पर सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान करेगी। कल पोलियो रविवार है। प्रदेश भर में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 5,94,000 बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं और राज्य में 4,700 से अधिक पोलियो बूथ बनाए गए हैं। सोलन जिला में कुल 83,836 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी अजय पाठक ने बताया कि इस कार्य के लिए लगभग 2,000 कर्मचारी तैनात किए गए हैं।
1: जिला सोलन का टारगेट हमारा बच्चों का 83,836 का है और इसके लिए हमने 441 वैक्सीनेशन बूथ पूरे जिले में बनाए हुए हैं और हमारे 6 ट्रांजिट पॉइंट्स हैं जहां हम दूसरी स्टेट के साथ जुड़ते हैं। इन ट्रांजिट पॉइंट्स में हमने विशेष बूथ बनाए हैं ताकि कोई बच्चा जो बाहर जा रहे हैं वो छूट ना जाए और उनको पोलियो की दवा मिल जाए।
0: नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने दावा किया है कि 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान चुनाव जीते हैं। शिमला में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि नगर निकायों में भी भाजपा का दबदबा है। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद, नगर परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव टाल रही है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जनादेश का अपमान करने वाले अधिकारियों की सूची बनाई जा रही है और भाजपा इस बारे में सड़क से लेकर अदालत तक लड़ाई लड़ेगी।
2: नगर परिषद में 26 में से 18 में अभी तक चुनाव कराए गए हैं। ब्लॉक समिति में हिमाचल प्रदेश में 92 में से 47 जगह चुनाव करवाए गए हैं और उसमें 31 जगह भारतीय जनता पार्टी को जीत मिल गई है और 16 जगह कांग्रेस को जीत मिली। लेकिन अभी तक भी जहां बहुमत भारतीय जनता पार्टी का वहां पर भी ब्लॉक समिति के चुनाव को अभी तक डेट नहीं दी गई है। बार बार आग्रह करने के बावजूद डेट नहीं दी। जिला परिषद हिमाचल प्रदेश में 12 है, 12 में से 3 जगह चुनाव अभी तक संपन्न हुआ है और बाकी जगह अभी तक चुनाव की तारीख नहीं दी जा रही।
0: इस बीच प्रदेश भाजपा के वरिष्ठ प्रवक्ता राजेंद्र राणा ने राज्य सरकार पर लोकतांत्रिक परंपराओं व संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा को कमजोर करने का आरोप लगाया है। आज हमीरपुर में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों को उनके अधिकारों से वंचित रखना लोकतंत्र की भावना के विपरीत है। राजेंद्र राणा ने कहा कि कांग्रेस सरकार जानबूझकर जिला परिषद व स्थानीय निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा राज्य सरकार के इस रवैये का विरोध करेगी और जनता के हितों की रक्षा के लिए हर स्तर पर संघर्ष किया जाएगा। राणा ने राज्य सरकार से पूछा है कि इन चुनावों में देरी किस आधार पर और किस उद्देश्य से की जा रही है। तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा है कि राज्य सरकार युवाओं को

0: सरकारी क्षेत्र के अलावा निजी क्षेत्र में भी रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने आज हमीरपुर के बहुतकनीकी महाविद्यालय बड़ू में रोजगार मेले के उद्घाटन अवसर पर बताया कि शिक्षण संस्थानों में नए रोजगार परक कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। राजेश धर्माणी ने युवाओं से अपने कौशल का विकास करने का आह्वान किया और कहा कि कॉरपोरेट सेक्टर में युवाओं के लिए रोजगार के व्यापक अवसर हैं। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने बताया कि रोजगार मेले में 32 बड़ी कंपनियों की मौजूदगी युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज़ शिमला, एक्स हैंडल @AIR_News_शिमला और यूट्यूब चैनल AIR शिमला न्यूज़ को फॉलो कर सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज चंडीगढ़ से ओमान के लिए चेरी व प्लम की निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर हवाई मार्ग से रवाना किया। इनमें शिमला ज़िले के जड़ोल, टिक्कर व बागी क्षेत्र के 6 प्रगतिशील किसानों द्वारा उगाई गई 400 किलो चेरी व 400 किलो प्लम शामिल हैं। जगत सिंह नेगी ने बताया कि हिमाचल ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर कदम बढ़ाए हैं और मध्य पूर्व व खाड़ी के देश हिमाचल के फलों के लिए एक बड़े निर्यात बाजार के रूप में उभर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 28 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 135वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। इसके अलावा AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना व प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। सांसद डॉक्टर राजीव भारद्वाज ने अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विकास परियोजनाओं को तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आज चंबा में जिला विकास समन्वय व निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। राजीव भारद्वाज ने लोक निर्माण विभाग को 56 सड़क परियोजनाओं की DPR जल्द तैयार करने को कहा। उन्होंने चंबा ज़िले में विद्युत आपूर्ति नेटवर्क को सुदृढ़ करने के लिए चलाई जा रही पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना की प्रगति पर असंतोष जताया और अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। सांसद ने बताया कि ज़िले में विद्युत नेटवर्क सुदृढ़ करने के लिए 90 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। प्रदेश भाजपा ने आज जिला परिषद, BDC और नगर निकायों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों के चुनाव में देरी को लेकर राज्य के अनेक स्थानों पर कांग्रेस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किए। शिमला में हुए धरना प्रदर्शन में राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन सहित अन्य पार्टी नेताओं ने भाग लिया। हर्ष महाजन ने चुनाव में देरी को असंवैधानिक बताया और कहा कि यदि चुनाव प्रक्रिया जल्द पूरी नहीं की गई तो भाजपा प्रदेश भर में आंदोलन करेगी।
1: ये बड़ा अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप है, ऐसा नहीं करना चाहिए। चुनी जिला परिषद मेंबर, चुनी BDC, चुनी कमेटी के मेंबर्स, सबका इन्होंने मजाक उड़ा और ये कहना कि इनके भूमिका एक ही दिन की होती है, ये तो मैं समझता सुखू जी की बहुत बड़ी भूल है। ये चुनाव नहीं कराए, अब जितनी जल्दी हो सकता है तो एक बड़ा आंदोलन इनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी करेगी।
0: इस दौरान हर्ष महाजन की अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें उपचार के लिए तुरंत IGMC ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हर्ष महाजन को डिहाइड्रेशन और कम रक्तचाप की समस्या हुई, लेकिन अब उनका स्वास्थ्य सामान्य है। सोलन में चल रहे राष्ट्रीय शूलिनी मेले के दूसरे दिन आज पौराणिक ठोडा प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रदेश की लोक परंपरा, वीरता और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक इस खेल में 6 टीमों ने भाग लेकर अपने खेल कौशल का प्रदर्शन किया। इस प्रतियोगिता को देखने के लिए स्थानीय लोगों सहित बड़ी संख्या में पर्यटक भी ठोडा मैदान में मौजूद रहे। इस दौरान ढोल नगारों की गूंज, रणभेरी की धुन और खिलाड़ियों के उत्साह से माहौल उत्सवमय बना रहा। मेले में आए लोगों ने ठोडा प्रतियोगिता को संस्कृति का प्रतीक बताया।
2: ठोडा है हमारा ये कल्चर पुराना, हजारों सालों से चलता आ रहा है और ये देव कार्य होता है। जब भी कोई शुभ कार्य होता है तो उसमें हम ये ठोडा मनाया जाता है और बड़ा धूमधाम से तो तीर कमान से एक दूसरे को तीर निशाने लगाएंगे। 11-11 प्लेयर होते हैं इसके अंदर, तो उसी हिसाब से पॉइंट्स दिए जाएंगे, फिर उनका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइज देंगे। बहुत ही अच्छा हमारा ये कल्चर है, बहुत ही पुरानी संस्कृति है।
0: चंबा ज़िले के जनजातीय क्षेत्र भरमौर

0: के उरेई समरा सड़क मार्ग पर आज एक कार के खाई में गिरने से चार लोगों की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुआ। तीन लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया जबकि एक घायल महिला की अस्पताल में मृत्यु हुई। ये सभी लोग आसपास के गांवों के रहने वाले थे और समरा में एक जातर मेले में भाग लेने जा रहे थे। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने इस सड़क हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने प्रशासन को प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने भी इस दुर्घटना पर दुख जताते हुए शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने दुर्गम क्षेत्र बड़ा भंगाल की सभी पात्र महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का किया ऐलान। 24 घंटे बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर सेट लगाने की घोषणा। पोलियो रविवार के तहत कल प्रदेश में 5 वर्ष तक की आयु के लगभग 6 लाख बच्चों को पिलाई जाएगी पल्स पोलियो की खुराक। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, 70% पंचायतों में भाजपा समर्थित प्रधान व उप प्रधान जीते चुनाव। राज्य सरकार पर जनादेश का अपमान करने का लगाया आरोप। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने 800 किलो चेरी व प्लम की निर्यात खेप को ओमान के लिए किया रवाना। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।
1: जो वृद्ध हैं अकेले और बेसहारा, सरकार बनी उनके बुढ़ापे का सहारा।
2: वृद्धाश्रम सम्मान का घर, भोजन वस्त्र दवा हर पल।
1: 9 आश्रम प्रदेश में चल रहे, सम्मान से जीवन सवर रहे।
2: पंचायत सिफारिश साथ लाएं, तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से मिल जाएं।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिन्हें आकाशवाणी के हमीरपुर और धर्मशाला केंद्रों के साथ साथ FM शिमला 103.7 MHz पर भी प्रसारित किया जा रहा था। कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का शिमला केंद्र है। लीजिए पेश है रोजगार समाचार। जल शक्ति मंडल नालागढ़ द्वारा जलापूर्ति एवं सिंचाई योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव हेतु पैरास्टाफ के विभिन्न पदों को भरने हेतु अंशकालिक अथवा घंटे के आधार पर पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। पदों का विवरण इस प्रकार से है। पैरा पंप ऑपरेटर के 12 पद, पैरा फिटर के 3 पद और मल्टीपर्पज वर्कर के 25 पद, अर्थात कुल 40 पदों को भरने हेतु पात्र उम्मीदवारों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र सहित अपने आवेदन दिनांक 30 जून 2026 सायं 5 बजे तक जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में जमा करा सकते हैं। एक बार फिर से सुन लीजिए। इन पदों हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 सायं 5 बजे तक निर्धारित की गई है। उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र जल शक्ति मंडल नालागढ़ के कार्यालय में 30 जून 2026 सायं 5 बजे तक जमा करा सकते हैं। इसके साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए।

0: कृपया हमारी अगली घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। मीडियम वेव 387.6।
1: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं तो आकाश

0: आकाशवाणी पर सस्ते दामों में अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है। आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं।
0: शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी। आकाशवाणी
1: नियमों से लागू।
2: हर रात उनकी यादों का जहर पीता हूँ, टूटता हूँ, बिखरता हूँ, फिर भी जीता हूँ। शायद यही किस्मत में लिखा था हमारी, उनके बिना हर पल यूं ही तड़पता रहता हूँ। एक 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला पर भोले बिसरे गीत करके मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपका रेडियो मैडम दीपक शर्मा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना, अपने परिवार का, समाज और पर्यावरण का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। जानकारी और मनोरंजन का ये पिटारा खुला रहता है सुबह से लेकर रात्रि 11:10 तक। आपको बने रहना है 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी FM शिमला के साथ। प्रोग्राम की पहली पेशकश शशि 420 फिल्म से मुकेश और साथियों की आवाज़ों में, शैलेंद्र के बोल, शंकर जैकसन की धुन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

मस्त नज़रों से हमें एक जाम दे दे, एक घड़ी ठहर जाए आज की हमें वो शाम दे दे, जी भर कर आज हमको जी लेने दो, हमारे दिल की धड़कनों को वो आराम दे दे।

0: जीवन भाई, खेतों के सामने खड़े होकर क्यों मुस्कुरा रहे हो?
1: अरे भाई, खुशी तो होगी। अब हमें हमारी मेहनत के अच्छे दाम जो मिल रहे हैं। किसानों की भलाई के बारे में सोचते हुए हमारे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली बार प्राकृतिक खेती से तैयार फसलों के लिए MSP तय की है, और इन फसलों के लिए MSP देने वाला हिमाचल देश का पहला राज्य है। इस साल से सरकार ने प्राकृतिक खेती से तैयार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम, मक्की का समर्थन मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति किलोग्राम तथा कच्ची हल्दी का समर्थन मूल्य 90 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पांगी घाटी में प्राकृतिक रूप से उगाए जा रहे जौ की MSP को 60 रुपए से बढ़ाकर 80 रुपए प्रति किलोग्राम किया है। पहली बार अदरक के लिए 30 रुपए प्रति किलोग्राम का समर्थन मूल्य निर्धारित किया गया है। राज्य में बीज गांव तैयार किया जाएगा, जिसमें किसान पारंपरिक बीजों का उत्पादन करेंगे। और भी सुनो भाई, प्रदेश में राज्य किसान आयोग बनाया जाएगा, जिससे हम अपनी मांगों को सरकार तक और आसानी से पहुंचा पाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू रख रहे हैं किसानों की जरूरतों का ख्याल, और समृद्ध किसान बना रहे हिमाचल की पहचान।
2: गांव का करके विकास, आत्मनिर्भर राज्य की दिशा में सरकार कर रही सार्थक प्रयास। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जनहित में जारी।

उनकी मोहब्बत हमारे रूह में उतर गई, उनकी यादें हमारी ज़िंदगी में बिखर गई। उनके बिना हर ख्वाब अधूरा सा लगता है, जैसे बिन बारिश के बादल सूना सा लगता है। किशोर कुमार को सुनते हैं फिल्म नौ तो ग्यारह में।

0: अनुभव जिनके पास अपार, वृद्ध हैं समाज की असली धार।
1: सीखें युवा, दें सम्मान, यही है पीढ़ियों की पहचान।
2: पीढ़ी से पीढ़ी करें संवाद, अनुभव सीख ही है असली जायदाद।
0: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा जनित में जारी।
3: प्रोग्राम की आखिरी पेशकश दो आंखें बारह हाथ फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: सात में घर आकाशवाणी FM शिमला पर आइए सुनते हैं फिल्म संगीत। पहली पेशकश साजन की बाहों में फिल्म से, कुमार शानू की आवाज़, समीर की शब्द रचना, नदीम शवण की धुन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

कैसे कहूँ कि अपना बना लो मुझे, बाहों में अपने यूं ही संभालो मुझे। आज हिम्मत करके कहते हैं कि हम तुम्हारे हैं, अब तुम ही हमें संभालो मुझे।

103.7 मेगाहर्ट्स पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा। 9 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ एट 9। कीजिए बस कुछ ही क्षणों का इंतज़ार।

0: अमरीका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और यूएस ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदांबी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। यह भारत और सेशल्स की पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के प्रति साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। इससे सेशल्स के विकास और सुरक्षा को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्याना, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS इक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। ये पोत सामुदायिक संपर्क पहल भी करेगा जिसमें चिकित्सा शिविर लगाना शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनल पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे को आधिकारिक तौर पर स्वीकार कर लिया है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज ने आज इस मामले में बयान जारी किया। इसमें कहा गया है कि इस्तीफों पर अगली बैठक में चर्चा होगी। उन्होंने ये आश्वासन भी दिया कि दान की गई चांदी की ईंटों और गहनों का पूरा हिसाब किताब मौजूद है। ट्रस्ट अयोध्या राम मंदिर में हाल की घटनाओं पर बेहद दुखी, आहत और परेशान है। ट्रस्ट ने ये पुष्टि की है कि दान से जुड़े मामलों में SIT जांच की अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज नई दिल्ली में MSME दिवस उद्यमी भारत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत में ये क्षेत्र पहली पीढ़ी के उद्यमियों के साहस और उद्यमशीलता का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि ये क्षेत्र देश के कुल निर्यात में लगभग 50% योगदान करता है और उच्च गुणवत्ता के मानक बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि MSME क्षेत्र भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में सबसे सशक्त स्तंभ बन गया है।
2: It is very impressive that contributions of MSME is being felt by the Indian economy so much today. The business environment reforms of our

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने कथित दान चोरी मामले में नैतिक आधार पर इस्तीफा दिया।

0: Honorable PM Sriman Narendra Modi ji have transformed MSMEs as the silent architects of our nation's progress. MSME become the strongest pillar of our collective journey towards Viksit Bharat by 2047.
1: इस अवसर पर एमएसएमई मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि केंद्रीय बजट से इस क्षेत्र के लिए सरकार की प्राथमिकता और प्रतिबद्धता का पता चलता है।
2: आपने देखा होगा जो 2024-25 का बजट था और 25-26 का बजट था, एमएसएमई के बारे में जितनी चिंताएं की गई है उस बजट में, उसके पहले हमारे सेंट्रल बजट में चिंताएं नहीं हुई थी। ये दर्शाता है कि प्रधानमंत्री जी एमएसएमई को आगे ले जाना चाहते हैं।
1: उपराष्ट्रपति ने देश में एमएसएमई को सशक्त बनाने के उद्देश्य से क्रांतिकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म, पोर्टल और प्रकाशनों का भी विमोचन किया। उपराष्ट्रपति ने आज बेंगलुरु के ज्ञान ज्योति सभागार में नाद प्रभु केम्पगौड़ा की 517वीं जयंती के समारोह का उद्घाटन किया। समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि केम्पगौड़ा के दूरदर्शी नेतृत्व से 5 शताब्दियों बाद भी समाज लाभान्वित हो रहा है। उन्होंने कहा कि केम्पगौड़ा द्वारा निर्मित झीलें आज भी पेयजल के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज गांधीनगर में उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी की मौजूदगी में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता की। श्री शाह ने केंद्र की कई प्रमुख योजनाओं के लागू होने की समीक्षा की। गृहमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर 3 से 4 गांवों के लिए क्लस्टर स्कूल बनाएं ताकि लड़कियों के स्कूल छोड़ने की दर को कम किया जा सके। गृहमंत्री ने प्रशासन को आदेश दिया कि 70 वर्ष और उससे अधिक उम्र के सभी बुजुर्गों को आयुष्मान भारत कार्ड बांटे जाएं। श्री शाह कल गांधीनगर में पीएम फैमिली केयर ट्रैकर पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करेंगे। तमिलनाडु में वाइको के नेतृत्व वाली एमडीएमके पार्टी ने डीएमके के साथ 9 वर्ष पुराना गठबंधन तोड़ दिया है। चेन्नई में आज पार्टी महासचिव वाइको की अध्यक्षता में आम परिषद की बैठक हुई, जिसमें गठबंधन से अलग होने का प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी ने गठबंधन से अलग होने का कारण बताते हुए आरोप लगाया कि एमडीएमके को कमजोर करने के प्रयास किए गए थे। एमडीएमके के 2 विधायक हैं। महाराष्ट्र शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी से संबंधित प्रश्न पत्र लीक की बड़ी साजिश का भिवंडी में निर्धारित परीक्षा से एक दिन पहले ही पर्दाफाश कर दिया गया। प्रश्न पत्र लीक रैकेट के 3 कथित सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। एक रिपोर्ट।
3: पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार लोगों की पहचान बिहार के राजीव साव और आकाश कुमार तथा हरियाणा के धीरज सिंह के रूप में हुई है। आरोपी टीईटी के प्रश्न पत्र को कथित तौर पर लगभग 1.5 करोड़ रुपए में बेचने की तैयारी कर रहे थे। पुलिस ने मोबाइल फोन, नकदी और अगले दिन होने वाली परीक्षा के लिए टीईटी प्रश्न पत्रों के 4 सेट बरामद किए हैं। महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद के अधिकारियों ने जब्त किए गए प्रश्न पत्रों की जाँच की और पुष्टि की कि वे मूल प्रश्न पत्र से मेल खाते हैं। सत्यापन के बाद भिवंडी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस कथित 1.5 करोड़ रुपए के सौदे से जुड़े वित्तीय लेनदेन की भी जांच कर रही है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद ने रविवार को होने वाली टीईटी परीक्षा स्थगित कर दी। परीक्षा की नई तारीख बाद में घोषित की जाएगी। मुंबई से माधुरी पंगे की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: केरल में प्रवेश परीक्षा आयुक्त ने आज इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर और मेडिकल KEAM परीक्षा की रैंक सूची जारी कर दी है। इंजीनियरिंग श्रेणी में कुल 79,717 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जबकि फार्मेसी श्रेणी में 26,943 उम्मीदवारों को स्थान मिला है। इंजीनियरिंग श्रेणी में रोशन राजू ने राज्य में पहला और ध्यान तेज ने दूसरा स्थान हासिल किया। फार्मेसी श्रेणी में विनायक नारायण पहले और साई जेस्टिन दूसरे स्थान पर रहे। उम्मीदवार अपना परिणाम आधिकारिक वेबसाइट cee.kerala.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। पश्चिम एशिया में अमरीका और ईरान के बीच 2 सप्ताह पहले हुए संघर्ष विराम को गंभीर खतरे का सामना करना पड़ रहा है। पिछले 48 घंटों में अमरीका और ईरान के बीच कई जवाबी हमले हुए हैं। बृहस्पतिवार को हॉर्मूज जल डमरू मध्य में एक वाणिज्यिक पोत पर ईरानी हमले के बाद अमरीका ने ईरान के

0: दक्षिणी तट पर हमले किए। इसके बाद ईरान ने आज क्षेत्र में अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया। ये कार्रवाई राजनयिक प्रयासों के लिए खतरा पैदा कर रही है।
1: ब्रिटेन के UKMTO ने बताया कि आज एक टैंकर पर हुए हमले में उसके पुल को नुकसान पहुंचा है, हालांकि चालक दल के सभी सदस्य सुरक्षित हैं। संयुक्त समुद्री सुरक्षा केंद्र ने हाल की घटनाओं के जवाब में सुरक्षा खतरे का स्तर बढ़ा दिया है। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स का दावा है कि उन्होंने ईरान द्वारा निर्धारित मार्गों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर गोलियां चलाई। इससे संकेत मिलता है कि ईरान दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा जलमार्ग गलियारों पर फिर अपना नियंत्रण हासिल कर रहा है। इस तनाव के बढ़ने का मूल कारण आपसी अनुपालन में आई कमी है। ईरान ने अमरीका पर युद्ध विराम का पालन न करने और लेबनान में किए गए वादे के अनुसार संयम न बरतने का आरोप लगाया है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: वहीं बहरीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरान के कई ड्रोन ने देश को निशाना बनाया, हालांकि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेलंगाना के हैदराबाद में अपने नाम पर सड़क का नामकरण करने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप एवेन्यू के नामकरण का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका के पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके सम्मान में भारत में सड़क का नाम रखा गया है। अफगानिस्तान के हिंदू कुश क्षेत्र में आज शाम भारतीय समयानुसार 7:04 पर 6.2 तीव्रता का भूकंप आया। भारत, पाकिस्तान, चीन, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में इसके झटके महसूस किए गए। उत्तर भारत में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा में भी झटके महसूस किए गए। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसक क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागर कोटी ने कहा कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने आज कहा कि सोशल मीडिया पर प्रसारित कुछ पोस्ट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण को गलत ढंग से प्रस्तुत किया जा रहा है। रक्षा मंत्री ने ये भाषण पिछले वर्ष 28 जुलाई को संसद में दिया था। मंत्रालय ने कहा कि इन पोस्ट में रक्षा मंत्री के भाषण के चुनिंदा अंशों को गलत ढंग से फैलाया जा रहा है। इन पोस्ट में कहा गया है कि श्री सिंह ने दावा किया था कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किसी भी भारतीय सैनिक की जान नहीं गई। देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान US ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के सिंगल्स के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। देविका सिहाग ने महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में जापान की रिको गुंजी को हराया। वहीं पुरुष सिंगल्स में किदाम्बी श्रीकांत ने चीनी ताइपे के लियाओ जुओफू और रौनक चौहान ने इसराइल के मिशा जिल्मरमैन को हरा कर सेमीफाइनल में जगह बनाई। और ABC मेंस वॉलीबॉल कप के सेमीफाइनल में भारत और इंडोनेशिया के बीच मुकाबला जारी है। अहमदाबाद में खेले जा रहे सेमीफाइनल मुकाबले में ताज़ा समाचार मिलने तक दोनों टीमों ने 2-2 सेट अपने नाम कर लिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए विक्टोरिया पहुंचे। भारत ने सेशल्स को विकास और सुरक्षा के लिए फास्ट पेट्रोल वेसल, एम्बुलेंस, यूटिलिटी वाहन और लेजर रेडियल बोट उपहार में दिए। प्रधानमंत्री मोदी कल आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में विचार साझा करेंगे। अमेरिका और ईरान के जवाबी हमलों के कारण संघर्ष विराम पर खतरा और US ओपन बैडमिंटन में भारत की देविका सिहाग, किदाम्बी श्रीकांत और रौनक चौहान सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम वल्सा विलियम्स विद न्यूज एट 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi arrives in Seychelles to attend its 50th independence anniversary celebrations as guest of honour. India gifts fast patrol vessel, ambulances, utility vehicles and laser radial boats to Seychelles for its development and security. Prime Minister Modi to share his thoughts in Mann Ki Baat program on Akashwani tomorrow. श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट जनरल सेक्रेटरी चंपत राय एंड ट्रस्टी अनिल मिश्रा रिसा

दोस्तों आज हम बात करेंगे फिल्म भाभी के बारे में, जो कि 1957 में आई कृष्णन पंजू द्वारा निर्देशित फिल्म थी। इस फिल्म में बलराज साहनी, पंडरी बाई, जगदीप और नंदा ने महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई थी। आपको बता दें कि यह फिल्म उस वर्ष की 8वीं सबसे अधिक कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्म बन गई। ये फिल्म 1954 की बंगाली फिल्म भंगागारा का रीमेक थी, जो कि स्वयं प्रभावती देवी सरस्वती के उपन्यास बिजिला पर आधारित थी। बंगाली फिल्म को पहले तमिल में कुलादेवम और बाद में कन्नड़ में जेनुगुडु के रूप में रीमेक किया गया था। पंडारी बाई ने बंगाली संस्करण को छोड़कर सभी संस्करणों में अपनी भूमिका दोहराई थी।

जी तो बहुत ही खूबसूरत गीत के बाद आइए अब आपको ले चलते हैं इस फिल्म की कहानी की ओर। और फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो इस फिल्म की कहानी इस तरह से है, कला स्नातक होने के बावजूद शांता यानी पंडारी बाई कम पढ़े लिखे विधवा व्यापारी रतन लाल यानी बलराज साहनी, जिन्हें संक्षेप में रतन कहा जाता है, उनसे शादी करने के लिए राजी हो जाती है। रतन लाल का पहली शादी से एक बेटा मिट्ठू होता है और शांता अपने तीनों भाइयों रमेश, राजन और बलदेव और अपनी चाची के साथ रहने के लिए उनके घर में रहने लगती है। रतनलाल शांता को अपनी बाल विधवा बहन लता को भी उनके साथ रहने की अनुमति दे देते हैं। शांता जल्द ही परिवार में सभी का सम्मान और प्यार पा लेती है। रमेश की शादी वकील मोतीलाल की बेटी तारा से होती है, जबकि राजन की शादी मुंशीराम की बेटी मंगला से होती है। इन शादियों के बाद मंगला की वजह से कई गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं, इतनी कि तारा भी मंगला का साथ देने लगती है।

और भाइयों को अलग होने पर मजबूर कर देती है। रतनलाल संपत्ति और कारोबार को दोनों भाइयों में बांटकर एक छोटे से गांव के घर में रहने लगता है, जबकि रमेश तारा और उसके भाई जीवन और उसकी पत्नी के साथ रहने लगता है। राजन की मंगला से नहीं बनती है तो वो बुरी तरह से शराब पीने लगता है। मेडिकल की पढ़ाई छोड़कर सेना में भर्ती हो जाता है और बलदेव मुंबई चला जाता है। आगे फिल्म में इस बात की कहानी बयां करती है कि क्या यह परेशान परिवार कभी फिर से एक हो पाएगा, और तमाम उथल पुथल के बावजूद परिवार अंत में एक हो जाता है।

0: बुजुर्गों को सभी हक मिले, सम्मान सहित जीवन चले।
1: 1015-1700 पेंशन हर माह मिले सुरक्षा संरक्षण।
0: पेंशन का है वादा न्यारा, अंत समय तक वृद्धों का सहारा।
1: आज ही आवेदन करें, हिम परिवार पोर्टल से जुड़ें।
0: अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें तहसील या जिला कल्याण अधिकारी से।
1: सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
2: दोस्तों आपको बताते हैं, अब से कुछ देर बाद यानी ठीक 9:30 पर दिल की आवाज़ भजन प्रोग्राम के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है AIRFM शिमला म्यूजिक मेल @gmail.com। और आज हम फिल्में

रहे हैं वो फिल्में हैं सिर्फ तुम, सिलसिला, हातिम ताई और रिफ्यूजी। दोस्तों फिल्म के गीतों की बात करें तो इस फिल्म के गीत लिखे थे राजेंद्र कृष्ण ने, उन्होंने दिलकश संगीत से संवारा था चित्रगुप्त ने। फिल्म के गीत गाए थे लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मन्ना डे ने। इस फिल्म के लिए नंदा को सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी मनोनीत किया गया था।

0: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
1: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुँचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी लाभ वाणी जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
0: नियम और शर्तें लागू।

103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम में शिमला के अंदर 9:30 हो चुके हैं और ये वक्त है प्रोग्राम दिल की आवाज़ भी सुन का। इस प्रोग्राम में मैं हूँ आपके साथ आपका एडमिरल दीपक शर्मा। और जैसा कि कुछ देर पहले हमने आपको बताया था कि आज इस प्रोग्राम में आप किस

फिल्म के लिए गीत की जो फरमाइश है भेज सकते हैं ईमेल के माध्यम से। वो फिल्में हैं सिर्फ तुम, सिलसिला, हातिम ताई और रिफ्यूजी। तो पहली फरमाइश में इस वक्त देख रहा हूँ पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे, बल्लाहर शाह से सूरज लोंढे, प्राची एकलव्य की ये फरमाइश हमें मिली है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही महराज, जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से फरमाइश कर रहे हैं। धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से निसार सलमानी, नौशार सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू की फरमाइश मिली है। गजानन येले, दब नवदीप येले, सिद्धार्थ नगर दरियापुर बावली से हैं। बड़नेर अकोला से आदित्य दामोदर, अरुणा दामोदर की ये फरमाइश मिली है। जगदीश की फरमाइश हमें मिली है, इनके साथ है जगदीश धाकड़ नायमा, रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़, मालवा रेडी श्रोता संघ रतनाम एमपी से इन्होंने फरमाइश की है। टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज की फरमाइश मिली है। नंदलाल राजपूत, राजू राजपूत, मनुका बाई, नंदनी बाई, रुद्र राजपूत किल्लौंद एमपी से फरमाइश कर रहे हैं। छुपाड़ी रोडू से अलार गुंजेटा, जमिंता गुंजेटा, भजन गुंजेटा, तारचंद गुंजेटा, अनुज और मुकुल गुंजेटा की फरमाइश हमें मिली है। नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ ये लक्षणपुर छत्तीसगढ़ से रामजी साहू, जीवन लाल रजक, निम्मी शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू की फरमाइश मिली है। किशोर नगर अमरावती से रमन शेंडे, सिद्धार्थ गोंडाने की फरमाइश मिली है। और श्री कृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल्य बाठे की भी हमें फरमाइश मिली है। और अगली जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ ये हमें फरमाइश भेजने वाले हैं पांडु चंदन, उषा चंदन, प्रतीक्षा चंदन, प्रथमेश चंदन, पांडुरग गुम्भार, कुम्भार गली कोलगांव से इन्होंने फरमाइश भेजी है। अगली फरमाइश मैं देख रहा हूँ सिद्धार्थ गोणाने, अर्चना प्रणय प्रसिद्धि, हीरामन शेंडे, प्रतिभा गोणाने, राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से ये फरमाइश कर रहे हैं। कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा, मजनू का टीला दिल्ली से हैं और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक के ने भी फरमाइश की है। हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा, नोखेलाल वर्मा ने फरमाइश की है भाटापारा छत्तीसगढ़ से। सत्येंद्र कुमार चंदसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंदसौलिया, जालौन यूपी से फरमाइश कर रहे हैं। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सिर्फ तुमसे ये प्यार सके सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

सूर्यांश शर्मा गांव टपरोग तहसील सुनने से फरमाइश कर रहे हैं। ताज मोहम्मद अंसारी गुलाम साबिर राही महराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से भेज रहे हैं फरमाइश। और अगली फरमाइश मैं देख रहा हूँ झज्जर हरियाणा से हमें मिली है, बिट्टू रीटा रजत और मयंक भाटिया की है। बसंत कुमार सिन्हा ने भी हमें फरमाइश की है और दमदम एयरपोर्ट कोलकाता से ये फरमाइश कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमने ईमेल भेज दी है और शायद ईमेल किसी भी बीच में शामिल दरकिनार ना करें। बिल्कुल दोस्त, हम किसी की भी ईमेल दरकिनार नहीं करते हैं। फिलहाल अगली फरमाइश मिली है स्वर्ण सिंह गिल की, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, शुभदीप, गुरलाल गिल और अभिराज

हम तो मेरे पोर्ट कोलकाता से ये फरमाइश कर रहे हैं, लिख रहे हैं कि हमने ईमेल भेज दी है और शायद ईमेल किसी भी बीच में शामिल दरकिनार ना करें। बिल्कुल दोस्त, हम किसी की भी ईमेल दरकिनार नहीं करते हैं। फिलहाल अगली फरमाइश मिली है स्वर्ण सिंह गिल की, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर सिंह, शुभदीप, गुरलाल गिल और अविराज सिंह की, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह की है। फिरोजपुर पंजाब से फरमाइश कर रहे हैं ठाकुरवाला से। सरावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बुराना की फरमाइश मिली। आप सभी की फरमाइश पर फिल्म सिलसिला से ये प्यारा सकिए। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी दोस्तों, 103.7 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला के अंदर, और प्रोग्राम चल रहा है दिल की आवाज़ भी सुन। मैं हूं आपके साथ आपका रेडी मैडम दीपक शर्मा। अगली फरमाइश हमें मिली है मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, किरण ठाकुर, शशि भल्ला, मीनाक्षी तिवारी, इशप्रीत शर्मा और आशा गुगलानी, बिपाशा शर्मा। बहुत लंबी इन्होंने लिस्ट में भेजी है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप सभी को, बेहद शुक्रिया। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश अग्नेजा, पूनम अग्नेजा, विशाल प्रिया दिशानी, निमित आहूजा की फरमाइश मिली है। हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी मंसूरी की हमें फरमाइश मिली है। कोई सा भी गीत ये सुनना चाहते हैं। नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश हमें भेज रहे हैं रोहड़ू से रीना दनसिंगटा, मीनू देष्टा, संजीता बांस्टू, मोनिका मांटा, आरती मांटा, और कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। इंदौर एमपी से हसीना बी मंसूरी, अमीना बी मंसूरी, मोहम्मद रफ़ी अंसूरी की फरमाइश हमें मिली है। और नेक्स्ट फरमाइश जो हमें मिली है वो है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी की फरमाइश मिली है। सनावद एमपी से खुशी खुशबू, खुशमित, खुशदीप, खुशमिता, एकांश, आशा, इमली, वंदना बडोले की फरमाइश मिली है। सोनू मोनू प्रेम, मनीषा, नीलांश शर्मा, नीलाक्ष शर्मा की फरमाइश मिली है गाँव पहल तहसील सुनने से। छत्तीसगढ़ से हैं गुनीराम राजपूत, संतोषी, हेमप्रभा, पुष्प, सूरज और राजपूत की फरमाइश मिली है। नेक्स्ट फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये फरमाइश भेजने वाले हैं शिव कुमार चौहान, संक्रांति चौहान, रितेश कुमार, राजेश्वरी चौहान और उत्कर्ष चौहान बाबा कुटीर रायगढ़ से ये फरमाइश भेज रहे हैं। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से की फरमाइश हमें मिली है। कोई सा भी गीत इन्होंने सुनना चाहा है। नेक्स्ट जो फरमाइश मैं देख रहा हूँ, ये हमें फरमाइश भेज रहे हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव, संबलपुर कांकेर से फरमाइश कर रहे हैं। और लालपानी नेरवा शिमला से हमें फरमाइश कर रहे हैं। दो फ्रेंड्स की हमें फरमाइश मिली है, बन्नू चंदेल और मित्तु वर्मा, और ये लिख रही हैं कि हम दोनों साथ मिलकर आपके प्रोग्राम सुनते हैं। बेहद शुक्रिया आप सभी का इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, और आप सभी की फरमाइश पर फिल्म हातिम ताई से ये प्यारा सा गीत सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

जी तो बिल्कुल, आप हमारे जो दोस्त हैं, आपको देखकर हम दीवाना हो जाएं ये लाजमी है, और आपकी फरमाइशों को देखकर हमारा ये दीवानगी और ज़्यादा बढ़ जाती है। बहरहाल, आपकी जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो है जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित की फरमाइश मिली है। कोई सबक ये सुनना चाहते हैं? मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नामदेव की फरमाइश गंज डुलवारा यूपी से हमें मिली है। मनाली हिमाचल से अर्श, हर्ष, विनय, विनीत, रोजस भाई की फरमाइश मिली है। चंडीगढ़ से शेफाली, शैफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा की हमें फरमाइश मिली है। छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान की फरमाइश मिली है। प्रमिला मरावी, नेहा, पुष्पराज, ऋषभ, कमलकांत मरावी चचेड़ी छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। मंगल वेढ़ा से हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। नेक्स्ट जो फरमाइश हमें मिली है वो है बेडी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से, नाना जी लाम से, मीना लाम से, तेजस जय लाम से, हर्षिता लाम से। और अगली फरमाइश हमें मिली अब्दुल गफ्फार डावर खुशनसीब, अब्दुल हक डावर, जियाउल हक डावर, खंडवा संजय कॉलोनी से फरमाइश कर रहे हैं। गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फराज, फरहीन फरहान, फारिया ताहिरा, बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी की फरमाइश मिली है। इंद्रभान सिंह, अनुपम सिंह, ऋषभ सिंह, राम सहोदर, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद लहरे, कालिंद्री लहरे, कुरासिया कालरी चिरमिरी से फरमाइश कर रहे हैं। बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, बेबी, आराध्या साहू, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से फरमाइश कर रहे हैं। कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी की फरमाइश मिली है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगावाला चौक, गोरैया, जालंधर से फरमाइश कर रहे हैं। भोपाल गढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, पूजा परिहार की फरमाइश मिली है। और जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल, विलिस डिकेस्ट्रो, जनकपुरी सहारनपुर से फरमाइश कर रही है। आप सभी की फरमाइश पर ये गीत फ्रॉम द मूवी रिफ्यूजी।

मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़ की भी फरमाइश मिली है। जसबीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर, कमरजीत कौर जींद हरियाणा से फरमाइश कर रहे हैं। लक्षनपुर से विश्वनाथ साहू, कैलाश दीपक समर, वेदिका फूलमाली, खैगांव खंडवा से।

मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, जीवियम जैन की भी फरमाइश मिली। आप तमाम दोस्तों का धन्यवाद जो ईमेल के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहे, उनका भी धन्यवाद जो ईमेल नहीं कर पाए लेकिन फिर भी आप हमारे साथ बने हुए हैं। आप यूं ही 103.7 मेगाहर्ट्ज़ आकाशवाणी एफएम शिमला के साथ बने रहिए, सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: प्रोग्राम में आज बस इतना ही।
1: प्रदेश के सशक्त प्रचार प्रसार माध्यम आकाशवाणी पर आप अपने कारोबार में ला सकते हैं बढ़ोतरी।
2: यदि आप जुड़े हैं किसी स्टार्टअप या मेक इन इंडिया या किसी पंजीकृत सेल्फ हेल्प ग्रुप से, तो आप आकाशवाणी पर सस्ते दामों में विज्ञापनों के माध्यम से अपनी मेहनत को जन जन तक पहुंचाकर अपने सपने साकार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।

हमने तन्हाई में जंजीर से बातें की हैं, अपनी सोई हुई तकदीर से बातें की हैं। तेरे दीदार की भला हमको अब क्या तमन्ना होगी, जिंदगी भर तेरी तस्वीर से बातें की हैं।

दिल का हाल हमें बताना नहीं आता, हमें ऐसे किसी को तड़पाना भी नहीं आता। सुनना तो चाहते हैं हम उनकी आवाज़ को, पर हमें कोई बात करने का बहाना नहीं आता।

दिल में है जो बात होठों पे आने दे, हमें जज्बातों की इन लहरों में खो जाने दे। आदि हो चुके हैं हम आपकी निगाहों के, अपनी निगाहों के समंदर में अब तो हमें डूब जाने दे।

हर बात तुमसे शुरू तुम पे ही ख़त्म हो, हमारी ज़िंदगी तुमसे ही जुड़ी हुई हर दम हो। ये दुनिया जन्नत से कम ना होगी जब एक दूजे के साथ हम और तुम हो।

0: अगर आप जन जन तक पहुंचना चाहते हैं और अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो आकाशवाणी पर सस्ते दामों पर अपना विज्ञापन प्रसारित करवाएं।
1: आपका थोड़ा सा प्रयास आपके सपनों को पूरा कर सकता है।
0: आकाशवाणी के माध्यम से आप न केवल प्रदेश बल्कि पूरे देश भर में अपने व्यवसाय का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। शुभवाणी, लाभवाणी, जन जन की वाणी, ये है आकाशवाणी।
1: नियम और शर्तें लागू।
2: तुमको याद रखने में क्या क्या भूल जाता हूँ, जो दिल में बात है तुमको बताना भूल जाता हूँ। उनके लबों को छूने का इरादा रखते हैं, नज़र उनसे जो मिल जाए तो ज़माना भूल जाता हूँ। प्रोग्राम सदाबहार नगमे में मैं हूँ आपके साथ आपका एडमिरम दीपक शर्मा। प्रोग्राम की पहली पेशकश त्रिशूल फिल्म से।

तुम्हारी यादों का हर लम्हा दर्द दे जाता है, तुम्हारे बिना हमारा दिल तन्हा सा लगता है, तुम्हारे बिना हर खुशी अधूरी सी लगती है, तुम साथ हो तो हर मुश्किल आसान लगती है।

0: 103.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम शिमला केंद्र। इस समय रात्रि के 11 बजने को है। समाचारों का प्रसारण अब आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से किया जाएगा, पहले हिंदी में और फिर 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार। कीजिए बस कुछ ही पलों का इंतजार।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ में रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिन की सेशल्स यात्रा पर विक्टोरिया पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने इसके लिए राष्ट्रपति हरमिनी का आभार व्यक्त किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सेशल्स हिंद महासागर में भारत का महत्वपूर्ण समुद्री साझेदार और करीबी मित्र है। श्री मोदी ने दोनों देशों के लोगों के लाभ के लिए भारत और सेशल्स के दीर्घकालिक संबंधों और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सार्थक यात्रा की उत्सुकता प्रकट की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशल्स के बोटेनिकल गार्डन का दौरा किया और वहां आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने डॉक्टर हरमिनी की मौजूदगी में कोकोडीमर का पौधा लगाया। विदेश मंत्रालय के अनुसार यह पौधारोपण एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा है। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने बोटेनिकल गार्डन में विशाल कछुओं के बाड़े का भी दौरा किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि इन कछुओं का भारत और सेशल्स की दोस्ती से खास रिश्ता है। साल 2014 में ऐसे 2 कछुए कोलकाता के अलीपुर चिड़ियाघर को उपहार में दिए गए थे। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय समुदाय के लोगों से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय लंबे समय से भारत और सेशल्स के बीच एक मजबूत कड़ी बना हुआ है। इसने दोनों देशों के लोगों के बीच संबंधों को और मजबूत किया है। एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत में बना फास्ट पेट्रोल वेसल सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी को सौंपा। इसके

0: साथ ही उन्होंने 6 एम्बुलेंस, 10 उपयोगी वाहन और 5 लेजर रेडियल नावें भी भेंट की। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स की आजादी के 50 वर्ष पूरे होने के समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस समारोह में भाग लेने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: नौसेना का स्वदेश निर्मित सर्वेक्षण पोत INS इक्षक दक्षिण पश्चिम हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन तैनाती के अंतर्गत सेशल्स के बंदरगाह विक्टोरिया पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि बंदरगाह पर रुकने के दौरान INS शिक्षक सेशल्स के 50वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में हिस्सा लेगा। नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने वाराणसी से भारत की पहली हब एंड स्पोक अंतर्राष्ट्रीय विमानन सेवा के शुभारंभ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत प्रोत्साहन और संदेश के लिए आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी का संदेश साझा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि इस पहल से भारत के विमानन केंद्रों को मजबूती मिलेगी और दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों को एकीकृत यात्रा के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से निर्बाध रूप से जोड़ा जा सकेगा। प्रधानमंत्री ने अपने संदेश में इस शुभारंभ को भारत के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि इस पहल की शुरुआत वाराणसी को स्पोक एयरपोर्ट, दिल्ली को हब एयरपोर्ट और लंदन को अंतिम गंतव्य के रूप में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी नेटवर्क, AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। इसका सीधा प्रसारण AIR न्यूज, DD न्यूज, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से प्रादेशिक भाषाओं में भी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में केई पान्योर जिले के बाढ़ प्रभावित पोसा क्षेत्र में खोजबीन और बचाव अभियान के दौरान आज एक और व्यक्ति का शव बरामद किया गया। जिले की उपायुक्त श्वेता नागरकोटी ने बताया कि अब तक कुल 2 व्यक्तियों के शव बरामद किए गए हैं, जबकि 3 लोग अब भी लापता हैं। अभियान कल फिर शुरू किया जाएगा। निरंतर भूस्खलन और फिसलन के कारण पोतिन कीमिन मार्ग अब भी बंद है। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एल मैच में अमेरिका के ईस्ट रदरफोर्ड में पनामा का सामना इंग्लैंड से होगा। एक अन्य मुकाबले में क्रोएशिया का सामना घाना से होगा। दोनों मैच 2:30 बजे शुरू होंगे। इससे पहले मिस्र ने ग्रुप जी के अंतिम मैच में ईरान के साथ 1-1 से ड्रॉ खेलकर पहली बार फीफा विश्व कप के नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। ग्रुप जी के एक अन्य मैच में वैंकूवर में लियंड्रो ट्रोसार्ड के 2 गोलों की मदद से बेल्जियम ने न्यूजीलैंड को 5-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अमृत भूषण। Prime Minister Narendra Modi arrived in Victoria this afternoon on a 3-day visit to Seychelles. He was received by President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, at the airport. Mr. Modi appreciated the warm welcome by the President and said that Seychelles is a valued maritime partner and a close friend in the Indian Ocean. Mr. Modi said that he is looking forward to a productive visit aimed at further strengthening India and Seychelles' long-standing ties and enhancing cooperation for the benefit of the people of both nations. Prime Minister Narendra Modi visited the botanical gardens and attended a tree planting ceremony. During the ceremony, Mr. Modi planted the Coco de Mer plant in the presence of Dr. Hermini. According to the Ministry of External Affairs, the tree planting is part of Ek Ped Maa Ke Naam initiative and reflects the shared India-Seychelles commitment towards sustainability and environmental stewardship. He also visited the giant tortoise enclosure at the botanical garden. In a social media post, Mr. Modi said that the Aldabra giant tortoise also has an association with the special friendship between India and Seychelles, and 2 of them were gifted to the Alipur Zoo in Kolkata in 2014. The Defense Ministry today said that certain posts circulating on social media platforms have sought to misrepresent the Defense Minister Rajnath Singh's address delivered on the floor of Parliament on 28th July last year.